एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि शक संवत 1948 तदनुसार 2 जून 2026 दिन मंगलवार प्रातः के 5:55 हुए हैं और अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्वेच्छा भक्ति संगीत कार्यक्रम पुष्पांजलि में। मंगलवार का पावन दिन है और जब बात आज के दिन की हो तो मन अपने आप उन महाबली के चरणों में झुक जाता है जो संकट मोचन है, जो भक्ति की पराकाष्ठा है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की आराधना के साथ।

हर शुभ कार्य की शुरुआत हर विघ्न को हरने वाले से होनी चाहिए जी। तो अपने इस पुष्पांजलि में सबसे पहले हम याद करते हैं प्रथम पूजनीय रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी को, जिनकी सूंड तिरछी है, जिनका मन विशाल है और जिनकी कृपा अपार है।

हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वे रुद्र अवतार हैं, यानी स्वयं शिव जी का ही रूप। तो आज हनुमान जी के दिन पर उनके आराध्य देवों के देव महादेव को याद करते हैं। वैराग्य जिनके श्रृंगार में है और ब्रह्मांड जिनके डमरू की थाप पर थिरकता है। आइए उन्हीं भोलेनाथ के चरणों में श्रद्धा के दो फूल अर्पित करते हैं।

जहाँ शिव है वहाँ शक्ति, बिना शक्ति के तो सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। माँ पार्वती जो ममता की मूरत है और दुष्टों का संहार करने वाली दुर्गा भी। जब जीवन में कभी कमजोरी महसूस हो तो माँ की शक्ति को याद कर लीजिएगा, भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठेगी।

राधा के 6:27 हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम पुष्पांजलि, आज स्वेच्छा के साथ।

कहते हैं जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी के हृदय में वास करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम ही अपने आप में एक महामंत्र है और राम नाम की महिमा तो स्वयं ईश्वर भी गाते हैं।

कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगने लगता है कि सामने खड़ी मुसीबत बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे। हम हार मान लेते हैं, पर ऐसे वक्त पर संकट मोचन हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि ताकत हमारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे विश्वास में है। बात उस वक्त की है जब सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी की टुकड़ी समुद्र के किनारे खड़ी चिंतित थी कि कौन इस विशाल समुद्र को पार करेगा। अंगद, जामवंत जैसे महान और बड़े बड़े योद्धा बड़े चिंतित खड़े थे और हनुमान जी को निशांत भाव के साथ मौन बैठे थे। तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई और कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है कठिन है जो आपके लिए असंभव हो। और जैसे ही जामवंत जी के शब्द हनुमान जी के कानों में पड़े, उनके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आया और तब उन्होंने ये नहीं देखा कि समुद्र कितना बड़ा है बल्कि अपने भीतर के राम नाम पर विश्वास किया। और फिर जो हुआ वो तो हम सबको पता है। जब तक हनुमान जी चुप बैठे थे, समुद्र असंभव लग रहा था। जैसे ही उन्होंने अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास किया, वही समुद्र रास्ता बन गया। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई समुद्र जैसा बड़ा संकट सामने आए ना, तो घबराइएगा नहीं। आंख बंद कर एक गहरी सांस लीजिएगा और अपने भीतर को याद कर कहिएगा, जय श्री राम।

भक्ति में जब तक प्रेम का रंग ना घुले तब तक आनंद अधूरा रहता है, और प्रेम की जब भी बात आती है तो जुबान पर एक ही नाम आता है, राधे कृष्ण। निश्चल प्रेम वो यमुना का किनारा और वो कान्हा की बांसुरी की तान।

0: अक्सर हम भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर किसी पते पर नहीं रहते, वो तो हमारे विश्वास में रहते हैं। भक्ति का मतलब सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं है, भक्ति का मतलब है खुद को पूरी तरह से उन परम शक्ति को सौंप देना, इस भरोसे के साथ कि जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। वक्त इतनी जल्दी आगे बढ़ गया कि पुष्पांजलि भक्ति संगीत कार्यक्रम का एक घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। और अब कार्यक्रम पुष्पांजलि को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज हनुमान जी की कृपा से आपके मन को शांति और शक्ति दोनों मिलेगी। चलते चलते बस इतना ही कहना है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, क्योंकि हमारे साथ महाबली बजरंग बली है। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आज की पुष्पांजलि का ये आखिरी भजन सुनते रहिए।
1: भक्ति में

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
0: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
1: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हो चुके हैं आप। गुड मॉर्निंग कानपुर। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम को लेकर मैं हूँ आपकी अपनी वॉइस सारिका शुक्ला। होप आपको आज अलार्म ने नहीं बल्कि उम्मीदों ने जगाया होगा, है ना? वैसे आज की ये सुबह थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज है 2 जून और आज का ये दिन कहता है चलो कुछ नया करते हैं। अगर आप भी अभी उठे हैं तो घरों की खिड़कियों से बाहर की सूरज की रोशनी से रूबरू हो जाइए। जी हाँ, ये रिमाइंड कराती हैं कि लाइफ में रिसेट बटन रोज मिलती है। सो डियर लिसनर्स, आज का मूड सिंपल है, नो एक्स्ट्रा स्ट्रेस, नो ओवर थिंकिंग, बस पॉजिटिव सोच और थोड़ी सी सेल्फ केयर। तो कानपुर उठिए, मुस्कुराइए और खुद को आवाज देकर कहिए कि आज का हमारा दिन कल से बेटर होगा।

वेल डियर लिसनर्स, आवाज तो हम आपको दे चुके हैं और अब आप जो हैं नींद से जाग भी चुके हैं। सिटी की फ्रेश मॉर्निंग म्यूजिक का परफेक्ट फील और पॉजिटिविटी का फुल डोज, ये है गुड मॉर्निंग कानपुर ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर पर। आइए शेयर करते हैं आपसे 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। जी हाँ, समाचार के बाद सुबह 8:30 पर सजेगी सुरों की पुरानी महफिल और आज के इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे फिल्म अभिनेता राज कपूर की फिल्मों के गाने। सुबह 9:00 विशेष रस बहार 2 जून की रोटी, इस प्रोग्राम को आप एंजॉय करेंगे मेरे यानी कि सारिका के साथ। और सुबह 9:45 पर सुबह का जो वक्त होगा वो होगा विविधा के तहत राग रंग कार्यक्रम का। दिन में 11:00 प्रोग्राम हमनवा को लेकर आपसे रूबरू होंगी मैं सारिका शुक्ला और मेरी आज की हमनवा होंगी आरजे मालनी। दिन में 3:00 आप सुनेंगे प्रोग्राम जो होगा विशेष म्यूजिककार छुट्टियों का देसी मैदान। और शाम 4:00 अपनी पसंद के गीतों को आप सुन सकेंगे प्रोग्राम आपकी पसंद के जरिए। अगर आप भी चाहते हैं अपनी पसंद के गीतों को सुनना तो हमें अपनी मेल लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है airkansomedia@gmail.com। वेल डियर लिसनर्स, आप हैं सुबह की रोशनी कानपुर की वाइब और FM रेनबो कानपुर की म्यूजिक और मैजिक के साथ। गुड मॉर्निंग कानपुर।

वेकअप कानपुर, क्योंकि सुबह हो गई है म्यूजिकल विद गुड मॉर्निंग कानपुर, ओनली ऑन 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। वेल दोस्तों, हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई सोच लेकर आती है, और अगर दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ तो हो जाए ना।

तो पूरा दिन कहीं ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। तो ऐसा ही आज का सुविचार मॉर्निंग मंत्रा शेयर करते हैं आपसे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार, आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि दुनिया बेहतर बने तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। जी दोस्तों, थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ी काइंडनेस और थोड़ी अच्छी सोच पूरी दुनिया को बदल सकती है। तो इसी खूबसूरत मॉर्निंग मंत्र के साथ अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराहट और अच्छे इरादों के साथ करिए। 102.2 FM रेनबो कानपुर है आपके साथ।

ये है FM 102.2 रेनबो कानपुर, गुड मॉर्निंग कानपुर का परफेक्ट कंपेनियन। चलिए दोस्तों, अब करते हैं क्विक विजिट सोशल मीडिया की दुनिया में और डालते हैं एक नजर कि लोग क्या शेयर कर रहे हैं। तो फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में अपने एक्स हैंडल पर अपनी एक एक्सरसाइज करते वीडियो के साथ ट्वीट किया है। जी हाँ, इन्होंने शेयर किया है कि 71 की उम्र में भी फिटनेस, सीखने की चाह और जिंदगी को पूरे उत्साह से जीने का जुनून, यही तो है असली एटीट्यूड। क्योंकि शरीर से ज्यादा जरूरी मन का जवान रहना है, और जब इरादे मजबूत हो तो उम्र कभी रास्ता नहीं रोकती। हर हर महादेव। वही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक्स हैंडल पर मनसुख मांडवी जी, जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, उनके लिए ट्वीट किया है कि आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देश में खेलों को बेहतर बनाने और हमारी युवा शक्ति के कल्याण के लिए उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं, साथ ही आप हमारे श्रमिकों के हितों को आगे बढ़ाने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जिसका हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। ये है FM 102.2 रेनबो कानपुर, गुड मॉर्निंग कानपुर।

0: योजना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हमारी जनगणना हमारा विकास।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
7: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
6: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
7: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
6: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
8: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
9: गुड मॉर्निंग कानपुर, जहां वाइब्स है म्यूजिकल और मूडी मूड है वंडरफुल। वेल डियर लिसनर्स, आइए अब स्क्रॉल करते हैं हिस्ट्री के पेजेस को, जानते हैं आज का दिन अतीत के आईने में कितना है खास। जी आज के दिन यानी कि 2 जून 1924 को भारत सरकार ने रेलवे प्रबंधन को निजी कंपनियों से अपने हाथों में लिया, जिससे इंडियन रेलवेज का आंशिक राष्ट्रीयकरण हुआ। वही 2 जून साल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया। जी हाँ, ये भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया। 2 जून को ही जन्म हुआ फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का, और 2 जून 1956 में हिंदी और तमिल सिनेमा के बेहतरीन कलाकार फिल्मकारों में से शुमार मणि रत्नम का भी जन्म हुआ। और 2 जून 1988 को बॉलीवुड के महान अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शोमैन राज कपूर ने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। नमन है आपको 102.2 FM रेनबो कानपुर से।

आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

102.2 FM रेनबो कानपुर, गुड मॉर्निंग कानपुर, जहां वाइब्स है म्यूजिकल और मूड है वंडरफुल। जी हाँ, ये है FM रेनबो कानपुर, कानपुर की मॉर्निंग का असली साउंड ट्रैक, गुड मॉर्निंग कानपुर। अब बारी है देश विदेश की ताजा तरीन खबरों की FM रेनबो कानपुर के साथ। जी हाँ, कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वहीं मलेशिया में 16 वर्ष से कम आयु के लाखों बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को कल से लागू कर दिया गया। भारत और बांग्लादेश 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में अपने द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता का आयोजन करेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। 102.2 FM रेनबो कानपुर है आपके साथ।

जी हाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ 102.2 FM रेनबो कानपुर के जो स्टूडियो है वहां पर मैं हाजिर हूँ। सो कानपुर, स्टे ट्यून्ड कानपुर विद 102.2 FM रेनबो कानपुर। वेल दोस्तों, अब बात करते हैं अपने शहर कानपुर की, जहां हर सुबह लेकर आती है कुछ नया। तो दोस्तों, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में कल यानी 1 जून से 10 जून तक के लिए शुरू हो गया है करियर काउंसलिंग कैंप। वहीं SBTU में BEd की विभिन्न ब्रांच में सीटों पर दाखिले के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 15 जून है। विश्वविद्यालय ने छात्र हित में प्रवेश को लेकर हेल्प डेस्क की शुरुआत भी की है, साथ ही एक चैट बॉल मित्र भी है जो प्रवेश संबंधी सवालों के जवाब दे रहा है। वहीं अब अपना IIT कानपुर हर साल 50 ऐसे स्टार्टअप तैयार करेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधान का नवाचार कर रहे हैं, और इस स्टार्टअप की विकसित तकनीक, टूल व उत्पादों का उपयोग प्रदेश के विकास में अहम योगदान करेगा। वहीं दोस्तों, 30 मई से शुरू हो चुका है मेघदूत तिराहे से संतोषी माता द्वार तक डायवर्जन। जी हाँ, ये शुरू हो गया है जो लगभग 18 दिनों तक रहेगा। तो अगर आप मॉल रोड की तरफ निकल रहे हैं तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेकर चले, साथ ही पहले से ही रूट डायवर्जन की पूरी जानकारी ले ले तो आपकी जो जर्नी है वो सुगम हो जाएगी। और दोस्तों, कल यानी कि 1 जून से 6 जून तक कैस्को ने जो शुरू किया है वो

भी हम आपसे शेयर करते हैं। जी हां, कानपुर सिटी के सिटीजन्स को राहत देने के लिए कैस्को की ओर से विशेष कैंप लगाया गया है, जो 1 जून और 2 जून को नौबस्ता, यानी कि आज ये कैंप नौबस्ता में रहेगा। 3 और 4 जून को देहली सुजानपुर, 5 जून को जाजमऊ और 6 जून को दबौली में लगेगा, जहां पर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। 102.2 FM रेनबो कानपुर है आपके साथ।

जीत का जोश, रिकॉर्ड्स का रोर और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, सब कुछ 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर। गुड मॉर्निंग कानपुर। अब बारी है जानने की खेल जगत की हलचल। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते हैं।

भारत में भी आखिरकार फीफा विश्व कप 2026 के प्रसारण का रास्ता साफ हो गया है। देश के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। जी हां, इस मामले में फीफा और जी ग्रुप के बीच सोमवार को करार हो गया है। 11 जून से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट से ठीक 10 दिन पहले ये समझौता हो गया है। 102.2 FM रेनबो कानपुर है आपके साथ।

0: जी हाँ, 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट रहना है सौदा खरा खरा। गुड मॉर्निंग कानपुर। दोस्तों अब एक नजर मौसम पर भी डाल लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं भारत मौसम वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग आज से चार दिनों तक मध्यम से घने बादल छाए रहने की संभावना है। वेल डियर लिसनर्स, मौसम तो फिलहाल खुशगवार रहने वाला है। हवाओं में नरमी है, फिजाओं में सुकून है, लेकिन ये मौसम आपका कब तक साथ निभाएगा सोचने वाली बात है। तो आज की ये ठंडी हवाएं, सुकून भरी सुबह कल भी यूं ही बनी रहे, इसके लिए पेड़ पानी और पर्यावरण से दोस्ती निभाइए और सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।
1: ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे

0: दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: इसी के साथ मुस्कुराते रहिए, प्रकृति से जुड़िए और सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर। डीजे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर से सारिका शुक्ला को इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
2: घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउ लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउ लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
6: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
7: 2-3 ब्रांचेस ऑल्सो।
5: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
8: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
5: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
9: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
11: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
3: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हो चुके हैं आप। दोस्तों, आज की ये खास महफिल समर्पित है भारतीय सिनेमा के उस शोमैन को जिसने सपनों को पर्दे पर उतारना सिखाया। जी हाँ, बात राज कपूर जी की। फिल्म अभिनेता राज कपूर, इनकी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि आम इंसान की उम्मीदें, मोहब्बत और जिंदगी का आईना थीं। आज है इनकी पुण्यतिथि, शत शत नमन इन्हें एफएम रेनबो कानपुर की ओर से। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल की, इनके इसी सदाबहार अंदाज के साथ। और आज इस कार्यक्रम को लेकर सारिका है आपके साथ।

रह के बाद। 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप और कार्यक्रम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल। दोस्तों, राज कपूर ने भारतीय सिनेमा को बड़े सेट और खूबसूरत गाने ही नहीं दिए, उन्होंने सिनेमा को दिल दिया। इनकी फिल्मों में एक मासूमियत थी, एक अपनापन था, जहां हंसी भी थी, आंसू भी और जिंदगी की सच्चाई भी। जैसे कि

शायर ने कहा हो, कुछ लोग किताबों जैसे होते हैं। जी हाँ, कुछ लोग किताबों जैसे होते हैं, जितना पढ़ो उतना नया सीखने को मिलता है। और राज कपूर भी कुछ ऐसे ही थे।

102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल, और आज इस कार्यक्रम में हम दे रहे हैं श्रद्धांजलि फिल्म अभिनेता राज कपूर को। दोस्तों, राज कपूर की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये आम आदमी के सपनों को बड़े पर्दे पर उतार देते थे। इनकी आंखों में एक कलाकार का सपना होता था और दिल में इंसानियत। जी हाँ, इनकी फिल्मों में गीत जो होते थे वो सिर्फ सुनाई नहीं देते थे, वो महसूस भी किए जाते थे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ये सिर्फ गीत नहीं बल्कि उनकी जिंदगी और सिनेमा दोनों की पहचान बन गया। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप।

102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है। फिल्म अभिनेता राज कपूर स्पेशल श्रद्धांजलि सुरों की पुरानी महफिल। श्री 420 फिल्म का गीत मुकेश और लता और मोहम्मद रफी की आवाज।

0: 102.2 FM रेनबो से कार्यक्रम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल। आज हम दे रहे हैं विशेष श्रद्धांजलि अभिनेता फिल्म अभिनेता राज कपूर जी को।
1: अल्लाह सूरत आपकी सुभान।
0: दोस्तों कहते हैं कि सच्चा कलाकार वही होता है जो वक्त गुजरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है, और राज कपूर ऐसे ही कलाकार थे। इनकी आंखों की मासूमियत, इनकी मुस्कान और इनके गीतों की मिठास आज भी पुराने दौर की यादों को ताजा कर देती है।

102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल, और आज हम दे रहे हैं विशेष श्रद्धांजलि फिल्म अभिनेता राज कपूर जी को। दोस्तों, सितारे आसमान से टूट जाते हैं, लेकिन कुछ यादों के आसमान में हमेशा चमकते रहते हैं, और राज कपूर जी इन्हीं में से एक थे।

दोस्तों, फनकार कभी जाते नहीं, वो अपने किरदारों, गीतों और एहसासों में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, आज की सुरों की पुरानी महफिल में हमने याद किया उस शोमैन को जिसने भारतीय सिनेमा को मुस्कुराना सिखाया। इसी के साथ दीजिए इजाजत सारिका शुक्ला को कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल से। ब्रेक के उस पार कार्यक्रम रस बहार को लेकर एक बार आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम रस बाहर को लेकर आज मैं हूं आपकी अपनी सारिका शुक्ला। दोस्तों आज है 2 जून, सुबह के 9:22 का समय। शहर अभी पूरी तरह तो नहीं जागा, पर कुछ लोग अपनी जिंदगी की दौड़ शुरू कर चुके हैं। वेल, जून का महीना शुरू होते ही मौसम जैसे अपने रंग बदल

निकलने को उतावला रहता है, कहीं तेज धूप कहीं बारिश की उम्मीद। पर इस बदलते मौसम में एक चीज कॉमन होती है, जी हाँ, वो होती है 2 जून की रोटी की जद्दोजहद। तो आज का प्रोग्राम रस बहार भी केंद्रित है इसी 2 जून की रोटी के साथ एक सुकून भरी जिंदगी की चाह पर। और इस कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से बता देती हूँ कि आज है आपके साथ सारिका शुक्ला।

जी दोस्तों, सुबह के 9:05 और 28 सेकंड का समय। अब कानपुर की रोड्स धीरे धीरे बिजी होने लगी हैं।

कहीं चाय की दुकान पर लोग दिन की शुरुआत कर रहे हैं। कानपुर की सड़कें धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। जी हाँ, कहीं है बसों की आवाजाही, कहीं ऑफिस जाने वालों की जल्दी, कहीं फैक्ट्री की ओर बढ़ते कदम और कहीं धूप तेज होने से पहले अपना ठेला लगाने की तैयारी। हर इंसान जैसे एक ही कोशिश में लगा है कि बस 2 जून की रोटी चलती रहे। वैसे दोस्तों, 2 जून शब्द जो है, या जून शब्द जो है, अवधि भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है समय। जी हाँ, और यहीं से ये कहावत चल निकली, बस 2 जून की रोटी मिल जाए। ऐसा हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इस एक लाइन के पीछे कितनी सुबह अधूरी नींद निकलती है पता है आपको? कितने लोग तपती धूप में निकलते हैं और कितनी माएं अपनी थकान छुपाकर मुस्कुरा देती हैं। कितने पिता अपनी जरूरतें भूलकर अपने बच्चों के सपने पूरा करने में लग जाते हैं। जी हाँ, ये शायद वही समझ सकता है जिसने 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष किया है। लेकिन दोस्तों, जब समाज में कोई आगे बढ़कर किसी और की रोटी का सहारा बन जाए, तो इंसानियत और भी खूबसूरत लगने लगती है। और ऐसी ही एक खूबसूरत पहल शुरू की गई है अपने कानपुर शहर में। तो ये अनोखी पहल अपने कानपुर में कहां और किसने किसके सहयोग से शुरू की गई है और किसने शुरू की है, बताऊंगी पर इस वाले ट्रैक के बाद।

समाज में कोई आगे बढ़कर किसी और की रोटी का सहारा बन जाए तो इंसानियत और भी खूबसूरत लगने लगती है। और ऐसी ही एक खूबसूरत पहल शुरू की गई है अपने कानपुर शहर में। तो ये बात अब आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि IIT कानपुर के स्टूडेंट्स ने जब इस बात को समझा कि भूखे पेट पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो इस क्षेत्र में इन्होंने एक मिसाल पेश की और सैकड़ों भूखे बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया। जी हाँ, IIT कानपुर के आसपास काफी ऐसे परिवार रहते हैं जिन्हें 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो इस जो परिवार थे और इनके जो बच्चे थे इनको पढ़ाने के लिए 1964 में कैंपस में ही अपॉर्चुनिटी स्कूल की शुरुआत हुई, जहां शिक्षा मुफ्त में दी जाती थी इन बच्चों को। पर दोस्तों, समय बीतने के बाद नोटिस किया गया कि बच्चे भूख के कारण पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे। और जब ये बात IIT कैंपस में पहुंची तो काफी सोच विचार के साथ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साल 2024 में निकाला गया। और ये जो सॉल्यूशन निकाला गया ये एक पहल के साथ आया। जी हाँ, प्रोफेसरों के प्रोत्साहन पर IIT स्टूडेंट्स ने बच्चों को बढ़िया खाना प्रोवाइड करवाने का जो बीड़ा था उसे उठाया और कैलकुलेशन निकाला गया कि अगर हर IIT स्टूडेंट अपने महीने के मेस बिल में सिर्फ 20 रुपए का अतिरिक्त सहयोग करे तो बच्चों को हफ्ते में 5 दिन पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिल सकेगा। फिर क्या था दोस्तों, 1 जुलाई 2024 को बच्चों को यह खाना परोसा गया और इस पहल का नाम पंचामृत रखा गया। 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम रस बाहर 2 जून की रोटी एंजॉय कर रहे हैं आप।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: काग

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है 2 जून की रोटी विशेष कार्यक्रम रस बहार। दोस्तों, पहले के टाइम में 2 जून की रोटी का मतलब बहुत सिंपल हुआ करता था। लोग सुबह खेतों, दुकानों या फैक्ट्री की तरफ निकल जाते। सफर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, न ट्रैफिक की इतनी प्रॉब्लम, ना EMI, ना हर महीने इतने बिल्स। कम रिसोर्सेस थे लेकिन लाइफ में पीस ज्यादा था। शाम को रोटी का इंतजाम करके सब साथ बैठ कर खाना खाते और वही उस दिन का अचीवमेंट बन जाता। लेकिन आज दोस्तों, 2 जून की रोटी सिर्फ रोटी नहीं रह गई, अब इसके साथ जुड़ गई हाउस रेंट, बच्चों के स्कूल फीस, फ्यूल प्राइसेस, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट बिल्स, मेडिकल एक्सपेंसेस और बैंक EMI। तो आज का जो इंसान है ना, वो घर से सिर्फ खाने के जुगाड़ के लिए नहीं निकलता बल्कि पूरी लाइफ को मैनेज करने की कोशिश में निकलता है। सुबह घर से निकलते ही स्ट्रगल शुरू हो जाता है, ट्रैफिक जाम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भीड़ और ऊपर से मौसम की मार, कभी फ्यूल भरवाने की टेंशन, कभी ऑफिस पहुंचने की हरी। पहले लोग कम कमाते थे लेकिन एक्सपेंसेस भी लिमिटेड हुआ करते थे। आज सुविधाएं बढ़ गईं लेकिन उन्हें मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल भी ज्यादा है। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप।

102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है रस बहार और आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है 2 जून की रोटी पर। वैसे दोस्तों आजकल ना अगर 2 जून की रोटी कमाने निकलिए तो लगता है जैसे जिंदगी बोल रही है भाई लेवल कंप्लीट कर लो फिर आगे बढ़ो। एक वाक्य जो है वो याद आया। एक साहब सुबह घर से निकले, पत्नी बोली लंच टाइम पर खा लेना। साहब बोले खाना तो खा लेंगे, पहले ये बता दो टाइम कहाँ मिलेगा। और टाइम की जो कमी है ना वो बहुत ज्यादा है जनाब इन दिनों। एक और जो अभी अभी क्लिक किया, एक दोस्त दूसरे से बोला पहले लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए मेहनत करते थे। दूसरा बोला अब रिचार्ज पेट्रोल और पासवर्ड भी जोड़ लो भाई। वैसे आजकल का सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है क्या दोस्तों? अब सैलरी आने से ज्यादा खुशी उस मैसेज की होती है जिसमें लिखा होता है EMI सक्सेसफुली डिडक्टेड। होता है ना ऐसा ही आपके साथ भी कुछ? वैसे सच कहें दोस्तों आज की लाइफ में फिजिकल टायर्डनेस ज्यादा मेंटल जो स्ट्रेस है वो बढ़ गई है फिजिकल टायर्डनेस से ज्यादा। हर इंसान तेजी से भाग रहा है और इसका सबसे बड़ा फर्क ये आया है कि पहले लोग थक कर खाना खाते थे, आज लोग टेंशन में खाना खा रहे। प्लेट में खाना होता है लेकिन दिमाग में फ्यूचर की चिंता। आज खाने में वैरायटी तो बढ़ गई लेकिन संतुष्टि कहीं मिसिंग है और शायद इसीलिए आज बैलेंस पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। मनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों लेकिन मेंटल पीस भी उतना ही जरूरी है। काम जरूरी है लेकिन फैमिली के साथ टेंशन फ्री बैठकर खाना खाना भी बहुत जरूरी है। अगर हम इस भागती जिंदगी में बस थोड़ा सा स्लो हो जाएं, थोड़ा खुद को टाइम दे तो शायद 2 जून की रोटी का स्वाद फिर से पहले जैसा ही हम महसूस कर सकेंगे जिसमें सिर्फ खाना नहीं घर अपनापन और सुकून भी शामिल होगा। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है रस बहार।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रसभार, और आज का ये कार्यक्रम आधारित है 2 जून की रोटी पर। वैसे दोस्तों, आज की जो अनबैलेंस्ड लाइफ है, इसका असर भी कहीं ना कहीं हमारी 2 जून की रोटी पर साफ दिखाई देने लगा है। जी हाँ, लेट नाइट तक मोबाइल चलाना, कम नींद, हर समय स्ट्रेस और जल्दी में रहना, और इन सब की वजह से सुबह उठना भी अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। पहले लोग जहाँ जल्दी सोते और फ्रेश माइंड के साथ सुबह काम पर चले जाते थे, इसलिए तब क्या होता था कि थकान कम और एनर्जी ज्यादा होती थी। लेकिन आज लोग रात भर टेंशन, वर्कलोड या स्क्रीन टाइम में उलझे रहते हैं और फिर सुबह अलार्म के साथ नहीं बल्कि प्रेशर के साथ उठते हैं, और फिर शाम आते आते कई काम अधूरे रह जाते, और शायद इसलिए आज 2 जून की रोटी के लिए हेल्दी, बैलेंस्ड और मेंटली पीसफुल रहना भी बहुत जरूरी हो गया है। वैसे दोस्तों, 2 जून की रोटी सिर्फ एक मुहावरा नहीं, ये हिंदुस्तान की करोड़ों कहानियों की सच्चाई है। अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें एक आम आदमी हर सुबह घर से सिर्फ अपने परिवार के लिए रोटी कमाने निकलता है। चाहे फिल्म 2 बीघा जमीन में किसान का संघर्ष हो, मदर इंडिया में एक माँ की जद्दोजहद, या फिर नया दौर मूवी में मजदूरों का रोजगार बचाने का संघर्ष। वहीं अगर बात करें हिंदी साहित्य की, तो मुंशी प्रेम चंद्र की कहानी कफन और पूस की रात की बात करें, तो अगर इन्हें हम पढ़ें तो लगता है कि जैसे ठंडी रात, खाली चूल्हा और उम्मीद से भरी आंखें हमारे ही सामने खड़ी हों। वहीं दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणुक ने गांव की मिट्टी से जुड़ी जिंदगी को ऐसे शब्द दिए कि रोटी के लिए उनके हर संघर्ष में अपनापन महसूस होता है। वैसे भी कहानियों की खूबसूरत बात यही होती है दोस्तों, कि चाहे समय कितना बदल जाए, रोटी की अहमियत, मेहनत का सम्मान और इंसान की उम्मीदें कभी कम नहीं होती। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है 2 जून की रोटी पर और इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं सारिका के साथ।

दोस्तों आज के रस बहार प्रोग्राम के थ्रू एफएम 102.2 रेनबो कानपुर कर रहा है सलाम उन सभी मेहनतकश लोगों को जो तपती धूप हो या बारिश या फिर सर्द हवाएं, ट्रैफिक का प्रेशर हो और चाहे हो थकान निकल पड़ते हैं हर सुबह अपने घरों से सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की 2 जून की रोटी के लिए। सलाम उन ट्रैफिक पुलिस को जो चौराहों पर घंटों धूप में खड़े होकर शहर की रफ्तार संभालते हैं। सलाम उन स्वच्छता कर्मचारियों को जो सुबह सुबह हमारी गलियों सड़कों को साफ करके शहर को सांस लेने लायक बनाते हैं। सलाम उन ठेले वालों को जो पसीने में भीगी कमीज के साथ हमारी जरूरत का सामान हम तक पहुंचाते हैं, और साथ ही चाहे रिक्शा चालक हो, डिलीवरी बॉयज हो, चाहे सेंसेस और वर्कर्स जो सर्वे वर्कर्स हैं वो हो जो अपने घर की जिम्मेदारियां लेकर रोज भीड़ और डेडलाइंस से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। साथ ही दोस्तों आपको भी और हमें भी सलाम जो हर दिन मुस्कुराते हुए निकल पड़ते हैं, क्योंकि जिंदगी का कोई भी दिन चाहे जितना मुश्किल हो घर लौटते वक्त यही सुकून रहता है कि आज 2 जून की रोटी का इंतजाम तो हो गया।

तो दोस्तों रोटी कमाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ लाइफ का बैलेंस भी उतना ही जरूरी है। काम के साथ थोड़ा आराम, भाग दौड़ के साथ थोड़ा सुकून, और जिम्मेदारियों के साथ अपनेपन के कुछ पल भी बचा कर रखिए। फिलहाल प्रोग्राम रस बाहर को यही वाइंड अप करने की दीजिए सारिका शुक्ला को इजाजत। ब्रेक के उस पार मिलती हूँ आपसे प्रोग्राम राग रंग के साथ, जो बेस्ड है शास्त्रीय रागों पर।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: विविधा के तहत लीजिए सुनिए शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए दो अलग अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। हमीरपुर के डीएम अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नमामि गंगा कर रहे हैं, घटना से संबंधित सभी प्रशासनिक, तकनीकी और प्रतिक्रियात्मक पहलुओं की विस्तृत जांच कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन ने विशेषज्ञ मूल्यांकन करने के लिए 3 सदस्यीय तकनीकी समिति का गठन किया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में जान गंवाने वाले 6 श्रमिकों के परिवारों को सरकार द्वारा 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त निर्माण कंपनी ने प्रत्येक मृतक श्रमिक के परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। श्रम विभाग की योजनाओं के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 1,25,000 रुपए की सहायता भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर जिले के तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के हरिहरपुर में आयोजित समारोह में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कुशीनगर में निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम गोरखपुर में चिलू आताल घाट पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कराए गए चिलू आताल के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

वेलकम बैक अगेन ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो, जहां आपके साथ है आपका दिल आरजे निखिल। 10:04 का ये वक्त और जो टाइम हो चुका है ये है सुपरहिट सॉन्ग्स का। तो सुपरहिट सॉन्ग्स कुछ स्पेशल इस बार आपके लिए लेकर आया हूं एक नए कलेवर में, क्योंकि सुपरहिट सॉन्ग्स आप तो जानते हैं पहचानते हैं, लेकिन अगर आपको उनका एक नया फ्लेवर मिल जाए तो कैसा लगेगा? जी हाँ, सुपरहिट सॉन्ग्स जो आपने अब तक सुन रखे हैं उन्हीं का रिमिक्स फ्लेवर आज कुछ खास। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग और साथ में आप FM रेनबो।

आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

again remix of Supermate's song, and the song name is Oye Oye from the movie Azhar. 10:13 का वक्त सुपर हिट सॉन्ग्स का प्रिय प्रोग्राम, एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल विद द लार्ज निखिल, सुनते रहिए।

जी दोस्तों, कुछ याद आया? ये म्यूजिकल ट्रैक पहले आपने सुना था बीवी नंबर वन मूवी में। और अब ये म्यूजिकल ट्रैक आ चुका है मूवी में है जवानी तो इश्क होना है।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आज के गाने आपको बहुत ही मस्त मस्त लगे होंगे। सुपर हिट सॉन्ग्स का ये प्रोग्राम, फिलहाल 10:57 का ये वक्त। तो अब मुझे आपको टाटा बाय बाय कहना होगा इस प्रोग्राम से, क्योंकि न्यूज ब्रेक के बाद 11 बजे आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसका की नाम है संदेश आपके गीत हमारे, जहां आप हमको संदेश भेज सकते हैं और उसको हम अपने जरिए यानी कि 100.7 FM रेनबो के जरिए बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसके लिए आप अपना

संदेश हमें भेज सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। आप हमें फोन कॉल भी कर सकते हैं 0522 2238 852 पर या फिर 0522 2238 845 पर। एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक जाते जाते स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल विद दिल्ला आरजे निखिल।

102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हो चुके हैं आप। वक्त हो गया है प्रोग्राम हमनवा का।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2 जून की इस सुहानी मुलाकात में। हम नवा प्रोग्राम के साथ मैं आरजे सारिका, और 2 जून की इस सुहानी मुलाकात में आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं।
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम दोस्तों। सारिका, तुमने देखो अभी 2 जून की बात कही है, और तुम्हारी इस बात पर ना मुझे एक बहुत ही मशहूर मुहावरा याद आ गया, तुमने भी सुना होगा, 2 जून की रोटी, यानी कि सबसे बुनियादी जरूरत। मेहनत से मिलने वाला रोज का भरोसा और सम्मानजनक जीवन यापन।
0: वाह मालिनी, बड़ी खूबसूरत बात कही तुमने। लेकिन ये जो बात है ना, मैं अपने लिसनर से कुछ समय पहले प्रोग्राम रस बहार में शेयर कर चुकी हूँ। एक तरफ 2 जून की रोटी जहाँ जिंदगी की जरूरतों की याद दिलाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कैलेंडर का ये 2 जून मौसम के एक नए अध्याय की शुरुआत का भी एहसास करा जाता है।
1: बिल्कुल, देखो जून की शुरुआत हो चुकी है सारिका, और कमाल देखो ना, 25 मई के आसपास नौतपा लगा था, और आज 2 जून को नौतपा खत्म हो रहा है। नौतपा यानी कि गर्मियों का सबसे तपता दिन। और तुमने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ना, सूरज ने देखो बार बार धरती को तपाकर बहुत गर्माहट भी दी। हम सब बहुत गर्मी से बेहाल हुए, चिलचिलाती धूप और जो पूरा दिन था वो गर्मी भरा था है। और ऐसे में हल्की फुल्की बूंदा बांदी, बादलों की गड़गड़ाहट, मतलब नौतपा में ये सारी चीजें हुई ना, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमें खुशियां दे गई।
0: खुशियां तो दे गई मान लीजिए, लेकिन सोचने पर भी हमें विवश कर गई कि ये जो मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, इसमें सुधार लाने के लिए हमें अपने में भी सुधार लाने की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जरूरत है।
1: और देखो अभी 2 जून की रोटी की हमने बात की, तो सुख की रोटी तो वाकई में सुकून की रोटी मिल जाती है,

0: तो शायद अगर हम सुख और सुकून से दो दो रोटी खा लेते हैं ना, तो हम शायद स्वस्थ रहते हैं।
1: बिल्कुल। और वैसे ये जो बार बार आपने 2 जून की बात की है ना आज के प्रोग्राम में, तो इसका अर्थ जो है वो अवधी भाषा में समय से होता है। हाँ, और 2 जून की रोटी की जो कहावत है वो ये हर आदमी को कहते, हर दूसरे आदमी को कहते, हम सुन जाते हैं कि बस 2 जून की रोटी मिल जाए, ऐसा हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन इस एक लाइन के पीछे कितनी सुबह अधूरी नींद में खुलती है, कितने लोग तपती धूप में निकलते हैं, कितनी माएँ अपनी थकान छुपाकर मुस्कुरा देती हैं, और कितने पिता अपनी जरूरतें भूलकर अपने बच्चों के सपने पूरा करने में लग जाते हैं। ये वही समझ सकता है जिसने इसके लिए संघर्ष किया हो।
0: बिल्कुल, जो एफर्ट्स करता है उसी को समझ में आता है, और आई थिंक एफर्ट्स करना चाहिए हम सबको। उससे हम होता क्या है ना, कोशिश करते रहने से और अपना ध्यान रखने से और अपने खान पान की का ध्यान रखने से, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखने से हम स्वस्थ भी रहते हैं, और शायद मेहनत जब हमारी सफल होती है, हमें उसका जो है मिलता है, जो हम उस रोटी को खाते हैं मेहनत से कमाए धन से, तो उसका सुकून ही कुछ अलग होता है। और सारिका, आज देखो ना 2 जून का दिन भी है, मौसम भी रंग थोड़ा सा बदला है, और आज खुशी का दिन भी है क्योंकि आज नौतपा भी खत्म हो रहा है।
1: बिल्कुल, और आज खुशी का दिन है कि हम और आप मिल रहे हैं,
0: बिल्कुल साथ में हैं, और बहुत सारी स्पेशल बातें भी आज हम करने वाले हैं प्रोग्राम में। और लिसनर्स को पहले ये तो बता दे कि आज हम क्या क्या स्पेशल बातें करेंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि आज की हमनवा की महफिल होगी बहुत स्पेशल। महफिल में आज जिक्र होगा अल्पसंख्यकों के लिए पीएम का जो 15 सूत्री कार्यक्रम है, नई मंजिल योजना, हम अपने जो लिसनर्स हैं उनसे उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे साहित्य से प्रभावित सिनेमा की, अच्छी जीवन शैली और अच्छा स्वास्थ्य पर भी हम करेंगे चर्चा।
0: और बात होगी अपने आकाशवाणी की, भाई सब कुछ हो जाए तो अपने आकाशवाणी की चर्चा तो बनती ही है ना सारिका। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष के सेलिब्रेशन में आज खास चर्चा होगी खेलों के आंखों देखे हाल पर।
1: और तो अगर हमारे लिसनर्स भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और आंखों देखा हाल जो खेलों पर उन्होंने कमेंट्री कभी सुनी है और उसे अब महसूस किया उस रोमांच को, तो आप अपने उस रोमांच को हमसे शेयर कर सकते हैं अपने ईमेल भेजकर।
0: और तेजस्विनी और रेसिपी में क्या खास होगा, जस्ट वेट एंड वॉच।
1: पर हम अपने लिसनर से शेयर कर देते हैं अपनी मेल आईडी, तो नोट कर लीजिए, हमारी ईमेल आईडी है AIRKANSOMEGIA@gmail.com। और साथ में ही हम बढ़ते हैं माली जी
0: गाने की ओर। तो आपकी मेल का हमें इंतजार रहेगा, फिलहाल तो एंजॉय करते हैं गाना।

0: साड़ी का बड़ा ही खूबसूरत सा गीत है ये, आकाशवाणी का सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बहुत कुछ याद दिला जाता है। और आकाशवाणी जो है ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है, इसका जो तर्ज है इस पर सदियों से लोगों को अपना बनाती चली आ रही है, चाहे विविध भारती हो या FM रेनबो हो, इसी के अलग अलग दो रूप है।
1: और बात अब उस आवाज की जो पीढ़ियों से हमारे दिलों तक पहुंचती रही है, उस भरोसे की, उस अपनेपन की, जिसका नाम आकाशवाणी है।
0: वैसे सारिका, 90 साल का जो ये सफर है ना, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग का सफर नहीं है, ये भारत की धड़कनों, भावनाओं और संस्कृति और यादों का सफर भी है।
1: बिल्कुल, कभी गांव की चौपालों में रखा रेडियो तो कभी शहर की सुबह में बजती सिग्नेचर ट्यून, साथ ही दूर दूर तक सुनाई देती अनाउंसर्स की आवाजें। आकाशवाणी ने सिर्फ लोगों का मान लीजिए मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि लोगों को एक दूसरे से जोड़े भी रखा।
0: और जब बात खेलों की आती है तो आकाशवाणी का

0: आंखों देखा हाल सारिका, आज भी बड़ा रोमांचक लगता है। तुम भी सुनती होगी पहले कमेंट्री रेडियो पे?
1: बिल्कुल, और वो दौर जब घरों में टेलीविजन नहीं होता था, लेकिन रेडियो कमेंट्री जो थी वो पूरे स्टेडियम का रोमांच घर पर पहुंचा देती थी। याद है अपना बचपन का वो जमाना?
2: सही बात है।
1: पापा लोग मैच देखते थे और ग्रैंडफादर जैसे थे तो वो लोग मैच देखते थे, तो क्या होता था कि अगर बाय चांस इंडिया टीम जीत गई तो बहुत बढ़िया है कि हमें कुछ ना कुछ मिलता था, अच्छा पकवान बनते थे, ऐसा लगता था घर में जश्न
2: सेलिब्रेशन हो रहा है,
1: सेलिब्रेशन है। लेकिन अगर कहीं कभी हार गई तो क्या होता था कि हमारी सबसे पहले तो दूसरे दिन की जो पॉकेट मनी थी वो हमें नहीं मिलती थी, और वो जो गुस्सा था पापा का या ग्रैंडपा का वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर निकल ही जाता था।
2: वैसे सारिका मैं भी कभी निकलती थी जिस दिन कभी मैच आ रहा होता तो घर में ना हो, अगर बाहर भी निकलते थे तो मैं देखती थी कभी कभी जो है चाय के ठेले पे या जो छोटी सी गुमटियां होती थी चाय पे वहां लोग रेडियो लगा लेते, और इतने सारे जो है सड़क चलने वाले राही जो होते थे वहां पे रुक करके मतलब एंटरटेनमेंट भी करते थे और चाय की चुस्कियां भी लेते थे, क्या आनंद आता था उन, और इतनी सारी बातें भी होती थी और सबके फेस पे मुस्कुराहट रहती थी।
1: बिल्कुल, इसका जो असर था वो हमारे किचन तक भी पहुंच जाता था।
2: हाँ, बिल्कुल,
1: सब्जी अगर चला रही है करछी से तो क्या होता था वो करछी उस समय रुक जाती थी जब बाई चांस चौवा या छक्का लग जाता था,
2: घर में शोर मचता था,
1: शोर के सुन करके वो उनकी करछी रुक जाती थी। तो वो दौर बहुत ही खूबसूरत था, और हमारे श्रोता जो उस दौर से रूबरू हुए होंगे वो भी अगर अपने मन के भाव हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें अपनी मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है aarkansomedia@gmail.com।
2: और क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने भी कभी रेडियो या टेलीविजन पर कमेंट्री सुनी होगी तो आपको सुनने के बाद कैसा फील हुआ, जो आपके एहसास है वो हमें शेयर कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर। और फिलहाल क्रिकेट मैच हो, हॉकी का रोमांच या फिर ओलंपिक्स का जोश, भाई क्या बात है, आकाशवाणी के जो है कमेंट्रेटर्स जो हैं अपनी आवाज से ऐसा माहौल जमा देते थे, ऐसा माहौल बना देते थे कि सुनने वाला खुद को स्टेडियम में ही महसूस करता था।
1: बिल्कुल, गेंदबाज दौड़ते हुए आ रहे हैं और ये शानदार चौका। बस इतना ही सुनते ही लोग खुशी से उछल पड़ते थे। कई लेजेंडरी कमेंट्रेटर्स जैसे कि सुशील दोषी जो भारत के सबसे दिग्गज और अनुभवी क्रिकेट कमेंट्रेटर्स में एक है, इन्हें खेल के सूक्ष्म विवरण और सटीक हिंदी शब्दावली के लिए जाना जाता है।
2: अच्छा, ऐसे ही एक मुझे याद आ रहे हैं संजय बैनर्जी, है ना, हिंदी कमेंट्री में महारत हासिल थी उन्हें, प्रमुख घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मैचों की रेडियो कमेंट्री में एक लोकप्रिय और आधिकारिक आवाज रही है ये।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही डॉक्टर मिलिंद टिफनिस थे जो हिंदी और मराठी खेल कमेंट्री के लिए बहुत ही विख्यात थे, और सुनील गुप्ता जी का नाम जैसे कि अंग्रेजी क्रिकेट कमेंट्री में अंतर्राष्ट्रीय मैचों के सीधे प्रसारण में अंग्रेजी के प्रमुख कमेंट्रेटर्स में से ये एक थे।
2: और साथ ही रवि चतुर्वेदी, तुम्हें याद है सारिका?
1: रवि चतुर्वेदी जी हो या जसदेव सिंह जी या फिर सुरेश सरैया अंग्रेजी कमेंट्रेटर, इन सब ने मिलकर कमेंट्री को सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक एहसास बना दिया। साथ ही अगर हम प्रो कबड्डी के कमेंट्रेटर जिनका नाम बहुत फेमस है, सुनील तनेजा और रवि किशन जी, इनको कैसे
2: भूल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
1: और
2: इनकी जो आवाजों में ना एक्साइटमेंट भी होता था वो बिल्कुल मतलब हमारे सुनने वाले श्रोताओं को कनेक्ट कर लेता था, मतलब श्रोता एकदम दीवाने हो जाते थे उनके बोलने के अंदाज पे, लैंग्वेज की मिठास और खेल के प्रति सम्मान भी उनमें गजब का भाव लेके आते थे वो।
1: बिल्कुल, और इन्हीं की कमेंट्री के जरिए लोगों ने सुनील गावस्कर के जो पेशेंस था उनको जाना, कपिल देव जी की फियरलेस एनर्जी को जाना, सचिन तेंदुलकर के डेडिकेशन और मिल्खा सिंह जी की स्पीड और संघर्ष को महसूस किया।
2: सारिका, ये सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि ये जो है ये भी बताते थे कि कौन सा खिलाड़ी प्रेशर में है, कौन चुपचाप मेहनत कर रहा है और कौन मुश्किल के समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ता है, लगातार मेहनत कर रहा है।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि आज भी रेडियो की बात होते ही पुराना दौर जो होता है, जो बीत गया है वो याद आ जाता है, नॉस्टैल्जिया जाग उठता है। वैसे हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अभी कुछ दिनों के बाद ही 14 जून को विमेंस T20 वर्ल्ड कप भी आयोजित होने वाला है, और इसका आंखों देखा हाल आप 102.2 FM रेनबो कानपुर से सुन सकते हैं।
2: और टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए लेकिन आवाज से जुड़ा अपनापन कभी

0: पुराना नहीं होता, जैसे कि आप भी हमारी आवाज पहचानते हैं, सारिका की भी पहचान रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो आइए आकाशवाणी के 90 वर्षों को दिल से सैल्यूट करें और साथ ही सैल्यूट करें उन सभी आवाजों को जिन्होंने शब्दों से पूरे देश को जोड़े रखा।

0: आना नहीं होता, जैसे कि आप भी हमारी आवाज पहचानते हैं, सारिका की भी पहचान रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो आइए आकाशवाणी के 90 वर्षों को दिल से सैल्यूट करें और साथ ही सैल्यूट करें उन सभी आवाजों को जिन्होंने शब्दों से पूरे देश को जोड़े रखा।

0: काम को करने का जज्बा जो होता है वो और भी बढ़ जाता है।
1: और दूसरी चीज देखो ना, फिल्में भी बनी है हमारे क्रिकेट पे या हमारे वॉलीबॉल पे, बहुत सारी हमारे खेलों पे भी फिल्में बनी हुई हैं।
0: बिल्कुल, तो कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और जब बात साहित्य सिनेमा की होती है तो साहित्य सिनेमा के पर्दे पर उतरता है जो साहित्य, तो कहानियां और भी जीवंत हो जाती हैं। और इसी सजीवता की अब हम बात करेंगे, यानी कि हम चर्चा करेंगे साहित्य से प्रभावित सिनेमा की।
1: अच्छा सारिका, बड़ा ही इंस्पायर किया है हमारे जो नॉवेल्स हैं, हमारी उपन्यास हैं, इन्होंने फिल्म जगत को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया। हिंदी सिनेमा में कई ऐसी शानदार फिल्में बनी है ना जिनकी जड़ें साहित्य में है। उदाहरण के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, कथाकार मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन, कहानी शतरंज के खिलाड़ी ने फिल्मों को प्रेरित किया। शतरंज के खिलाड़ी फिल्म जो बनी ना, ये फिल्म जो है मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे ने बनाई, और बड़े ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने इसे पर्दे पर उतारा।
0: बिल्कुल माली जी, और भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं रहा बल्कि समाज का आईना भी बना। कई ऐसी फिल्में जिन्हें बनी जिन्होंने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और रोजी रोटी के संघर्ष को बड़ी संवेदनशीलता से दिखाया, और इनमें से कई फिल्में मशहूर उपन्यासों और कहानियों पर ही आधारित थी।
1: अच्छा, जैसे कि हमारे लोक कथाओं पर भी फिल्में बनी सारिका, और हमारे बहुत से पाश्चात्य राइटर थे, उन्होंने भी बहुत सारी जो नॉवेल्स लिखी उस पर भी भारतीय सिनेमा ने फिल्में बनाई, बहुत सारे डायरेक्टर्स पे काम किए। तो इन सभी फिल्मों ने, जैसे आर के नारायण के उपन्यास गाइड पर एक फिल्म बनी गाइड है, ये भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाने वाली फिल्म है। और इसी तरह एक तुम्हें विजय दान दे था की लोक कथा से प्रेरित, याद है राइटर, इनकी लोक कथा से प्रेरित फिल्म पहेली ने लोक साहित्य की खुशबू को बड़े पर्दे तक पहुंचाया।
0: बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जैसे बच्चों की दुनिया और संघर्ष पर कुछ फिल्में बनी जो उन पर आधारित थी, जैसे कि अगर हम बात करें रस्किन बॉन्ड द ब्लू अम्ब्रेला इनके उपन्यास की, तो उस पर बनी थी तारे जमी पर मूवी। और ये फिल्म बच्चों की मानसिक दुनिया, पढ़ाई के दबाव और कई उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, शारीरिक प्रॉब्लम, उन पर भी ये केंद्रित थी, है ना। और ऐसे ही और भी, जैसे स्टैनले का डब्बा, ये मूवी भी बनी, और ये बनी थी इनकी चेतन भगत की ही ये एक उपन्यास थी जिसका नाम था 5.1, और ये इस पर ही आधारित थी। और इसी तरह से अगर हम युवाओं के पर बनी फिल्मों की बात करें तो 3 Idiots जो बनी, उसे हम कैसे भूल सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जो शिक्षा व्यवस्था और युवाओं पर पड़ने वाले दबाव को बताती है।
1: बिल्कुल, और सारिका भीष्म साहनी का उपन्यास तमस, इसका नाम तो तुमने सुना ही होगा। तो ये तमस फिल्म जो है ना, भारत के विभाजन की भयावहता पर आधारित फिल्म है। तमस पर आधारित फिल्म और धारावाहिक ने विभाजन की पीड़ा को बेहद संवेदनशीलता से मतलब बड़े पर्दे और छोटे पर्दे दोनों पर प्रस्तुत किया है। साहित्य ने सिनेमा को केवल कथानक ही नहीं बल्कि गहराई, संवेदना और विचार भी दिए हैं।
0: बिल्कुल, और वहीं अगर हम बात करें चेतन भगत की उपन्यास द 3 Mistakes of My Life पर बनी फिल्म काय पोचे की, तो ये भी युवा की जो अंदर संघर्ष था, उसकी पीड़ा थी, उसे भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है।
1: बहुत ही संवेदनशीलता से इसे दिखाया गया है। और सारी का एक बहुत ही फेमस फिल्म है, उसे शायद तुम भी जानती होगी।
0: कौन सी? देवदास।
1: अच्छा, देवदास की बात करें तो देवदास फिल्म ना लगभग आई थिंक, मैंने कई जगह पढ़ा हुआ है, 15 बार बन चुकी है और कई भाषाओं में बनी है।
0: बिल्कुल, और ये जो फिल्म है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर ही आधारित थी। ये 2-3 बार नहीं बल्कि 15 बार बन चुकी है, जैसा कि आपने कहा है, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। जितनी बार देखो
1: मतलब लगता है कि कुछ अनोखी स्टोरी है। तो जब इस फिल्म की बात चली है तो क्यों ना आज इस फिल्म का एक गाना सुनवा दिया जाए लिसनर्स को, क्योंकि देवदास के तो गाने वाकई में बहुत ही खूबसूरत गाने हैं।
0: बिल्कुल, सुनवा दिया जाए।

0: सारिका बहुत ही जोश भरा गाना था और वाकई में कहीं ना कहीं ये गाना भी हम लोग को क्रिकेट के मैदान में लेके गया।
1: बिल्कुल, वैसे कहते हैं मालिनी जी कि क्रिकेट का मैदान हो या फिर हमारा क्या बोलते हैं घर या फिर कहीं भी, अगर जोश बरकरार रहता है तो किसी भी

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट है आप। प्रोग्राम चल रहा है हमनवा और आज इस कार्यक्रम को लेकर सारिका और मालिनी हैं आपके
1: साथ। मैं हूँ मालिनी और सारिका के साथ। और सारिका, मौसम काफी गर्म है, तुम देख रही हो रोज, मतलब दिन में निकलना बहुत ही मुश्किल होता है कहीं बाहर। बट मैंने देखा है ना कि कुछ लोग गर्मी को गर्मी नहीं समझते हैं और जाड़े को जाड़ा नहीं, बस उनकी दिनचर्या रोज में एक जैसी ही होती है। और पता है ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उन्हें मतलब जैसा लगता है उनको देख के कि उनकी उम्र कहीं ठहर सी गई है।
0: वैसे यही तो मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप हमेशा ऊर्जावान और हैप्पी हैप्पी कैसे रहती हैं। वैसे मैं भी कुछ एनर्जेटिक रहने के लिए फॉलो करती हूँ, लेकिन आप क्या करती हैं?

0: वो पहले शेयर करिए।
1: अरे सारिका, पता है हैप्पी रहना तो अच्छी बात होती है ना। पता है होता क्या है, जैसे बहुत सारी सिचुएशंस हमारे सामने आती है, ऐसा नहीं है कि कभी अप एंड डाउन्स लाइफ में होते नहीं है, लेकिन पता है उस सोच को वहां पे पॉजिटिव करने की जरूरत होती है। और होता क्या है, जब हम सोचते हैं ना कि इसके आने वाला अगला वक्त हमारे लिए खुशियां लेकर आएगा, तो बस उस चीज को सोच के कहीं ना कहीं उन दिन को जब हम काटते हैं, तो जब हम मन से पॉजिटिव होते हैं तो ऑटोमेटिक जो दिक्कतें होती हैं वो दूर होने लगती हैं हमसे, और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आने लगती है। और ये सारी चीज़ें होती है कहीं ना कहीं हमारे मतलब अच्छे खान पान से, कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या जो होती है उस पर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें, हमारी सोच जो होती है।
0: बिल्कुल, तो हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम सकारात्मक लोगों के साथ में रहें, है ना, निगेटिविटी इससे थोड़ा सा दूर रहें और कोशिश करें कि अच्छी बातों में और अच्छी चीज़ों में ही मन लगाएं। साथ ही जो अच्छा स्वास्थ्य है इसके लिए भी कई चीज़ें हैं जो हमें अपनानी होती हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें भी कई चेंजेस हमें लाने होते हैं। तो सबसे पहले एक जो फिटनेस की बात हम करते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती है आज के दौर में, क्योंकि इतना बिजी स्केड्यूल हो गया है लोगों का और ज़िंदगी जो है वो ऐसा लगता है कि ठहर सी गई है, तो खुद के लिए भी टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: अच्छा सारिका, यहाँ पर मैं कहने पहली बात तो मैं बता दूँ कि अच्छी जीवन शैली और अच्छे स्वास्थ्य की आज हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहली चीज देखो, इंसानों की मैंने देखा है लाइफ में कैटेगरीज होती हैं। एक होता है कि एक मदर होती है जो अपने बच्चे को बचपन से ही अच्छी डाइट देती है, बच्चे के लिए बहुत एफर्ट्स करती है और खुद का भी ध्यान रखती है साथ में, और मतलब जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो अलग होता है। और एक होती हैं कि उनको लगता है कि अरे अब हमने बहुत काम कर लिया, अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। तो ये जो भावना होती है ये कहीं ना कहीं हमें और थका देती है, तो इसके लिए हमको अंदर से एनर्जी को अपनी बरकरार रखने के लिए हमें पूरे मतलब पौष्टिक चीज़ों का सेवन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है दिनचर्या में। जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए सबसे पहले, और कुछ पानी का इंटेक काफ़ी करना चाहिए, और पानी के साथ साथ जैसे कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जैसे कि विटामिन सी है और उसके बाद जो है बहुत सारी मतलब अच्छी चीज जैसे स्प्राउट्स हम खा सकते हैं सुबह उठ के, तो ये सारी चीजें जो होती है हमें एनर्जी देती हैं।
0: तो ये तो हो गई खान पान की बात, तो लेकिन जो सबसे पहले जरूरी है वो जरूरी है हमारी पॉजिटिव सोच। उसके बाद जो हम बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसे बिजी लाइफ में वो है हमें फिट रहने के लिए, एक्सरसाइज के लिए कहीं ना कहीं अपने शरीर के लिए आधा या पौन घंटा या एक घंटा का समय जरूर निकालना है। हम आप चाहिए योगा करें, चाहे आप डांस कर लें, या फिर आप जुम्बा या एरोबिक्स के क्लासेस ज्वाइन कर लें, नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ जो आजकल जैसा कि आप हर जगह देख लेंगे कि 10,000 कदम, तो अगर 10,000 चल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं चल सकते हैं तो आप कोशिश करें कि जितने ज्यादा से ज्यादा कदम आप चल सकते हैं वो चलें, तो क्या होगा उससे आपका फिजिकल मूवमेंट बना रहेगा। और फिर बात आ जाएगी खाने पर, तो जैसा कि आपने कहा है कि हमें पौष्टिक खाना बहुत जरूरी हो जाता है जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये कैल्शियम, ये सभी चीजें मतलब इंक्लूड रहनी चाहिए। और इन सब का इंटेक करके अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाएं तो ज्यादा हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा।
1: और सबसे बड़ी चीज देखो, मोटा अनाज जो होता है जिसे हम मिलेट्स भी बोलते हैं, तो अगर हम डेली रूटीन में सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे इन दिनों जौ और रागी की रोटी बेस्ट होती है, मतलब पेट भी भर जाता है और हमें शरीर को अंदर से ठंडा भी रखती है, तो आप वो खा सकते हैं दिन में, मतलब दिन भर में। मैं तो ये कहूँगी कि एक रोटी ज़रूर खानी चाहिए। मोटे अनाज से एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, और जब हमारे अंदर एनर्जी होती है और मतलब अपने लिए जब हम वक्त निकालते हैं तो हम एनर्जेटिक रहते हैं, हमको लगता है कि हाँ हमारे अंदर एनर्जी है। तो मेन और सबसे बड़ी चीज सारिका, स्क्रीन से दूर रहना चाहिए,
0: सोशल मीडिया से दूरी बहुत जरूरी है। और जैसा कि अभी हाल ही में कल मलेशिया में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नियम लागू कर दिया गया है कि उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी,
1: बहुत अच्छी
0: बात। बहुत जरूरी है सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना लेना। और साथ में जैसे अभी हम मिलेट्स की बात कर रही थी, तो मिलेट्स जैसा कि पहले क्या होता था कि लोग चाइनीज या जंक फूड के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, पर लोगों में अब अवेयर कहीं ना कहीं बढ़ रही है, लोग मिलेट्स के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं अपनी रूटीन में।
1: और सारिका देखो, अच्छी सेहत का राज भाई महंगी

0: दवाओं में नहीं बल्कि अच्छी आदतों में छिपा है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है एक दिन में नहीं बनता बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। सबसे जरूरी है कि अपने शरीर की सुनना, तनाव को कम करना और खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना।
1: और एक चीज और भी जरूरी है कि अच्छे लोगों की संगति करना, और जिसके लिए 102.2 FM रेनबो कानपुर है आपके साथ।

0: फिलहाल अपने श्रोताओं को, जो हमारे लिसनर्स हैं, कुछ अपने विचारों के साथ हमसे जुड़ गए हैं, सुनवाते हैं उन वो क्या कहते हैं इस बारे में।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं मोना जौहरी, मेरी उम्र 57 वर्ष है। दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए ना हमें जागरूकता से जुड़ने की जरूरत है। आज मैं आज आप सभी को अपने बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। एक वक्त ऐसा था ना, मेरी दिनचर्या बहुत बिगड़ी हुई थी। खाने का कोई वक्त नहीं था, देर रात तक जागना, देर से सोना, इन सभी वजहों से ना मेरी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। मुझे भूख लगनी बंद हो गई थी और मुझे इस उम्र में आके एक नया मोटिवेशन मिला। मैं मोटिवेट हुई योग से जुड़कर, मैंने अपनी दिनचर्या को स्वस्थ दिनचर्या बनाया। जैसे सुबह जल्दी उठना, टाइम पर हेल्दी नाश्ता करना, टाइम पर लंच करना और डिनर 7-7:30 तक ख़त्म कर देना, 10 बजे आराम से सो जाना, सुबह उठकर प्राणायाम करना, मेडिटेशन और वॉक करना। ये कमाल हुआ योग से जुड़कर। आप लोग भी ना रोजाना किसी भी एक्सरसाइज को दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाइए, जैसा मैंने किया। ऐसा करके ना मैंने अपने स्वास्थ्य में धीरे धीरे बदलाव महसूस किया। अब तो रोज सुबह जल्दी उठना, ताजी हवा में घूमना और प्रकृति से जुड़ना, ये मेरी आदत बन गई। इस आदत में मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक को ना बैलेंस करके हमें अच्छी सेहत दी है। आज मैं खुद को बहुत हल्का, ऊर्जावान और खुशहाल महसूस करती हूँ। इस योग की वजह से ना मुझे जिंदगी ने वो खुशियां दी है ना कि मैं जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। थैंक यू।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दुर्गेश कुमार शुक्ला, आपका दोस्त। एक समय ऐसा था जब सुबह उठते ही शरीर में थकान महसूस होती थी, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता था, दिन भर सुस्ती बनी रहती थी। वजह थी अनियमित दिनचर्या, देर रात तक जागना और खान पान पर ध्यान न देना। लेकिन जब मैंने समय पर सोना, समय पर जागना शुरू किया, घर का पौष्टिक खाना अपनाया, रोज़ थोड़ा योग, टहलना अपनी आदत में शामिल किया, तो धीरे धीरे मेरी सेहत में बड़ा बदलाव आया। आज मैं खुद को पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ, ऊर्जावान और खुश महसूस करता हूँ। सच मानिए, अच्छी सेहत किसी चमत्कार से कम नहीं, अच्छी आदतों से ही बनती है आपकी अच्छी सेहत। धन्यवाद।
3: नमस्कार साथियों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ थकान और शरीर में दर्द आपके जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आज मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम कविता कुलश्रेष्ठ है और मैं पेशे से एक अध्यापिका हूँ। लगभग 2 वर्ष पहले तक मैं भी यही सोचती थी कि दिन भर की थकान और शरीर में रहने वाली तकलीफें शायद उम्र बढ़ने का ही परिणाम है। एक दिन मेरे बच्चों ने मेरे से कहा, क्यों ना मैं अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाऊं। मैंने उनकी बात सुनी और प्रतिदिन कुछ समय योग, ध्यान और सुबह की सैर के लिए निकालना शुरू कर दिया। साथ ही साथ अपने खान पान को भी संतुलित किया और फिर अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। हल्का शरीर, मन शांत और दिन भर ऊर्जा का एहसास। आज मैं रेडियो के माध्यम से अपने सभी साथियों को एक सलाह देना चाहती हूँ कि अगर 24 घंटों में से वो केवल 30 मिनट अपनी सेहत को दे सकते हैं तो विश्वास कीजिए, ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और मेरी एक छोटी सी बात याद रखिए, जब भी अवसर मिले एक पौधा अवश्य लगाएं। पेड़ हमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि ये प्रकृति से जुड़ने का अवसर भी देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रकृति से जुड़े रहेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।

0: बिल्कुल भाई, बात तो बनी जाती है जब कुछ खुशियां हम जैसे हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या हमारे जीवन में कुछ नई चेंजेस होते हैं तो बात तो बनी जाती है सारी।
1: बिल्कुल, और समाज का हर वर्ग आगे बढ़े यही सोच लेकर पीएम 15 सूत्रीय कार्यक्रम भी लोगों की जिंदगी में आया। और क्या बात है, बात बन गई भाई।
0: बिल्कुल,
1: जहां हर बच्चे को शिक्षा मिली, हर हाथ को काम और हर चेहरे पर उम्मीद दिखाई दी, तो कितना अच्छा होता है ये चीज सुनकर देखकर कि सभी एक साथ विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
0: अच्छा, सच मायने में नई मंजिल जो है ये एक योजना है और इसी सोच के साथ ये शुरू हुई प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम है। इसी सोच के साथ ये भी शुरू किया गया जिसका उद्देश्य समाज के उन वर्गों तक विकास पहुंचाना है जो लंबे समय तक मुख्य धारा से दूर रह रहे हैं या कहीं छुपे हुए रहते हैं।
1: बिल्कुल, और इस कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ अवेयरनेस और समान अवसर जैसे कई महत्वपूर्ण बातों पर भी जोर दिया गया ताकि हर इंसान अपने सपनों को पूरा कर सके। और इसी सोच के साथ ही शुरू की गई नई मंजिल भारत सरकार की एक कौशल विकास योजना जिसका उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके अल्पसंख्यक युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ना था।
0: अच्छा, इसके तहत थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि क्या औपचारिकताएं हैं, जैसे मदरसा या स्कूल छोड़ चुके युवाओं को औपचारिक शिक्षा से जोड़ना, स्किल ट्रेनिंग, रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है।
1: बिल्कुल, और योजना का जो लक्ष्य था कि युवा पढ़ाई के साथ कोई हुनर भी सीखें ताकि उन्हें नौकरी या स्वरोजगार मिल सके।
0: अच्छा, इसमें जो है ना सारिका, सिलाई, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, रिटेल, हेल्थ केयर जैसे कई ट्रेड्स जो है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है।
1: बिल्कुल, और यह जो है नई मंजिल योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक विशेष केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से शुरू किया गया है। और ये जो है 17 से 35 वर्ष के बीच के अल्पसंख्यक युवाओं को लक्षित किया गया। इसके अंतर्गत जो स्कूल छोड़ चुके हैं या मदरसों में पारंपरिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं
0: और परीक्षा, ये जो इसकी प्रशिक्षण की अवधि होती है 9 से 12 महीने की होती है और गैर आवासीय एकीकृत कार्यक्रम योजना है ये। मतलब आप चाहें तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी।
1: बिल्कुल, और जानकारी हम देते रहते हैं समय समय पे अपने लिसनर्स को। फिलहाल अब हम आ पहुंचे हैं उस सेगमेंट पे जहां पर हम बात करेंगे उस तेजस्विनी की, उस बेटी की जिसने अभी 18 मई को ही भारतीय वायुसेना के इतिहास में अपना सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज कर दिया।
0: बात भारतीय वायुसेना की जाबाज स्क्वाडन लीडर ये जो हैं सान्या की हम करने जा रहे हैं। इन्होंने जो है प्रतिष्ठित कैट ए क्वालिफाइड जो है फ्लाइट जो फ्लाइंग स्क्वाड वाला एग्जाम होता है वो क्लियर किया और
1: बिल्कुल
0: उसके बाद
1: इन्होंने ना प्रतिष्ठित कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर यानी कि उड़ान प्रशिक्षिका योग्यता हासिल कर नया इतिहास रच दिया है। और इस मुकाम पर पहुंचने वाली ये पहली वायुसेना महिला सैन्य अधिकारी है।
0: और अब सान्या जो है मास्टर इंस्ट्रक्टर के रूप में देश के भावी और युवा सैन्य पायलटों को जो है आसपास उड़ान भरने की उन्नत ट्रेनिंग में भी लिप्त हैं, यानी कि उन्नत ट्रेनिंग दे रही हैं।
1: बिल्कुल, आसमान में उड़ान भरेंगे इनकी प्रशिक्षण के द्वारा। वैसे इन्हें ये उपलब्धि अचानक से नहीं मिली, पता है इन्हें इनके पीछे जो था ना वर्षों की इनकी कठिन ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और इनकी मेहनत छुपी थी। शुरुआत में ये एक सामान्य फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में भारतीय वायु सेना में शामिल हुई थी।
0: अच्छा, वैसे जो है सारिका, कैट ए क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊं, जो भारतीय वायुसेना में उड़ान प्रशिक्षकों की सबसे प्रतिष्ठित जो है कैटेगरीज में जो है गिनी जाती है ये, और इसे जो है हासिल करना आसान नहीं होता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है जो सान्या के पास थी।
1: बिल्कुल, यानी कि भारत की बेटी सान्या ने सिर्फ एयरक्राफ्ट उड़ान ही नहीं सीखा बल्कि खुद को इस काबिल बनाया कि आने वाले पायलट्स को भी कॉन्फिडेंटली प्रशिक्षित कर सके। और सान्या की ये सफलता हमें सिखाती है कि हर बड़ी उड़ान के पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और खुद पर विश्वास छिपा होता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सारिका, अब वक्त को देखते हुए हमें लगता है अब रेसिपी में क्या है आज खास।
2: बिल्कुल, और हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें भी होगा बहुत
1: इंतजारी
2: से इंतजार। तो शेयर कर देते हैं आज की रेसिपी, क्या बनाने वाली हैं?
1: आज हम बनाने वाले हैं स्प्राउट्स रोटी।
2: बिल्कुल, क्योंकि आप रोटी इसलिए बना रही हैं क्योंकि आज है 2 जून और 2 जून की रोटी तो मस्ट है,
1: सबको स्वादिष्ट भी लगनी चाहिए ना।
2: तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हैं 2 जून की रोटी के लिए वो शेयर कर देते हैं अपने लिसनर से। अंकुरित मूंग जो लेनी है वो 1 कप, गेहूं का आटा या चावल का आटा 1 कप, और प्याज 1 छोटा चम्मच बारीक चॉप किया हुआ, हरी मिर्च 2 बारीक चॉप की हुई, अदरक 1 छोटी महीन महीन घिसी हुई, धनिया पत्तियां जो लेनी है बारीक कटी हुई लेनी है, नमक और हींग ये लेना है आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग, तेल या घी सेकने के लिए जितनी आपको जरूरत हो उतना ही लेना है, कोशिश करिए कम से कम लें।
1: अच्छा, इसमें करना क्या है, जो प्रोटीन से भरपूर स्प्राउट्स होते हैं उन्हें अंकुरित कर लेना है रोटी बनाने के लिए। अब कैसे रोटी बनानी है, स्प्राउट्स को दरदरा पीस लें, इसमें बारीक प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती और थोड़ा सा चावल का आटा या गेहूं का आटा, आप दोनों में से जो भी चाहें वो मिला लें, हैं, और बिना पानी डाले इसे मुलायम आटा गूंथ लें, मतलब जितना आटा आपका इसमें जाए बस उतना ही आटा आपको लेके गूंथना है। छोटी छोटी लोइयां बनाएं, बेलें और तवे पर दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक ले और बस।
2: और इसके साथ में आप सुने 102.2 FM रेनबो कानपुर से बजने वाला गाना।
3: गोरे भैया तो बीमार तू, इसलिए तू इतना उदास, सुखे सुखे हो

0: इसी के साथ प्रोग्राम हम नवा से दीजिए इजाजत सारिका शुक्ला
1: और मालिनी को।
0: स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया है कि भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आऊ लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। विभिन्न कोर्ट में लंबित वादों के निस्तारण के मामले में जौनपुर जिला ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अबंस्ट ने बताया कि महिमा में शासन स्तर से रैंकिंग जारी की गई है। इसमें जौनपुर को प्रदेश में पहला स्थान मिला है, जबकि 5 कोर्ट में जिले की 3 कोर्ट को प्रदेश के शीर्ष 5 में स्थान मिला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। 2026 के एशियाई खेलों में से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि इन खिलाड़ियों को योजना में शामिल करने का उद्देश्य केवल पदक जीतने की संभावना नौ पर ध्यान केंद्रित करना नहीं, बल्कि विभिन्न नौका श्रेणियों में सक्षम समूह तैयार करना है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

जी 12:04 का वक्त और ये वक्त होता है आपके दिल को छू लेने वाले कार्यक्रम शतरूपा का, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त शिखा।

जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम खास कर है हमारी प्यारी प्यारी महिलाओं के लिए, जो उन्हें बनाता है हर क्षेत्र में सुपर एक्सपर्ट। तो आज दिन है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को हम क्या खास लाते हैं आपके लिए, तो आप थोड़ा गेस करिए और गेस करके हमें बताइए। और अगर नहीं गेस कर पाए तो भाई शिखा है ना यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि ट्यूसडे को बातें कौन सी होती हैं। तो बातें तो अभी ढेर सारी होंगी आपसे, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा ट्रैक मैंने लगा कर रखा है आप लोगों के लिए, तो सोच रही हूँ वो आप तक भेजूं, फिर उसके बाद बातें करते हैं ढेर सारी। तो चलिए एंजॉय करते हैं बेहतरीन सा गाना आपके रेडियो सेट्स पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: बारह बजकर 11 मिनट का वक्त और दोस्तों अभी प्यारा सा ट्रैक आपने सुना, लो चाय उल्फत हो गया। तो भाई ये प्यारा सा जो गीत आपने सुना है, इसके बाद एक बार फिर से स्वागत करती है आपकी अपनी दोस्त शिखा कार्यक्रम शत्रुपा में। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो सुन रहे हैं, अभी तक उन्होंने टॉपिक को गेस कर लिया होगा, क्योंकि इतने दिल से जो जुड़े होते हैं ना, हर दिन प्रोग्राम जो इतने प्यार से सुनते हैं, तो डेफिनेटली आज गेस करा होगा कि कौन सा प्रोग्राम और क्या बातें होने वाली हैं आज। और अगर नहीं गेस कर पाए तो भाई शिखा बताने वाली है कि आज हम बात करने वाले हैं फैशन की, जिसके लिए हम महिलाएं होते हैं बड़े ही क्रेजी। अच्छा दोस्तों, दादी का

चाहे वो या मम्मी का दौर, फैशन की एक खास बात रही है और शायद यही वजह है कि फैशन ट्रेंड्स समय के साथ बदलते जरूर हैं, लेकिन अक्सर वापस लौट आते हैं। आज के समय में नई पीढ़ी उस दौर के कपड़े और एक्सेसरीज को नया ट्विस्ट दे रही है, जिससे वे पुराने होते हुए भी ट्रेंडी लगते हैं। ऐसा ही एक फैशन ट्रेंड लौट कर आया है। जी हाँ, ऐसा ही एक फैशन ट्रेंड लौट कर आ चुका है, जिसे कहते हैं Y2K। क्या बोलते हैं? जी हाँ, उसको बोलते हैं Y2K। तो हम आज बात करने वाले हैं कि क्या होता है Y2K। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना लगाया है, वो भेज दूं आप तक। तो हमारे लिसनर्स कह रहे हैं जी हाँ भाई शिखा, गाना भेजिए, फिर हम बात करेंगे क्या होता है Y2K।

इस गर्मी का आकर्षक केंद्र बन गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इन समर्स ये जो Y2K का जो ट्रेंड है ना, वो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। नई पीढ़ी Y2K फैशन को मॉडर्न ट्रेंड्स और पर्सनल स्टाइल के साथ कॉपी कर रहे हैं। जो पुराने दौर को नए जमाने से जोड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर अभी तक आपने इस तरीके का फैशन ट्रेंड ट्राई नहीं किया है, तो अब ट्राई करने की है बारी। दोस्तों, इस तरीके का जो ट्रेंड होता है ना, आप पुराने चीजों को भूलते नहीं है, आप उनको बिल्कुल नए लुक में ले आते हैं और आप खुद भी इतने ज्यादा गॉर्जियस लगने लगते हैं कि लोग वाह वाही करते करते थकेंगे नहीं आपकी। तो जरा आप देखिए कि आपके वार्डरोब में ऐसी कौन सी पुरानी ड्रेस है जिसको आप एक नया लुक दे सकते हैं Y2K फैशन ट्रेंड के साथ। तो आप दीजिए अपने आप को एक नया लुक और एक प्यारा सा गाना, हम भेजते हैं आप तक। तो चलिए एंजॉय करते हैं हम और आप दोनों ये प्यारा सा ट्रैक। और साथ में भाई आपको ये भी देखना है कि कौन सा फैशन ट्रेंड आपको Y2K साथ मैच करना है अपनी पुरानी ड्रेसेस और नए ड्रेसेस के मेल के साथ। तो चलिए, गाना आ रहा है, उसको एंजॉय करिए और थोड़ा दिमाग लगाइए।

जी, दोबारह 12:22 का वक्त और प्रोग्राम शत्रुपा में आज हम बातें करने जा रहे हैं फैशन ट्रेंड Y2K के। जी हाँ, शत्रुपा में आज हम बात करने जा रहे हैं फैशन Y2K के बारे में। क्या होता है Y2K? तो आपको बता दूं, Y2K यानी ईयर 2000 का फैशन ट्रेंड उस दशक की शुरुआत का ग्लैमरस और बोल्ड स्टाइल था। पॉप कल्चर से प्रेरित यह ट्रेंड फैशन में नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादों को जोड़ते हुए आपको नए अंदाज से जीने का मौका देता है।

जी हाँ, 12:30 का वक्त, और कहते हैं हर गम फिसल जाए। जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगी, अपने को बिल्कुल बेहतर से बेहतरीन बनाने लगेंगी, और वो भी नए नए टिप्स को अप्लाई करके, तो भाई क्या लगने वाली हैं आप, लगने वाली हैं स्टनिंग। वो स्टनिंग कैसे लगना है हम आपको बताते हैं। जी हाँ, हर ट्यूसडे इस फैशन सेगमेंट में, तो आज हम बात कर रहे हैं Y2K। तो जब हम बात करते हैं फैशन की, तो सिल्वर और गोल्ड शेड्स जैसे ग्लासी लुक देने वाले मटेरियल्स Y2K फैशन की पहचान है। आपको पता है ये जो शेड्स होते हैं ना, ये पार्टी वेयर, बैग, फुटवेयर और मेकअप में खूब देखे जाते हैं। उनका चमकदार फ्यूचरिस्टिक लुक उस दौर की टेक्नोलॉजी और पॉप कल्चर से प्रेरित था। उस समय जो म्यूजिक जो फेमस थी, जो कल्चर था, जो टेक्नोलॉजी थी, उस टाइम का जो था 2000 का, वो उससे बहुत ही ज्यादा प्रेरित था। और ऐसे में अगर आज आप Y2K ट्रेंड को अपनाते हैं, तो उसमें ही मेटेलिक जो जैकेट्स हैं, शाइनी एक्सेसरीज हैं, फिर से हम महिलाओं को आकर्षित करते हैं और एक दिखाते हैं हमको एलिगेंट। तो भाई अब एलिगेंट लगना है तो ये, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और चीजों को और अच्छे से करना होगा, और भाई Y2K जो ये ट्रेंड है उसको जरूर से अपनाना होगा।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर

0: करीब से लेकर 76 भरोसे का सिर्फ एक ही नाम RHL गोल्ड टीम की सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी देश के विकास में सहभागी बने

दोस्तों 12:38 का वक्त और आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ कार्यक्रम शत्रुपा में, जिसमें आज हम बातें कर रहे हैं 2000 के फैशन की। जी हाँ, जो उस समय का दौर था, उस समय हम कौन सा फैशन अपनाते थे और आज उसको ट्रेंडी वे में साथ में यूज करके कैसे हमें देखना है एलिगेंट। तो आपको बता दूं कि Y2K फैशन में ना प्लेटेड मिनी स्कर्ट्स का खास ट्रेंड था, तो आप मिनी जो स्कर्ट्स थी वो तो ट्राई कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में उसके साथ आप लॉन्ग जो टी शर्ट हैं, जो लॉन्ग स्कर्ट्स हैं, उसको भी आप उसके ऊपर भी आप Y2K जो ये फैशन है उसको ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये हर तरीके की स्कर्ट्स के ऊपर ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो स्कर्ट के साथ आप ये टॉप पहनते हैं, आप Y2K के फैशन को साथ में जब मिक्स करके पहनते हैं ना, तो एक बोल्ड और परफेक्ट लुक देता है आपको। आज जेन जी और मिलेनियल्स ने इन्हें फिर से ट्रेंड में लाकर एक नया ट्विस्ट दिखाया है। वे इन्हें ट्रैक टॉप, ट्यूब टॉप और ओवरसाइज जैकेट के साथ मैच कर स्टाइलिश और मॉडर्न लुक क्रिएट कर रहे हैं। और भाई, अगर आपने स्नीकर्स, बूट्स और मिनी बैग्स साथ में अप्लाई कर लिए, साथ में ले लिया, तो भाई क्या कहने वाले हैं लोग, कहने वाले हैं क्या लग रही हो। तो इस तरीके का जो ट्रेंड है ना, बहुत ही अमेजिंग है और हमें लगता है कि जितने भी लोग हैं एक बार इसको ट्राई जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, एक चीज और बहुत जरूरी है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी ड्रेस पहने वो ड्रेस हमारे अकॉर्डिंग हो, ठीक है, हम हमारी एज के अकॉर्डिंग हो, हमारा जो फिजिक है उसके अकॉर्डिंग हो। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको वो कंफर्ट देनी चाहिए। फैशन को अपनाइए, लेकिन फैशन के साथ आप कंफर्ट को मत भूलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो हम टाइट कपड़े पहनते हैं, टाइट भी बहुत एक ट्रेंड चलता है कि ट्रेंड टाइट कपड़े में बहुत अच्छा लुक देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइट कपड़े आप अपने अकॉर्डिंग पहनिए कि आपको वो बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में रखे और जब आप उसको पहने तो आपको कहीं से हार्म ना हो और साथ ही साथ आप दिखें स्टनिंग। तो जब आप इस तरीके का ट्रेंड अपनाएंगे और अपना रही हैं अगर, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने अभी तक इस ट्रेंड को नहीं अपनाया तो अब अपनाने की बारी है। और साथ में आप देखिएगा कि कितना ग्लैमरस लुक आपका लगेगा और हर जगह आपको खास दिखाएगा। तो चलिए, एक प्यारा सा गाना लगा के रखा है, वो एंजॉय करते हैं, फिर आते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं अभी आपसे। स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

दोस्तों 12:47 का वक्त और हम बात कर रहे हैं Y2K के फैशन ट्रेंड की। तो आपको बता दें कि जो Y2K का ये जो फैशन है उसमें क्रॉप टॉप को भूल नहीं सकते हैं हम लोग। जी हाँ, क्रॉप टॉप अपनी जगह वैसे ही बनाए हुए है। यह स्टाइल पहले भी ग्लैमर का प्रतीक था और आज की नई पीढ़ी इसे और भी बोल्ड अंदाज में अपना रही है। लो राइज जीन्स के साथ इन टॉप्स को पेयर कर आप पा सकती हैं ग्लैमरस लुक। वाई टू की ये जो फ्यूजन है ना, ये पुराने दौर की झलक के साथ साथ आज की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना उसको भी बढ़ा रहा है, उसकी फैशन को बढ़ा रहा है।

तो इस फैशन सेंस को आप जरूर से ट्राई करें और देखिएगा कि क्या भाई लगने वाली हैं आप इनको. हम कहते ना कभी कभी कहते हैं कि भाई तुम इतने प्यारे लग रहे हो कि उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वर्ड्स नहीं है हमारे पास. तो कुछ आप भी ऐसे ही लगने वाली हैं जब आप ये Y2K फैशन ट्रेंड को अपनाएंगी. और साथ ही आपको एक जरूरी जो सूचना है वो भी दे दें. प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि जो 31 मई 2026 थी उसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक कर दिया गया है. अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं https://prasarbharati.gov.in/NIPP और https://akashwani.gov.in/files/NIPP.pdf. तो अब इतनी ढेर सारी बातें करने के बाद हमारे जो लिसनर्स हैं उनकी जो डिमांड है वो हम भैया बिना कहे ही सुन लेते हैं. और वो डिमांड है कि एक प्यारा सा ट्रैक भेज दें हम तक. और बातें तो शिखा करती हैं, बहुत ढेर सारी करती हैं, तो बातों के बीच में एक गाना होना चाहिए. तो चलिए गाना आ रहा है आप तक.

0: जी 12:54 का वक्त और कितना सही गाना प्ले हो रहा था कि कितना रिश्ता छोड़ू ना। जब आप इतने प्यारे लगेंगे ना तो आपको देखकर जाने का किसी का हटने का मन करेगा क्या? और हर इंसान आपसे कहेगा तेरा रास्ता छोड़ू ना, तेरा रास्ता छोड़ू ना। तो कितनी अच्छी बात इस गाने ने कह दी। और आज हम लोग बात भी तो ऐसे ही कर रहे हैं कि फैशन हो, फैशन और वो फैशन जो हम लोगों को क्रेजी बना देता है और उसके लिए हम रहते हैं कि आज ऐसे हेयर स्टाइल करने, आज ऐसे कपड़े पहने, आज ये बैग अपनाना है और आज ऐसे हमें फुटवेयर पहनने हैं, तो हम कितना ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो आज हम लोगों ने जो बात करी, आपको एक की पॉइंट बता दूं कि जो आज हम लोगों ने फैशन Y2K के बारे में जो बात करी है ना, तो वो बिल्कुल सही है। इस समय का जो सीजन है, गर्मी का जो सीजन है ना, Y2 के फैशन ट्रेंड को अपनाने का बिल्कुल सही समय है।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिया। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को मुख्यमंत्री ने खूब दुलार और आशीर्वाद दिया, साथ ही उन्हें खूब पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए चॉकलेट दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंदिर की गौशाला में जाकर गौ सेवा भी की थी। लखनऊ मेट्रो भी अब वन नेशन वन कार्ड ला रहा है। इस कार्ड के धारक देश के किसी भी शहर में चल रहे मेट्रो में सफर कर सकेंगे। बस इसके लिए उन्हें अपने कार्ड में पर्याप्त बैलेंस रखना होगा। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसी पखवाड़े में नया कार्ड लॉन्च करेगा। मौजूदा समय में लखनऊ मेट्रो में रोजाना सफर करने वालों के लिए मेट्रो रेलवे स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसे एक माह से लेकर साल भर के लिए रिचार्ज कराया जा सकता है। मेट्रो प्रवक्ता ने बताया कि एनसीएमएससी कार्ड लॉन्च करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी पखवाड़े में इसे लॉन्च किया जाएगा। वन नेशन वन कार्ड को स्मार्ट कार्ड की जगह लाया जा रहा है। लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की सुविधा को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 11 जून कर दिया है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सुधार की सुविधा भी अब 10 जून तक उपलब्ध रहेगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार जिन पाठ्यक्रमों में लिखित परीक्षा आवश्यक नहीं है उनकी मेरिट सूची 13 जून को जारी होगी। वहीं बीबीए, बीसीए, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बी फार्मा और डी फार्मा पाठ्यक्रमों के लिए लिखित परीक्षा 14 जून 2026 को होगी। इनकी मेरिट सूची 15 जून को घोषित की जाएगी। चंदौली के धानापुर विकासखंड के गुरेहू गांव में कल यूपी एग्रीज परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वाराणसी के वैज्ञानिकों ने किसानों के बीच धान की सीधी बुआई का लाइव प्रसारण दिखाया। वैज्ञानिकों ने उपस्थित किसानों को धान की सीधी बुआई के बारे में मूलभूत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि इस विधि से किसानों के श्रम, समय और पानी सभी की बचत होगी। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
6: ओम नमः शिवाय।
5: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
7: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ।
5: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

जी 1:05 का वक्त और ढेर सारी बातें करने हाजिर हो गई है आपकी अपनी दोस्त शिखा, कार्यक्रम होठों पे तेरी बात में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी एक बेहतरीन विषय पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आप क्या सोचते हैं उस विषय पर। तो वो टॉपिक अभी मैं बताऊंगी आपको कि कौन सा वो टॉपिक है जिस पर आपको अपनी राय भेजनी है। और राय भेजनी तो है, और भेजनी कहाँ है आपको राय, वो भेजनी है अपनी हमारी ईमेल आईडी पर। और हमारी ईमेल आईडी fmakashwani@gmail.com। और दोस्तों, आपको वो हम विषय बताएं उससे पहले एक प्यारा सा गाना हम आप तक भेजते हैं। तो चलिए, आप और हम दोनों ये प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करते हैं।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला कुशीनगर की तरक्की को नई रफ्तार देने के लिए आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की लागत वाले 278 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान वजीर आला ने तमकोही राज में मुख्तलिफ महकमों की नुमाइश का मुआयना और स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट तकसीम किए। वजीर आला ने आज इस मौके पर वहां मौजूद अवाम को खिताब भी किया। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि आज कुशीनगर के पास अपना मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के भी हक में काम कर रहे हैं।
1: कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सेलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं।
0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अफसरान को अहकाम देते हुए कहा कि हुकूमत की बहबूदी स्कीमों का फायदा हर अहल अफराद तक पहुंचना यकीनी किया जाए। कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक्किद जनता दर्शन में तकरीबन 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतें सुनी। दिक्कतें सुनने के बाद वजीर आला ने दरख्वास्तों के तस्वीर के लिए मुतल्लिका अफसर और पुलिस अफसरान को अहकाम दिया कि सभी दिक्कतों का तस्वीर मुकर्रर वक्त में मुनसिफाना और पुर इत्मीनान होना चाहिए। मुल्क में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास प्रिंसिपल के तहत गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल जिक्र तब्दीली हुई है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की बहबूद और बाइख्तियार बनाने के लिए कई जरूरी पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार गुज़िश्ता 12 सालों में खसूसी शोबे में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। आज खवातीन बाइख्तियारी की सिमत में हुई कोशिशों पर एक खसूसी रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है जिसका उद्देश्य

0: उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को मौजूदा पेन और पेपर की जगह कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान मुनक्किद करने का मतालबे वाली अर्जी खारिज कर दी है। अदलिया ने कहा है कि कंप्यूटर मबनी री एग्जाम मुनक्किद करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इम्तिहान रद्द होने के बाद से कौमी एग्जाम एजेंसी पहले से ही चैलेंजेस का सामना कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल सिविल पुलिस और उसके मसावी ओहदों के लिए तहरीरी इम्तिहान 8, 9 और 10 जून को मुख्तलिफ अजला में मुतय्यन मराकज पर मुनक्किद होंगे। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज एडिशनल सेक्रेटरी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने बताया कि ये इम्तिहान 2 शिफ्टों में मुनक्किद होंगे। 32,000 से ज्यादा ओहदों के लिए इस भर्ती से मुतालिक तफसीली मालूमात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब कर दी गई है। लखनऊ मेट्रो भी अब वन नेशन वन कार्ड ला रहा है। इस कार्ड के होल्डर मुल्क के किसी भी शहर में चल रहे मेट्रो में सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने कार्ड में बैलेंस रखना होगा। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसी पखवाड़े में नया कार्ड लॉन्च करेगा। आज ज्येष्ठ महीने का 5वां बड़ा मंगल है। लखनऊ के अलीगंज वाके पुराना हनुमान मंदिर, नया मंदिर हनुमान सेतु, हनुमंत धाम, हजरतगंज वाके दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर समेत मुख्तलिफ मंदिरों में सुबह से अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के इल्जाम में आजमगढ़ से एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ दहशतगर्दाना तंजीम हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। और महकमे मौसमियात ने रियासत के मगरबी अजला में 4 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक इस दौरान रियासत के मशरकी अजला में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे ने आने वाले दिनों में रियासत में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफे की भी पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

आजकल 16 मिनट हो गए हैं और आज होठों पे तेरी बात पे हम बताने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक हम आपको देने वाले हैं। तो आपको बता दें कि दोस्तों, जब बचपन की बात अगर हम करें तो मन में कितनी मतलब खुशी सी दौड़ उठती है। तो कहते हैं ना, बचपन कितना प्यारा होता है, कितना मासूम होता है। और अक्सर जब खुद को जिम्मेदारियों से घिरा देखो तो लगता है काश वो बचपन ना फिर से वापस आ जाए। लेकिन हम सब ने बचपन जिया तो है ही और खूब शरारतें भी की हैं। और भाई कई बहाने बनाए हैं, कई झूठ, कई तरीके के खेल, दूसरे को गलत ठहरा कर खुद को सही साबित करना। और देखिए ना, आज भी हम जब देखते हैं, अगर पलट के अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को देखते हैं, तो उन चीजों को हमारे बच्चे भी अक्सर रिपीट करते हैं। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? इतनी बातें हमने करी आपसे, इतनी बातें बताई कि बचपन बचपन बचपन, तो आज क्या हम बात करने वाले हैं? एनी गेस? मुझे लग रहा है हाँ, ये टिक टिक टिक टिक टिक टिक एक माइंड में जो है ना वो चल रहा है कि कुछ तो ऐसा ही रिलेटेड बचपन से होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और तो और आपको बता दें कि आज का जो टॉपिक है वो हमने सच में बचपन से ही जोड़ा है। तो आपको बता दें कि जब हम स्कूल जाते थे और कभी कभी जब मन नहीं होता था और मम्मी पापा बहुत इंसिस्ट करते थे कि नहीं स्कूल जाना ही है, तो हम क्या करते थे?

हमें जब बहुत ज्यादा कोई इंसिस्ट करता था तो हम करते थे बहाने, जी हाँ कोई ना कोई बहाना, आज बहुत सर में दर्द हो रहा है, मम्मा आज पेट में दर्द होने लगा, तो एक नया कोई एक्सक्यूज होता था, आज तो मैम ही नहीं आएंगी, आज तो ऐसा है, आज वो है, तो आज तो पढ़ाई नहीं होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो बहाने थे वो हम अप्लाई करते थे अपने स्कूलिंग पे। और आज भी जब देखे ना तो हमारे नन्हे मुन्ने वही छोटे छोटे बहाने, कभी ना मम्मा सर बहुत दर्द हो रहा है, तो इस तरीके के जो बहाने थे ना कितने क्यूट, जब आप उनको सोचिए तो कितनी हंसी आती है ना कि क्या हम बचपन में करते थे। तो आज आपको बताना है हमें ये कि कौन सा बहाना आप बनाते थे कि जब आपका स्कूल जाने का मन नहीं था, क्योंकि ये जो जाने वाला स्कूल ना जाने का मन है ना, ये सबके साथ होता है कि भाई आज भी हम देखते हैं तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है कि हमारे बच्चे भी, तो हम भी तो ऐसे ही करते थे। तो आपने कौन से बहाने बनाए अपनी मम्मा पापा को, मम्मी पापा की डांट से बचने के लिए,

के साथ होता है कि भाई आज भी हम देखते हैं तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है कि हमारे बच्चे भी तो हम भी तो ऐसे ही करते थे। तो आपने कौन से बहाने बनाए अपनी मम्मा पापा को मम्मी पापा की डांट से बचने के लिए, तो वो बहाने आज आपको बताने हैं हमें कि आपने अपने बचपन में अपने चाइल्डहुड में वो कौन से बहाने बनाए कि आपको स्कूल ना जाना पड़े। तो बस इस टॉपिक पर अपने मेल्स और व्यूज हमें भेजिए हमारी मेल आईडी पर, और हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। तो आप भाई भेजिए हमें बहाने और हम आप तक भेजते हैं प्यारा सा गीत जो हमने लगा के रखा है आपके लिए। तो चलिए प्यारा सा ट्रैक आ रहा है, एंजॉय करते हैं।

24 मिनट का वक्त और हमारे पास जो मेल आ गए हैं, अब मेरा मन है कि जल्दी जल्दी उनको पढ़ लेते हैं। सुधाकर जाधव जी ने हमें मेल कर दिया है और लिखा है, होटो पे तेरी बात, इस प्रोग्राम में स्कूल में ना जाने के कौन से बहाने बनाने थे। हम तो स्कूल में ना जाने के वास्ते माँ बाप को ऐसा जोरदार बहाने बनाते थे कि स्कूल में ना जाने के वास्ते हमारे गाँव के नजदीक एक किलोमीटर में नदी पड़ती है और नदी में हमको टाइगर दिखा था तो हम कल से स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसा बहाना बनाते थे। तो देखिए ना कितने, मतलब कहते ना बचपन की एक चुलबुली सी याद आपको हमने याद दिला दी कि आपने कितनी अच्छी बात बताई कि नदी देखते थे, उसमें लगता था टाइगर दिख रहा है, तो इस तरीके का बहाना। तो चलिए थैंक यू सुधाकर जाधव जी, आपने अपनी जो बचपन में इस तरीके का बहाना बनाया और हमसे शेयर करा। और हमारे पास रामराज जी ने मेल किया है, श्री गणेशाय नमो, होटो पर तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। रामराज जी आपको भी नमस्कार, लेकिन आज का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड आपने नहीं लिखा है। तो टॉपिक मैंने आपको बताया था, टॉपिक से रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ लिखिए और आप भी हंसते हैं और जितने हमारे लिसनर्स सुनते हैं वो भी हंसते हैं और हमारे भी चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। और कार्तिक अवस्थी जी ने हमें मेल किया है, सर हम लोगों को गर्मी के मौसम में अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जिससे ग्राम व पोस्ट इटावा जिला सीतापुर, तो इन्होंने एक हमें संदेश लिखकर भेज दिया है कि हमें गर्मी के मौसम में खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस पर मैं भी कह दे रही हूँ भाई, आप गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और इस सीजन में आपको जो बाहर का है, बाहर का खाना पीना है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और घर का ही अच्छा बना हुआ ताजा खाना खाना चाहिए। और बाबू अंसारी जी ने भी हमें मेल कर दिया है, अच्छा इन्होंने, मुझे लग रहा है पहले वाला मेल है इन्होंने टाइम, हाँ ठीक है। तो हमारे पास जया जी ने मेल कर दिया है, जया जी ने लिखा है कि मुझे अपने स्कूल ना जाना पड़े तो मैं कहती थी मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है और अगर आज मैं चली गई ना तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, तो इस तरीके का ये बहाना बनाती थी और आज भी देखती है। इन्होंने लिखा है कि मैं जब देखती हूँ कभी कभी मेरे बच्चे भी मुझसे यही सेम चीज कहते हैं, तो जब वो कहते हैं ना तो मुझे गुस्सा तो आती है लेकिन थोड़ा सा मैं अंदर जब किचन में जाती हूँ तो हंसते हुए अंदर जाती हूँ कि अरे ये तो सेम वही बहाना है। तो हर बचपन इतना खूबसूरत होता है और जो बचपना होता है ना उसको खूब अच्छे से जीना भी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात आपने लिखी और इन्होंने हमें हरदोई से मेल लिखा है। और रामेश्वर जी का भी मेल आ चुका है हमारे पास, तो चलिए पढ़ते हैं। होटो पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहनशिखा जी को प्यार भरा नमस्कार, हम आपका प्रोग्राम बराबर सुनते हैं, हमें आपका होटो पे तेरी बात कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी प्रस्तुति कर रही है बहनशिखा जी, आपकी जितनी भी तारीफ करें कम है। तो थैंक यू सो मच, तारीफ तो आपकी करनी चाहिए कि आप इतने प्यार और इतने एहसास से हमसे जुड़ते हैं। जब बहन शिखा जी कार्यक्रम में आती हैं तो चार चांद लग जाते हैं, बचपन स्कूल ना जाना बहाना आज हमारे सिर दर्द हो रहा है। अच्छा इनका ये जो बहाना था आज सिर दर्द हो रहा है ये भी बहुत फेमस बहाना था। और लिखा है ग्राम व पोस्ट मुगिसापुर कानपुर देहान से इन्होंने हमें मेल किया है, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी को। तो आपको भी धन्यवाद कि आपने इतने प्यार से इतना प्यार भरा मेल हमें लिखा। और हमारे पास जितेंद्र जी ने भी मेल किया, इन्होंने हमें बाराबंकी से मेल लिखा है और लिखा है कि जब मुझे स्कूल जाना था नहीं मन करता था, वैसे तो मैं स्कूल रोज ही जाता था लेकिन जब मेरा मन नहीं होता था तो मैं मम्मा से कहता था कि मम्मा मेरे जो है सर में बहुत दर्द हो रही है और मुझे बुखार चढ़ रहा है, हालांकि उस समय बुखार नहीं होता था लेकिन इनका ये जो बहाना था ये कहते थे कि मम्मा मेरे बुखार जो है चढ़ रहा है। तो बहुत अच्छी चीजें हैं ये सब चीजें, मतलब याद करिए ना तो कितनी अच्छी लगती है कि क्या हम करते थे, बचपन कितना प्यारा था और सब उस बात को कभी ना कभी मतलब यकीन भी करते थे कि हाँ हो सकता हो सच में दिक्कत हो रही हो। तो चलिए भाई अब इतनी बातें तो हो गई और एक प्यारा सा गाना भी हमने लगा के रखा है तो वो आप तक आ रहा है, तो चलिए एंजॉय करते हैं प्यारा सा ट्रैक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: बजकर 34 मिनट का वक्त और अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गाना सुना, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। जी हाँ, और हमारे बचपन में हम क्या कहते थे, हमको तो छुट्टी से प्यार है। जी हाँ, छुट्टी से तो प्यार है, और लगता था कब छुट्टी होगी। एवरी डे हम वेट करते थे, अच्छा कब फेस्टिवल है। घर में भी पूछते थे, और घर में पूछते ये थे कि मम्मी अच्छा अभी जो है इस महीने में कितनी छुट्टी पड़ने वाली है, कौन सा फेस्टिवल आना, ये क्वेरी हम लोगों की ना चलती ही रहती थी। और सबसे अच्छा जो छुट्टी लेने का तरीका था वो था बहाने बनाना। और जो बहाने आप लोग बना रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ इतना अच्छा लग रहा है, और मुझे तो जितने भी, मैं तो हंस रही हूँ साथ में, मेरी जो जितने भी लिसनर्स हैं वो भी सुन के बहुत खुश हो रहे होंगे कि कितने अच्छे अच्छे बहाने बना देते। और जो बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो भाई उनको नए नए बहाने मिल जाएंगे स्कूल ना जाने के लिए, बहाना बनाने के। तो इन्होंने, चलिए हम मेल पढ़ लेते हैं। हमारे पास मेल आ चुका है गणेश दत्त जी का। मेरी बेटी 13 जुलाई को 2 साल की हो जाएगी। एक बार बेटी से पप्पू मांगा और दे नहीं रही थी, पप्पी मांगा तो दे नहीं रही थी। हमने बोला बेटा दे दो फ्रूटी देंगे, उसने बोला फ्रूटी नुकसान करेगी, बहाना कर गई पप्पी ना देने का, ना देना पड़े। अच्छा, बच्चों से कहते हैं ना प्यार चाहिए होता है, तो भाई बच्चे कभी अपनी मन मर्जी के होते हैं, अपनी मन मर्जी चलाते हैं, जब मन होगा तभी पास में आएंगे, अदरवाइज वो पास नहीं आएंगे। और गणेश जी, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये बहाना बनाना तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन हमने पूछा था कि आप कौन सा बहाना बनाते थे जब आप स्कूल नहीं जाना चाहते थे। तो हमारे पास मेल आया है, महेंद्र दीपन जी ने हमें मेल किया है। अरे वाह, बहुत बड़ा सा मेल, प्यारा सा मेल है। आदरणीय आर्जे शिखा मैम जी, सादर नमस्ते। मैं महेंद्र दीपन राजस्थान के नौगौर जिले के रूण गांव से आपका बेहद प्रिय कार्यक्रम होटो पर तेरी बात सुन रहा हूँ। आपका अंदाज और आज का विषय दोनों ही दिलचस्प है। बचपन में स्कूल ना जाने के बहाने वाली बात छिड़ी तो मुझे अपनी वह मासूम शरारत याद आ गई। सच कहूं तो मैंने कभी घर पर बहाना नहीं बनाया, क्योंकि हमारा घर गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर खेतों में स्थित था। मेरी अपनी एक अलग ही स्ट्रेटजीज थी। मैं घर से तो स्कूल के लिए समय पर निकलता था, लेकिन स्कूल के गेट तक ना जाकर रास्ते में ही अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट के मैदान पर उतर जाता था। पूरा दिन दोस्तों के साथ क्रिकेट का आनंद लेने के बाद जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी मैं वापस घर की ओर चल देता था। ये सिलसिला मैं रोज तो नहीं लेकिन महीने में एक बार जरूर दोहराता था, वह भी सिर्फ क्रिकेट के जुनून के कारण। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो वह दिन बहुत याद आते हैं। आपके इस प्रोग्राम ने आज फिर से मुझे उन सुनहरी यादों में खोने का मौका दे दिया। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका श्रोता महेंद्र दीपन। तो बहुत अच्छी बात, देखिए मैंने कहा ना कि हम लोगों ने जब बात करी बचपन की तो कितनी याद हमारे सामने, आंखों के सामने आ रही हैं। कहते ना, इन छोटी छोटी शरारतों में ही बचपन है वो जिंदा रहता है। और अगर ये ना हो ना तो जब हम तो फिर अगर हम ये चीजें ही ना हो तो हम क्या याद करेंगे। तो चलिए, जावेद अख्तर जी ने हमें मेल कर दिया है और लिखा है, इन्होंने अभी पढ़ते हैं हम जल्दी से, इन्होंने लिखा है, इन्होंने आज की टॉपिक पे नहीं लिखा है आई थिंक। तो जावेद अख्तर जी ने हमें मेल किया है और सुधाकर जाधव जी ने फिर से मेल कर दिया है। हमारा स्कूल ना जाने का बहाना झूठा निकला तो इतनी मार पड़ती थी, पिताजी की मार अभी तक हमारे जहन में है। अभी फिलहाल मेरी उम्र 62 साल की है। तो ये तो बात है, मतलब जब डांट तो पड़ती थी कि भाई आपने बहाना बनाया, लेकिन ठीक है चलता है। मास्टर राधे श्याम शाक्या कासगंज से गुड आफ्टरनून शिखा जी, और इन्होंने हमें मेल लिखा है। इन्होंने लिखा, आप कैसी हो, बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता था तो, इन्होंने लिखा है, नहीं होता था तो मैं खुरपी और बोरी लेकर घास छीलने निकल जाते थे। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक्स। अच्छा, मतलब ये अपने खेत में चले जाते थे खुरपी और वो क्या छीलने के लिए, घास मतलब निकालने के लिए निकल जाते थे। तो कितने नाइस बहाने हैं ना, मतलब हम लोग तो सोच रहे थे कि जो छोटे मोटे बहाने वो पेट दर्द होना, सर में दर्द होना, लेकिन यहाँ तो आप देखिए ना, एक से एक चीजें निकल के आ रही है कि भाई क्या करते थे हमारे लिसनर्स।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

तो चलिए अब मेल जो है ना, बाकी के बहुत ढेर सारे हमारे पास मेल आ गए, और ये जो मेल आए हैं वो आपका प्यार है, वो हम धीरे धीरे अभी आपके मेल्स पढ़ेंगे, लेकिन एक प्यारा सा गाना क्यों किया है आपके लिए, तो चलिए सुनते हैं।

1:44 का वक्त और आज हम सुन रहे हैं नए नए बहाने, जी हाँ, स्कूल ना जाने के। और प्रोग्राम है हो जो पे तेरी बात, और इतना इंटरेस्टिंग और इतना दिलचस्प टॉपिक है, और नए नए बहाने हमको मिल रहे हैं कि कौन कौन से बहाने हमारे लिसनर्स अपनाते थे। तो प्रवीण जी ने हमें मेल कर दिया है और मेल में लिखा है कि 10वीं तक कोई बहाना नहीं बनाया, एक दिन भी नहीं जाओ तो पापा बहुत गुस्सा होते थे। 5वीं में मेरी 100% उपस्थिति थी। जब 11वीं में गया तब कभी कभी मैं स्कूल के लिए निकलता था तो स्कूल ना जाकर दोस्त के घर घूमकर वापस घर आ जाता था, तब तक पापा भी ऑफिस चले जाते थे। 12वीं कक्षा में तो लंच के बाद ही स्कूल से बंक मार कर घर आ जाते थे और कंप्यूटर गेम खेलते थे। बहाना तो नहीं बनाया लेकिन ऐसा करने से रिजल्ट जरूर बिगड़ा। तो हाँ दोस्तों, ये बात बहुत जरूरी है कि बच्चों का बहाना तो ठीक है और हम सबका बहाना ठीक है, कभी कभी चीजों को नहीं करने का मन करता, कभी कभी हम अक्सर किसी भी चीज में बहाने बना लेते हैं, लेकिन उन बहानों से नुकसान ना हो इस चीज का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। कमल शर्मा जी ने हमें मेल कर दिया है। कमल शर्मा, गणेश दत्त की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। सत्रिक रोड चिन्हट से इन्होंने हमें मेल किया है। स्कूल ना जाना पड़े इसलिए बहाने हमने भी खूब बनाए हैं। पेट दर्द का बहाना बनाया था, तो ये तो बिल्कुल एक कहते ना बहुत फेमस बहाना है। हर इंसान मतलब पेट दर्द जो है होता है ना, तो ये बिल्कुल अच्छी सी बात है कि ये पेट दर्द बीच में आ जाता है और स्कूल ना जाना पड़े या कोई बहाना अगर मन, और हम बड़े भी तो अक्सर कभी कभी बहाने बनाते हैं। तो राजेश कुमार जी ने हमें मेल करा है लेकिन गुड आफ्टरनून लिखा है और कुछ लिखा नहीं है। और जावेद अख्तर जी ने हमें फिर से मेल कर दिया है और लिखा है, तो इनका मेल मुझे लग रहा है 2-3 मेल इन्होंने किए थे, थोड़ा सा मिस नहीं। अस्सलाम वालेकुम, और क्या लिखा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है गुड आफ्टरनून, बस अच्छा हॉटमेल में मुझे लग रहा है इन्होंने मेल कर दिया है। और हमारे पास मेल आ चुका है रोशनी रावत जी का। रोशनी रावत ने लिखा है, नमस्ते शिखा मैम जी, आप कैसी हैं, 12 बजे से जुड़े हुए हैं, आपके साथ प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम व पोस्ट बम्हना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। टॉपिक मैंने ज्यादा बहाने नहीं बनाए लेकिन इन्होंने क्या बहाना बनाया वो भी हम लोग सुनते हैं। अभी इन्होंने बनाया है, मैंने ज्यादा बहाने नहीं बनाए लेकिन एक बार की बात है, मैं और मेरी कजिन स्कूल से पेट दर्द हो रहा था, छुट्टी लेकर घर आए थे, बाद में बहुत हंसे याद करके। हाँ तो कभी कभी दोस्तों ये भी होता था कि हम बीच में ही स्कूल तो चले गए कैसे करके, लेकिन जो हम लोग स्कूल में भी जाके कभी कभी हम लोग का जो बहाना था वो भी बहुत ज्यादा होता था कि भाई स्कूल में अब मन नहीं लग रहा है तो स्कूल घर जाना है, तो क्या बहाना बनाए, तो पेट दर्द का जो बहाना था वो एवरग्रीन बहाना है, तो सभी ने अपनाया है। और हमारे पास मेल आया है, सुधांशु एस जी ने हमें मेल किया है। राधे राधे, सुधांशु ग्राम भगवती पोस्ट महोना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं अपनी बात करूं तो मैं बहाने कुछ इस तरह से बनाता था, मैं कहता था मम्मी आज मेरा काम पड़ा नहीं है और आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा, काम पूरा नहीं है, इट मींस कि काम पूरा नहीं है, कुछ शब्द थोड़ा मतलब आगे पीछे हो गए थे इनके, और आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा काम नहीं पूरा होने की वजह से, या भी एक लो विजन दृष्टि बाधित, मुझे वहां पर जो काम दिया जाता था ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे सर लोग और मैं देख नहीं पाता था, इसलिए कि मेरा काम नहीं हो पाता था। हमारे घर में किसी को पता ही नहीं था कि दिव्यांग कॉलेज चल रहे हैं, तब किसी ने घर में बताया, तब से अब तक मैं पढ़ाई करता आ रहा हूं और मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्विश्वास विद्यालय में ग्रेजुएशन में तृतीय वर्ष में हूं। तो बहुत अच्छी बात है, तो ये बहाने प्यारे प्यारे से बहाने हैं जो हम सबको गुदगुदा देते हैं, हमें हंसा देते हैं। और हमारे पास सुनील सूर्या जी ने मेल किया है। सुनील सूर्या आलमबाग लखनऊ से इन्होंने मेल किया है। मैम हमने स्कूल जाने में तो कोई बहाना नहीं बनाया है, एक से एक खतरनाक टीचर होते थे स्कूल में, लेकिन हमने बहाना नहीं बनाया। जब उनका घंटे का टाइम आता था तो हम दोस्तों से कह देते थे कि बस्ता लेकर जाना और हम
इमली खाने चले जाते थे। अच्छा बस ये अपने फ्रेंड से कहते थे कि मेरा बैग लेके चले जाना, और हम इमली खाने चले जाते थे। जब छुट्टी होती थी तब बैग ले लेकर फिर रास्ते से टाइम से घर पहुंच जाते थे। हाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, उनसे भी लगता है कि मन, लेकिन भाई ऐसा अपने बच्चों के साथ ना होने दीजिए, उनको थोड़ा सा जो डर है उसको भगाइए, और टीचर अगर ऐसा है तो बात करिए, और कभी कभी बच्चों का जो बहाना है उसको एक्सेप्ट भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो बचपन है यार, बचपन है जो ना, ये लौट कर बार बार नहीं आता। विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से आपको गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया की नमस्ते होटो पर मी तेरी बात प्रोग्राम में। मैं बहाना बनाता था, मेरे पिताजी माताजी रुपए नहीं देते थे तो मैं स्कूल नहीं जाता था, कंचा खेलने भाग जाता था दोस्तों के साथ। हाँ ये कंचा खेलना भी बड़ा मजे का खेल था, और इसमें भी बहुत लोग बहुत बहाने बनाते थे। तो देखिए अब टाइम कह रहा है कि एक गाना भेज दे, हमने मेल्स तो बहुत ढेर सारे पढ़ लिए, और अभी हमारे पास मेल्स की ना कतार लगी हुई है, तो हम धीरे धीरे वो मेल आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक प्यारा सा गाना मैंने क्यू करके रखा है तो उसको इंतजार नहीं करवाते हैं और आप तक ये प्यारा सा गाना भेजते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
2: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
2: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
2: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर
1: मेल मिलाप।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर जनता दर्शन में अधिकारियों को निर्देशन देते हुए कहा है कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिकों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। आवास से लेकर इलाज तक, बिटिया की पढ़ाई व विवाह से लेकर निराश्रितों व बुजुर्गों की पेंशन तक समाज के हर जरूरतमंद के लिए सरकार की अनेक योजनाएं हैं। सभी पात्र लोगों से आवेदन कराकर इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है। गौतम बुद्ध नगर में आज मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के चतुर्थ संस्करण की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रस्तावित इवेंट के मास्टर प्लान एवं लेआउट का अवलोकन करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को समयबद्ध एवं प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश का एक प्रतिष्ठित और महत्वाकांक्षी आयोजन है, जिसे इस वर्ष और अधिक भव्यता एवं नवाचार के साथ आयोजित किया जाए। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार एवं इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा द्वारा संयुक्त रूप से 25 से 29 सितंबर 2026 के मध्य इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में किया जाने वाला है। राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने प्रयागराज में बताया है कि यूपी राज्य सूचना आयोग देश का पहला ऑनलाइन सूचना आयोग बन गया है, जिसमें कोई भी अपीलार्थी घर बैठे ऑनलाइन अपील कर सकता है और ऑनलाइन जुड़कर अपना पक्ष भी रख सकता है। अपीलार्थियों को अब राज्य सूचना आयोग लखनऊ आने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा विभाग के जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय सूचना अधिकारियों को जन सूचना अधिकार 2005 के तहत कैसे जन सूचनाएं लोगों को प्रदान करें, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते ने आजमगढ़ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका कथित तौर पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संबंध है। एटीएस को मिली जानकारी के अनुसार आतंक फैलाने और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई आतंकवादी संगठन शहजाद भट्टी नामक एक पाकिस्तानी गैंगस्टर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
2: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई।
1: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, सवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

यही 2:06 का वक्त और भाई प्रोग्राम शुरू हो चुका है रेनबो हॉट मील, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा है आपके साथ। तो दोस्तों कहते हैं कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे बन जाते हैं, कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे बन जाते हैं जो हर पल दिल के करीब रह जाते हैं। आवाज तो नहीं देते वो कभी, बस एहसास से ही जिंदगी महका जाते हैं। तो जी हाँ, कुछ ऐसा ही रिश्ता निभाने फिर से आपकी दोस्त आ चुकी है आप सबके बीच कार्यक्रम रेनबो हॉट मेल लेकर। और ये प्रोग्राम होता है आपका ही, जिसमें आपको भेजने होते हैं अपने पसंद के गीत जो आप सुनना चाहते हैं, और साथ ही अपना डेडिकेशन कि वो गीत आप किसको सुनाना चाहते हैं। तो बस लिख दीजिए हमें अपने मेल्स, और मेल्स के मेरा तो मुझे लग रहा है कि मेरे मुंह से ही मेल्स निकला लिया, और मेरे पास यहाँ पे बहुत ढेर सारे मेल सामने मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि ये प्यार जो आपका हमें मिलने लगा है, तो थैंक यू सो मच। तो मेल आईडी आपको पता ही है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो मैं रिपीट कर देती हूं एक बार। तो हमारी मेल आईडी है fmakashfanilakhnau@gmail.com। तो आप हमें भेजिए मेल्स, और इस गाने के बाद हम पढ़ेंगे आपके मेल्स कि आपने कौन कौन से गीत हमें भेजे हैं। और ये प्यारा सा ट्रैक जो आ रहा है आप में से ही किसी की पसंद का है, जिसको हम सब एंजॉय करेंगे। तो चलिए एंजॉय करते हैं प्यारा सा गीत, मेरे महबूब मेरे सनम।

बजकर 11 मिनट का वक्त और प्यारा सा गीत आपने सुना, शुक्रिया मेहरबानी करम। और गाने में जो वर्डिंग्स थे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, और वो शुक्रिया कहना चाहती हूँ आपसे कि वो इतना प्यार जो आप देते हैं हमें अपने मेल्स के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुधांशु जी ने हमें मेल किया है, राधे राधे सुधांशु, ग्राम भगवतीपुर पोस्ट महोना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गाना सुनाइए। तो इन्होंने 2-3 गाने हमें भेज दिया है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि वो गीत आप तक पहुंचे। ताज मोहम्मद जी ने हमें मेल किया है, बहुत प्यारा सा जो मेल है वो इतना खूबसूरत सा मेल है, फ्लावर्स बने हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं और लीव्स बनी हैं और बहुत ही प्यारा। मुझे लगता है कि किसी को अपनी, जब आप किसी को भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप इस तरीके का मेल लिख सकते हैं, इस तरीके से मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आदरणीय प्रसारक जी, नमस्कार। प्रसारक जी, आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ शामिल कीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर अंसारी, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन्होंने हमें मेल किया है। और हमारे पास रामराज जी का मेल आ चुका है, श्री गणेश आय नमो हाय हॉट मेल जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज राजभानु, शंकर भैया पप्पू, पासी मनीष, नीरज मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। फरमाइश इन्होंने करी है एक गाने की, तो हम आप तक पहुंचाएंगे वो गीत। और राधे श्याम जी ने हमें मेल किया है, मास्टर राधे श्याम शाकिया कासगंज से, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है अंदाज, और होठों पर तेरी बात प्रोग्राम में सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छे थे। और इन्होंने एक, हाँ हाँ बिल्कुल, कोशिश है हमारी कि हम आप तक वो गीत जरूर पहुंचाएं। पवन कुमार जी ने हमें मेल किया है, बोधराज जी ने हमें मेल किया है और एक गाने की फरमाइश करी है, तो वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका कोरवाल, भानु प्रकाश और राजकुमार जी ने हमें मेल किया है, दूधी जी ने, गांव हिसार से राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी और पुष्पेंद्र कुमार दूधी, कोई भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। और हमारे पास मेल आया है बाबू अंसारी जी का, बाबू अंसारी गुड आफ्टरनून, शिखा मैम कैसी हैं आप, मुझे ये गाना सुनवा

लीजिए प्लीज़। अच्छा जी बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि हम आप तक ये गीत जरूर पहुंचाएं। और प्यारा सा गीत आप में से ही किसी की पसंद का आ रहा है आपके रेडियो सेट्स तक, तो चलिए हम और आप इंजॉय करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन

पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर

0: पॉल माशाटीले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटीले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख

0: पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ यह कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से

प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जी 2:35 का वक्त और अभी इतनी प्यारा सा गाना सुना। कौन सा प्यारा सा गाना था? वो गाना था क्या यही प्यार है? जी हाँ, बिल्कुल यही प्यार है जो आप हमें इतने प्यार से और इतने एहसास से ये जो मेल करते हैं, इतने डेकोरेटिव, इतने प्यार भरे जो मेल करते हैं, तो यही तो प्यार है भाई। और संदीप मक्कर जी ने हमें मेल कर दिया है और एक गाने की फरमाइश करी है। नाम लिखा है ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर और भरत मक्कर, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गौरैया, जलंधर, पंजाब से इन्होंने हमें मेल किया है। और नरेश जी ने हमें मेल किया है, नमस्कार जी आपको माने योग्य आरजे जी, गीत तो बज गया शिखा दीदी जी, प्लीज नाम पूरा पढ़ दें। तो भाई पूरा तो मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने आपका ये, आपको थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने दोबारा भी आपका मेल पढ़ दिया है शिखा। तो मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ आपसे कि एक ही मेल करिए, हम शामिल जरूर करेंगे, क्योंकि आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत अजीज हैं। और आपका ये जो मेल पढ़ना है, ये हमारी जो कहते हैं ना मनोकामना है, कि इच्छा होती है कि हम आपके एक एक मेल को बहुत शिद्दत से पढ़े। शिखा दीदी जी हमें भी शामिल करें, इंतजार कर रहे हैं कब से। और खैर बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का, शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए। और हमारे पास मेल आया है दीपेश वर्मा जी का, इन्होंने हमें मेल किया है ग्राम पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, और गाना इन्होंने एक लिखा है। कोशिश है हमारी कि हम आप तक पहुंचाएं। और हमारे पास मेल आ चुका है आकाश कुमार जी का, मैम को मेरा प्यार भरा गुड आफ्टरनून, नमस्ते, मैं आकाश वर्मा, विलेज मुरारपुर रेलवे स्टेशन तैयबाद जिला बाराबंकी केयर का रहने वाला हूँ। प्रेजेंट में मैं इंद्रानगर लखनऊ से मेल कर रहा हूँ। शिखा मैम आप कैसी हैं? मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ, कार्यक्रम लाजवाब है, प्लीज हमें मैम मेरा मेल अवश्य शामिल कीजिएगा, प्लीज मैम मुझे सॉन्ग सुना दीजिए। तो ये लीजिए आपका मेल तो हमने शामिल कर लिया, और कोशिश है कि आप आपका गाना हम आप तक जरूर पहुंचाएं। और कुमार अंशु शर्मा, राम रमा शंकर, एवीएन, सभी सुनने वाले दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज मैम थैंक यू। तो थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं भाई, आपका ही प्रोग्राम है और आपके ही गीत बजते हैं, सारे जितने भी गीत आप तक पहुंचते हैं। और हमारे पास मेल आया है आफ्ताब अंसारी जी का, शिखा बहन जी को प्यार भरा नमस्कार, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, सबको खुशियां बांटती रहिए। तो गाना भी हम आप तक पहुंचाएंगे, शेरवानी स्कूल गुंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। और हमारे पास एम के राज जी का भी मेल आ गया है, मुनेश कुमार राज, गांव भानपुर हरौवा जिला लखीमपुर खीरी से इन्होंने मेल किया है। आरजे जी को शुभ दोपहरिया, पूरी एफएम टीम को नमस्कार। तो थैंक यू सो मच सबकी तरफ से आपको, दो लाइन हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल, अरे वाह क्या बात लिख दी आपने। खाना और गाना हर किसी को अच्छा लगता है, अगर खाना गलत हो तो स्वास्थ्य खराब करता है, अगर गाना गलत हो तो समाज खराब करता है। और इन्होंने कई एक लिस्ट लिख दी है, तो हमारी कोशिश है कि हम आप तक जरूर पहुंचाएं सारे, क्योंकि गीत आप तक आपके ही आ रहे हैं। और मोहसिन हाशमी जी ने हमें प्यार भरा आदाब, आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें। और स्वर्ण सिंह जी ने हमें मेल किया, नमस्कार जी, गांव लोगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, कोई भी गीत सुना दीजिए, हमारा नाम जरूर से शामिल करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत ही प्यारा सा गीत आ रहा है आप तक, तो चलिए एंजॉय करते हैं।

जी 2:47 का वक्त और आपके प्यारे प्यारे मेल्स हम पढ़ रहे हैं और प्यारे प्यारे गाने ही आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमद बागवान जी ने हमें मेल किया है, शिखा बहन जी को सादर नमस्कार, और हमें आज आप नजरअंदाज कर रही हैं, मेरे मेल अभी तक शामिल नहीं किए, प्लीज अपनी पसंद के कोई भी गीत में शामिल कर लीजिए। और पसंदकर्ता बागवान मंजिल छोटी वलिया से नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान और आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ बागवान और छतरी टोल तेगड़ा बाजार बेगूसराय से अदीबा अफसरी, इस्माइल आजाद, नन्ही राजा, फैज फिरोज आलम, भाई शाह आलम, वली आलम जी। जी आप सभी का नाम हमने शामिल कर दिया और आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया था। डीके जी ने हमें मेल किया है न्यू दिल्ली से, कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, एक इन्होंने फरमाइश करी है बहुत ही प्यारे से ट्रैक की, कोशिश है कि आप तक पहुंचाएं हम। और मसरूर हसन जी ने हमें मेल किया है, आपको प्रेम पूर्वक आदाब, गांव कुम्हार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम किसी भी गीत में। तो और हमारे पास मेल आया अरविंद कुमार जी ने हमें मेल किया है, आदरणीय कार्यक्रम प्रसारक जी नमस्कार, बेनीपट्टी जिला मधुबनी बिहार से इन्होंने मेल किया है और बहुत ही प्यारे से गीत की फरमाइश करी है, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमार। और हमारे पास मेल आया है रामराज जी ने हमें मेल किया है, हॉटमेल जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु शंकर और रामराज जी, हम आपका मेल पढ़ चुके हैं और एक ही मेल आप बार बार करते हैं, तो एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, बहुत प्यारे हैं, एक मेल भेजिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस मेल को जरूर से शामिल करें। जय श्री कृष्णा। बिट्टू गगनीजा जी ने हमें मेल किया है, जलालाबाद

वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। और हमारे पास मेल आया है साई गायकवाड़ जी का, कार्यक्रम हॉटमेल हॉटमेल सादर करने वाली चिका दीदी को हमारा प्यार भरा नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून जी, कैसी हो दीदी जी? बहुत अच्छे हैं और हमारी आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। और गाना हमने कोशिश है कि आप तक पहुंचा दिया है, और अगर नहीं पहुंचाया है तो पहुंच जाएगा। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नंदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़। महेंद्र जी, देपन जी ने हमें मेल किया है, नमस्कार शिखा मैम जी, खम्मागढ़ी, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। महेंद्र देपन गांव रूड़, जिला नागौर, राजस्थान से, और कोशिश है कि आपका गीत आप तक जरूर पहुंचाएं। सुनील पाठक जी ने हमें मेल किया है, आदरणीय होस्ट मैडम जी हार्दिक नमन अभिनंदन जी, अनारकली बाजार जगराव से इन्होंने मेल किया है। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। और अब एक गीत आप तक आ रहा है, आप में से किसी की फरमाइश का गीत आप तक आ रहा है, तो चलिए हम सब एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

2:54 का वक्त, और भाई ये वक्त देखिए कह रहा है कि हम आप सबके जल्दी जल्दी से नाम ले लें, क्योंकि किसी का भी मेल इसका स्किप हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और हमारे लिसनर्स सोचेंगे कि भाई हमें नजरअंदाज किया गया है। तो आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया गया, और हमारी पूरी कोशिश है कि आपके ही गाने हमने एक एक करके प्ले करें। और एक प्यारी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि किसी के गीत अगर उन तक नहीं पहुंचे तो उसके लिए बिल्कुल मैं तहे दिल से क्षमा मांगना चाहती हूँ। और तो मैं नाम ले लूँ आप लोगों के, तुलसी मस्किन जी ने हमें मेल किया है, सुशांत प्रिया झा ने हमें मेल किया है, तेज बहादुर यादव जी ने मेल किया है, बेनित कुमार जी ने मेल किया है, शहरूर नूर अंसारी, ताज मोहम्मद, मूसा शेख जी ने मेल किया है, स्वरण सिंह जी ने हिंदुस्तानी, ब्रह्मेश जी ने हमें मेल किया है, राधे कुमार विद्यार्थी जी ने हमें मेल किया है, सुभाष गोदारा जी ने हमें मेल किया है, और रोजी डिकेस्ट्रो जी ने हमें मेल किया है, डीके जी ने मेल किया है, अहमद भगवान जी ने मेल किया है, अहमद भगवान, अरविंद कुमार, मसरूर हसन, रामराज, विट्टू गगनीजा, सुनील पाठक, साई गायकवाड़, महेंद्र दीपन जी, सहरूर नूर अंसारी, नवी हसन, हीरामणि वर्मा, राजेंद्र कुमार जी, रोजी डिकेस्ट्रो, अब्दुल गुफार, और आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आपने इतना प्यार भरे मेल हमें लिखे और साथ ही अपनी पसंद के गीत हमें लिखे और डेडिकेशन लिखी। तो थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। और अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भाई समय कह रहा है कि शिखा टाटा बाय बाय कहना होगा प्रोग्राम रेनबो हॉटमेल को, और वाइंड अप करना होगा इसे अभी यहीं पर, और आपको रहना होगा हमारे साथ क्योंकि अगला प्रोग्राम, जी हाँ, सतरंगी दुनिया भी आप एंजॉय करेंगे अपनी दोस्त शिखा के साथ। तो एक प्यारे से गाने के साथ आपको इस प्रोग्राम में छोड़े जा रही हूँ, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट. दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को.

102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हो चुके हैं आप। दोस्तों म्यूजिक आर्ट प्रोग्राम के साथ मैं आ चुकी हूँ स्टूडियो में एंटरटेनमेंट करने। जी हाँ, एंटरटेनमेंट होगा बहुत ही पुरानी यादों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रोग्राम के साथ आरजे मालिनी, बोले तो मुस्कुराती मालिनी। स्वागत है आप सभी का छुट्टियों के देसी मैदान में। आप सोच रहे होंगे कि भाई छुट्टियों का देसी मैदान कहाँ से आ गया। भाई छुट्टियों का देसी मैदान, जी हाँ, इससे हम बात करें तो इसमें हम छुट्टियों की बातें करेंगे, और वो छुट्टियों की बातें करेंगे जिसमें हम जमकर एंजॉय करते थे छुट्टियों को। गर्मी की छुट्टियां, दोपहर की धूप और पेड़ों की छांव, और खास तौर पर आम के पेड़ों की छांव।

और याद करिए उन दोपहरों में भी ना कॉलोनी और मोहल्ले में गूंजती थी बच्चों की आवाजें। आवाजें क्या आती थी, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, अरे मेरी गिल्ली मत छुपाना। वाकई दोस्तों क्या दिन थे वो दिन भी, जब मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं होती थी बल्कि खेल कर हमारी ऊर्जा भी खत्म नहीं होती थी। वो शामें जब स्क्रीन टाइम नहीं खेल का टाइम देखा जाता था घड़ी में। चलिए आज हम सजाते हैं यादों का वो देसी मैदान।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से सुन रहे हैं आप प्रोग्राम म्यूजिक आर। म्यूजिक आर में आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही पुराने समय के गेम्स की, छुट्टियों का देसी मैदान की।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें,
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और दोस्तों, अब मैं आपको याद दिलाने जा रही हूँ वो खेल है जो अपने समय में देसी क्रिकेट का दादा कहा जाता था। माना कि क्रिकेट का जुनून लोगों में आज भी है, लेकिन एक दौर ऐसा था ना जब गली गली का स्टार था गिल्ली डंडा। जी हाँ, आपने भी कुछ अपनी मेमोरी को पुराने समय से कनेक्ट किया होगा। एक छोटी सी गिल्ली होती थी, एक लंबा सा डंडा और ढेर सारा होता था साथ में उत्साह। और अच्छा, इस खेल में ना मजे की बात पता है क्या थी? मजे की बात ये होती थी कि खेलते वक्त हमें पता भी नहीं चलता था कि हम खेल खेल में अपनी आंखों और हाथों के तालमेल को मजबूत बना रहे हैं। कैसे? आपको बता दूं कि जब गिल्ली जो है ना हवा में उछलती थी तो हम उसे निशाना बनाकर मारते थे।

और जनाब, जितनी तेज गिल्ली की उड़ान होती थी ना, उतनी ही तेज हमारी एकाग्रता भी होती थी। और अक्सर ना बहस भी शुरू हो जाया करती थी, गिल्ली इतनी दूर गई है, कम से कम 50 डंडे तो होंगे ही। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा ना? तो सच में उस वक्त हमारे पास वो खेल थे जिसमें जीत कर भी, जिसकी जीत में, जी हाँ, हम पूरा मोहल्ला के साथ खड़े होते थे और उस जीत पर पूरा मोहल्ला ताली बजाया करता था। आपके पास भी अगर ऐसे पुराने वक्त से जुड़ी यादें हैं तो भाई बताइए, शेयर करिए हमारे मेल आईडी पर। हमारा मेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। तो जल्दी से आप मेल करिए, हमें आपकी मेल का इंतजार है। और फिलहाल आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, चलिए बताते हैं। अगर आपको अपने बचपन का एक खेल वापस लाने का मौका मिले तो वो कौन सा खेल होगा जिसे आप वापस लाना चाहेंगे? और दूसरा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा देसी खेल है जो आज के बच्चों को जरूर खेलना चाहिए? तो जल्दी से लिख भेजिए हमें ईमेल आईडी पर।

जी हाँ, मैं भी एक बात और बोलना चाहती हूँ, और वो बात जो बोलना चाहती हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। एक छोटी सी गोली होती थी और वो गोली में बड़ा हुनर होता था। जी हाँ, यही बात मैं बोलना चाहती थी कि छोटी सी गोली और बड़ा हुनर। किस सोच में पड़ गए आप भी भाई? मैं कोई पहेली नहीं बूझ रही हूँ, बल्कि मैं आपको याद दिला रही हूँ जेब में खनकते रंग बिरंगे कंचों की। कंचों की जो उन कंचों की मैं बात कर रही हूँ जो किसी खजाने से कम नहीं होते थे। एक बात तो है कि कंचों ने न सिर्फ हमें निशाना लगाना ही सिखाया, बल्कि धैर्य रखना भी सिखाया। और एक सही एंगल, सही अंदाज और सीधा निशाना, आज की भाषा में अगर कहें तो बच्चों के पहले फिजिक्स लैब होते थे ये कंचे। कोण, दूरी और ताकत का हिसाब बिना किसी फॉर्मूले के इजीली समझ में आ जाता था। और पता है सबसे मजेदार बात क्या होती थी इन कंचों की? सबसे मजेदार बात इनकी होती थी कि जिनके पास सबसे ज्यादा कंचे होते थे ना, वो मोहल्ले का सबसे अमीर खिलाड़ी माना जाता था। रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से सुन रहे हैं आप छुट्टियों का देसी मैदान म्यूजिक आर के अंतर्गत।

बिल्कुल जनाब, अगर आपने भी कोई पुराने खेल की हारी हुई बाजी जीती है तो हमें जल्दी से मेल करिए। हमने आपसे पूछा है अगर आपको अपने बचपन का एक खेल वापस लाने का मौका मिले तो वो कौन सा खेल होगा। जल्दी से हमें बताइए ऐसा कौन सा देसी खेल है जो आज के बच्चों को जरूर खेलना चाहिए। तो हमें लिख दीजिए हमारे मेल आईडी पर aarkansomedia@gmail.com पर। तो हमें आपकी मेल्स का इंतजार है। और दोस्तों, उस वक्त की अगर हम बात करें तो एक इंडोर गेम मुझे बहुत याद आ रहा है, और अक्सर जून की छुट्टियों में हम घर के सिकंदर होते थे, उस खेल को हम ज़रूर खेलते थे। जी हाँ, वो होता था गुड्डे गुड़िया। जी हाँ, गुड्डे गुड़िया का खेल, भले ही शादियों का सहलग हो या ना हो, गुड्डे गुड़िया की शादी में तो सारी सहेलियों के साथ घर वाले भी जश्न मनाते थे। क्या आपके घर में आज भी गुड्डे गुड़िया है? तो जल्दी से हमें बताइए, हमें मेल करके। हमारा मेल

जिया गुड्डे गुड़िया का खेल भले ही शादियों का सहलग हो या ना हो, गुड्डे गुड़िया की शादी में तो सारी सहेलियों के साथ घर वाले भी जश्न मनाते थे। क्या आपके घर में आज भी गुड्डे गुड़िया है? तो जल्दी से हमें बताइए, हमें मेल करके। हमारा मेल आईडी हमने आपको बता ही दिया, और बन जाइए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। और सहेलियों की बात चली है ना, तो मुझे एक बहुत ही खास बात याद आ रही है सहेलियों की बात पर। छुट्टियों में वो खेल अक्सर हम लोग सहेलियों के साथ खेला करते थे, और वो खेल था उंगलियों की जादूगरी यानी पंचगोटी का। पता है इस खेल में क्या होता था? इस खेल में होती थी पांच छोटी छोटी गोटियां, वो भी बड़ी छांट कर हम लोग एक सी गोटियां इकट्ठी करते थे। और भाई क्या होता था उस गोटियों के साथ खेल तो होता ही था, और बहुत सारी चपलता भी होती थी। पांच गोटी खेलती हुई लड़कियों की उंगलियों को कभी आपने ध्यान से देखा है? जी हाँ, जब भी अगली बार कोई खेल रहो ना, तो ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर उन उंगलियों को हम ध्यान से देखें ना, तो वो इतनी तेज चलती थी कि देखने वाले भी हैरान रह जाते थे। जी हाँ, ये जो खेल है ना, ये हमें सिखाता था कि ध्यान और संतुलन कितना जरूरी है। जब एक गोटी ऊपर उछाली जाती थी, तो उतनी ही देर में नीचे वाली गोटी को उठाकर ऊपर वाली को कैच करना होता था। जरा सी चूक और पारी खत्म। यानी कि खेल खेल में दिमाग और हाथों का शानदार टीम वर्क दिमाग को कॉन्सेंट्रेट होना सिखाता था।

जी हाँ बिल्कुल, सहेलियों के साथ मिलकर बैठकर खेलकर कब वक्त बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिकार। म्यूजिकार में आज हम बात कर रहे हैं छुट्टियों के देसी मैदान की, और प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आरजे मालिनी, बोले तो मुस्कुराती मालिनी। दोस्तों सहेलियों का साथ होता था तो फिटनेस का असली जिम खुल जाता था, पता ही नहीं चलता था हम सहेलियां सब साथ मिलकर कब खेलते थे और कब समय कहां से कहां पहुंच जाता था। बहुत सारे हम लोग गेम्स खेलते थे, याद है आपको रस्सी कूद, अक्सर छुट्टियों का जिम जो है रस्सी कूद भी हुआ करता था। 1, 2, 3, 4 और सबकी रस्सियां जो हैं गिनती के साथ घूमना शुरू हो जाती थी। और पता है कमाल तो तब होता था ना जब रस्सी कूदते कूदते ना 100 का आंकड़ा भी पार हो जाता था और पता ही नहीं चलता था। और पता है फायदे की अगर बात करें तो फायदा क्या होता था, जनाब दिल मजबूत होता था, फेफड़े मजबूत होते थे और स्टेमिना भी मजबूत होता था, यानी कि बिना किसी ट्रेनर के हम खुद अपनी फिटनेस इम्प्रूव कर लेते थे।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जी हाँ, ऐसी धूमधाम मचाते हुए हम पूरा दिन छुट्टियों का बिता देते थे। और गर्मी की छुट्टियों में ना खेलते वक्त सूर्य का डूबना भी हम लोगों को पता ही नहीं चलता था। कमाल के होते थे ये देसी खेल भी। याद है आपको एक पैर वाला खेल? बिल्कुल सही समझा जनाब आपने, हम उसी खेल की बात कर रहे हैं जिसे आप समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हॉपिंग और इक्कड़ दुक्कड़ की। अच्छा, हॉपिंग की बात करें ना तो इसमें क्या होता था, इसमें दो टीमें होती थी और एक टांग पर कूद कर दूसरे पाले में जाकर लोगों को टच करके आउट करना होता था और पैर का बैलेंस बिगड़ा तो खिलाड़ी आउट। और ऐसे ही जो है एक आयताकार आकृति बनाई जाती जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स बनते थे, वो इक्कड़ दुक्कड़ होता था। उसमें एक एक ब्लॉक में गोटी फेंक कर एक पैर से वो इक्कड़ दुक्कड़ खेल जो है खेला जाता था। और जनाब ये वो खेल थे, ये वो खेल हैं, मतलब आज भी लोग खेल सकते हैं, ये वो खेल हैं जो हमें संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास सिखाते हैं। गिरकर उठना और फिर कोशिश करना, यही तो है जीवन का सबसे बड़ा पाठ, यानी सबसे बड़ा मूल मंत्र। बढ़ते हैं आगे एक और अच्छे से गाने के साथ।

वैसे एक बात तो है, देसी खेल खेलने वाले जो बच्चे होते थे ना, वो आज के बच्चों के कंपैरेटिवली भाई धाकड़ तो होते ही थे। जी हाँ, उनको धाकड़ कहें तो गलत नहीं होगा। दंगल के मैदान में कुश्ती हो या कबड्डी, सांसों पर कंट्रोल कमाल का होता था। अगर देसी खेलों का कोई सुपरस्टार होता था तो वो कौन सा खेल होता था, जरा सोचिए। जी हाँ, चलिए मैं बताती हूँ, वो होता था कबड्डी। और आपको बताएं, कबड्डी जो है ना, वो सिर्फ ताकत का ही नहीं बल्कि रणनीति का भी खेल होता था। दो टीम, एक टीम का खिलाड़ी दूसरी टीम में जाता है और लगातार

लगातार बोलता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी या हो तू तू तू तू। सांस थाम कर रखनी होती है जनाब, यानी कि सांस भी ना टूटे और दिमाग भी चलता रहे, यानी कि फेफड़ों की ताकत, तेज निर्णय क्षमता और टीम भावना सब कुछ एक खेल में। तो चलिए फील करते हैं इस गाने के साथ।

जी हाँ जनाब, वक्त देखिए ना घड़ी में आगे भागता जा रहा है और देखिए हम भी आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे तभी तो अगले प्रोग्राम के साथ हम वापस भी आएंगे। और बात हो रही है छुट्टियों के देसी मैदान की, तो गर्मियों के दिन ना और दोस्तों का साथ, जी हाँ ये दोनों होता था ना, तो सुबह शाम की मस्ती भरी यादें आज भी हम सबके जहन में तरोताजा हो जाती हैं। याद है दोस्तों, दोस्तों के साथ गेंदताड़ी का खेल यानी कि भागो बचो और मुस्कुराओ। आज बिना गेंदताड़ी का नाम सुनते ही बचपन जैसे दौड़ सा पड़ता है। एक गेंद और ढेर सारे खिलाड़ी, जिसे गेंद लग जाए उसकी शामत। जनाब एक बात मैं बताना चाहूंगी कि ये वो खेल था ना जो आज भी देखने को कम मिलता है, बट इस खेल ने हमें जो है फुर्तीला रहना जरूर सिखाया है। आपने भी खेला होगा तो आपको भी महसूस हुआ होगा। तेजी से भागना, दिशा बदलना और हर समय सतर्क रहना यानी कि बॉल के टच से बचते रहना, तो हमेशा फुर्ती के साथ और चौकन्ना रहने की जरूरत होती थी इस खेल में। ये वो खेल था ना जो शरीर को मजबूत करता था और दिमाग को भी चौकन्ना रखता था।

नेटवर्क नहीं आ रहा है, आ रहा है, आउट और नॉट आउट पर बहस हुआ करती थी। खेलों में गिल्ली डंडा हमें एकाग्रता सिखाता था तो कंचे निशाना सिखाते थे। पचगोटी ध्यान बढ़ाती थी तो रस्सी कूद फिटनेस देती थी। हॉपिंग संतुलन सिखाता था तो कबड्डी साहस बढ़ाती थी। स्विमिंग आत्मविश्वास बढ़ाती थी और गेंदताड़ी हमें फुर्तीला बनाती थी। ये वो खेल थे, जी हाँ, ये वो खेल थे जो खेल नहीं, ये हमारी पूरी पाठशाला थे। और इन्हीं खेलों के साथ हम धूमधाम मचाते हुए कब बड़े हो गए हम समझ ही नहीं पाए। सुन रहे आप 102.2 FM रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्टबीट। म्यूजिक आर में आज बात हो रही है छुट्टियों के देसी मैदान की।

जी हाँ, आज के बच्चे अगर ये प्रोग्राम सुन रहे हो तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, बच्चों धूमधाम मचाते रहिए और अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करते रहिए। छुट्टियों के देसी मैदान में आज हम सब जुड़े बहुत ही खूबसूरत सी यादों से। इन्हीं खूबसूरत यादों और फिर मिलने के वायदे के साथ आरजे मालिनी म्यूजिक आर प्रोग्राम से इजाजत चाहेगी और चलते चलते यही कहूंगी, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और बचपन को अपने दिल में जिंदा रखिए। मिलती हूँ आपकी पसंद प्रोग्राम के साथ एक सॉन्ग के बाद। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्टबीट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हैं आप। आपकी पसंद प्रोग्राम के साथ मैं मालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल माय डियर लिसनर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे।

चलिए दोस्तों, क्या कहते हैं, आप प्रोग्राम को शुरू किया जाए। तो चलिए, पहले लिसनर्स आ चुके हैं हमारे सामने, हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। सबसे पहला गाना जो आप तक पहुंच रहा है हम किसी से कम नहीं फिल्म का है। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, आर डी बर्मन की धुन पर गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। इस गीत के लिए हमारे पास मेल फरमाइश आई है। कहां से आई है मेल फरमाइश? सनावद से है, शेख मूसा मोहसिन की। लिखते हैं, प्यार भरा आदाब दीदी, नमस्ते। आप खैरियत से हो, दुआ में याद रखना। जी हाँ, हम खैरियत से हैं, आप भी अच्छे ही होंगे मुझे उम्मीद है। और लिखते हैं, एक और मेल हमारी स्क्रीन पर दिख रही है, आदरणीय उद्घोषक महोदया जी, आपको प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, हमारा भी नाम शामिल कर लीजिए। छत्रपति संभाजी नगर से है राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। और हमारे पास एक मेल और दिख रही है इसी गीत के लिए है, आदरणीय उद्घोषक जी, प्रेम भरा नमस्कार। नमस्कार जी, आज की दिन की शुभकामनाएं भाई, बहुत स्पेशल होता है हर दिन, हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। यह है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं आपको गाना सुनवा दूँ, फिर और मेल को हम शामिल करेंगे। तो चलिए एंजॉय करते हैं एक खूबसूरत सा गाना।

बहुत ही प्यारा सा देखिए गाना था, और ये गाना कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, हम तो गाने को सुन के उसमें खो से गए थे। बहुत ही प्यारा गाना। तो ऐसे ही गाने आप लोगों की पसंद के होते हैं जो वाकई में एकदम दिल को छू लेते हैं। फिलहाल इस गाने की फरमाइश हमारे पास आई थी हरजिंदर सिंह भाटिया की, इन्होंने हमें मेल किया था। ये कहाँ से किया था हरजिंदर सिंह भाटिया ने मेल, देखिए जगह का नाम नहीं समझ में आ रहा है, ये मेल किए हैं। अगली बार से आप थोड़ा जगह का नाम थोड़ा सा क्लियर लिखा करिए। अच्छा, इसी गाने के लिए हमारे पास और भी मेल आई थी, गांव हीरा वाली फजल का पंजाब से है सुभाष गोदारा, ये है बिमला गोदारा, इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा, नमस्कार जी हमारा भी नाम शामिल कर लीजिए। जनाब आपका नाम देखिए हमने शामिल कर लिया है, और एक खूबसूरत सी सजी धजी मेल और हमारी स्क्रीन पर दिख रही है। नमस्कार बहना जी, भाई बहना के लिए है तो नो डाउट बहुत ही खूबसूरत सी मेल आपने सजा कर भेजी है, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हम भी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और इन्होंने भी इसी गीत में अपना नाम शामिल करने को कहा। ये चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। और एक और हमारे पास मेल आ रही है, ये है आरजे जी को, प्यार भरा नमस्कार, आज हमारा भी नाम किसी भी नगमे में शामिल कर लीजिए। तो आपका नाम देखिए शामिल हो गया है। फरमाइश भेजने वाले हैं गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से हैं एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। और दोस्तों अब जो अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो हम सुनवाने जा रहे हैं दीवाना फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की मिली जुली आवाजें हैं। नदीम श्रवण की धुन पर गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। इस गीत के लिए हमारे पास जो मेल आई है वो आई है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना की। एक और मेल हमारी स्क्रीन पर दिख रही है, आपकी पसंद का कोई भी सदाबहार नगवा सुनवा दीजिए हमें भी, प्यार भरा आदाब जी, नमस्कार जी, लीजिए आपका भी नाम हमने शामिल कर लिया है। ये हैं खंडवा रोड सनावत से शहबाज, अरबाज, फराज, फरदीन, समीर, डॉक्टर मोइन शेख, और खंडवा से हैं योगेश गुजराती, आनंद जोशी और दुर्गा प्रसाद सैनी। कार्यक्रम आपकी पसंद। मैडम जी नमस्कार, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन नगमे सुनवा रहे हैं आप। भाई अभी तो हमने एक ही नगमा सुनवाया, चलिए आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं, आपने ये भी लिखा है और अपना नाम शामिल करने को कहा है, तो देखिए आपका नाम शामिल हो गया। आपने हमें मेल करी भोपालगढ़ राजस्थान से हैं ये धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। एक और इस मेल आई है, महोदया जी नमस्कार, आपकी पसंद का कोई भी गीत हमें भी सुनवा दीजिए। देखिए हमारे लिसनर्स की पसंद में हम आपको भी शामिल कर रहे हैं। ये हैं बोरखेड़ा से हैं उज्जैन, ये बोरखेड़ा उज्जैन से ये मेल हमारे पास आई, विनोद, ये है विनोद मूर्त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूर्त, चेतन नाहटा, आपका धन्यवाद, इन्होंने धन्यवाद भी लिख दिया है, वाह क्या बात है। फिलहाल तो हम गाना प्ले करते हैं, आप लोग सब गाना एंजॉय करिए।

फिलहाल तो अब अगला गीत हम आपको फिर से सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे इसी के लिए बहुत और भी मेल आ गई हैं, तो चलिए उनको भी मैम शामिल कर लेते हैं। एक मेल हमारे पास आई है, नमस्कार आदाब, नमस्कार जी, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए और सबको खुशियाँ बांटती रहिए। आपने भी अपना नाम शामिल करने को कहा है, तो ये है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। और एक और है सस्नेह सप्रेम, नमस्ते, नमस्ते जी, इन्होंने भी गाने में अपना नाम शामिल करने को क्या है। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से हैं, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले। और पुनावले पुणे से हैं अजय सोनवने, सोनवने करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने। और देखिए इसमें फिर वही सारे जो है नाम दोबारा रिपीट कर दिए गए हैं नीचे, तो चलिए आप सबका नाम शामिल हो चुका है। और एक है दादरी गेट भिवानी से भी यही गाना सुनना चाहता, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। अंत में इन्होंने लिखा है नमस्ते जी, नमस्ते।

और अब अगला बहुत प्यारा सा एक गाना और हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है सितमगर। किशोर कुमार और आशा भोसले की मिली जुली आवाजें हैं आर डी बर्मन की धुन पर। गीत के बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, और इस गीत के लिए हमारे पास जो मेल स्क्रीन पर दिख रही वो है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया की। और इसी के लिए देखिए एक मेल और है, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से है, नारायण खर्चे, ललित खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, आराध्या खड़से, वैष्णवी खड़से, इन्होंने भी गाना सुनना चाहा है। और एक और हमारे पास मेल दिख रही है, देखिए मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक बार मेल करिए, उसके बाद बार बार मेल मत करिए, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो चलिए नेक्स्ट मेल हम शामिल करते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम आज के सुमधुर संगीतमय और लाजवाब कार्यक्रम में। हमारी फरमाइश भी शामिल कर लीजिए, मेहरबानी होगी, हमारा भी नाम शामिल कर लीजिए प्रोग्राम में। तो चलिए जनाब आपका नाम हमने शामिल कर लिया, तो चलिए बोल दें आपका नाम। चलिए बोल देते हैं, मंसूर रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शाबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी, तो आपका नाम शामिल हो गया है। और अब एक और स्क्रीन पर मेल दिख रही है, ये है दतरंगी भाटापारा से हैं, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, तो इनका भी नाम देखिए शामिल हो चुका है। एक और हमारे पास आई है, रेडियो कानपुर लिखा हुआ है, फिर लिखा है नमस्ते जी, सेव वाटर सेव लाइफ, तो इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, पानी बचाइए और जिंदगी बचाइए। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से ही मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना परनाज और नवाज़ शेख दान

मैसेज दिया है, पानी बचाइए और जिंदगी बचाइए। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से ही मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना परनाज और नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव। तो चलिए गाना प्ले करते हैं अब।

से हवारी विवेल शामिल कर लीजिए। इन्होंने भी देखिए गाना सुनना चाहता है। ये है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, सचिन खुराना और ये हैं रिधान खुराना। सलाम नमस्ते। नमस्ते जी, प्लीज़ अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें भी शामिल कर लीजिए। हमने आपका नाम देखिए शामिल कर लिया, आपने ख्वाहिश जाहिर की। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से ये मेल हमारे पास आई है। अकरम हुसैन उर्फ प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा कलेर बिहार से हैं, मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन। एक और मेल हमारी स्क्रीन पर दिख रही है। आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार। नमस्कार जी, इन्होंने भी अपना नाम शामिल करने को कहा है। नर्मदा पार्क मंगल बेढ़ा से ये है मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। और जो नेक्स्ट सॉन्ग हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जिसमें कि आंखों की तारीफ की गई है। सागर फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज है, आर डी बर्मन की धुन पर गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। और इस गीत के लिए हमारे पास जो मेल आई है ना, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से है, फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण की मेल हमारे पास आई है। और एक मेल और हमारे पास दिख रही है, इन्होंने कहा है किसी भी गीत में हमारा भी नाम शामिल कर लीजिए। काजल सामा, मानवी तनवीर, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और इसी गीत के लिए एक और हमारे पास स्क्रीन पर मेल दिख रही है। प्रसारक जी सादर नमस्कार। नमस्कार जी, हम प्रोग्राम में आपका अभिनंदन करते हैं, हमें नजरअंदाज मत करना बहन जी। बिल्कुल जनाब, आपने इतनी प्यारी मेल की है और इत्तफाक भी देखिए ना, आपकी मेल नज़र के सामने आ ही गई। तो चलिए, आपका नाम हमने शामिल कर लिया। बागवान मंजिल छोटी बलिया से मेल हमारे पास आई है। नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ बागवान और छतरी टोल तेघड़ा बाजार बेगूसराय से मेल है। अदीबा अफसरी, इस्माइल आज़ाद, नन्हे राजा, फयाज फिरोज आलम, भाई शाह आलम, वली आलम जी। तो सबका नाम देखिए शामिल कर लिए हैं। और इतने लंबे लंबे आप लोग के नाम होते हैं कि नाम पढ़ने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो एक और हमें मेल दिख रही है। कार्यक्रम आपकी पसंद पेश करता, आदरणीय प्यारी दीदी जी को प्यार भरा नमस्कार। आज की आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। मेरा भी नाम किसी भी सॉन्ग में शामिल कर लीजिए दीदी जी। हम आपके साथ बने हुए हैं लाइव और हमारा मैसेज भी शामिल करना। तो लीजिए जनाब, आपका नाम शामिल हो गया है। ये है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेल है। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। तो आपका नाम हमने शामिल कर लिया है। और अब जो है गाना सोच रही हूँ मैं प्ले कर दूँ।

जी हाँ दोस्तों, हमारे और आपके प्यार का कारवां भी सदियों पुराना है और यूं ही आगे भी चलता रहेगा। बहुत ही प्यारा गाना था और इस गाने के लिए देखिए कॉल बेल आई है। होस्ट मालिनी जी, हम भी जुड़े हैं लेकिन हम अभी लाइन में हैं, जल्दी

0: फिलहाल मैं बता दूं, मैं हूं मुस्कुराती मालिनी यानी आरजे मालिनी। आप सुन रहे 102.2 एफएम रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्ट बीट प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद। और इसी गाने के लिए हमारे पास मेल आई थी गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से। रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, उषा खट से, रक्षा ताई खट से, चित्रपट धूम धड़ाका, पता नहीं इन्होंने आगे बड़े अच्छे से बोल लिख दिए हैं, मुझे पढ़ के बड़ी हंसी सी आ गई। खैर कोई बात नहीं, आपका नाम देखिए शामिल हो गया है। और एक और हमारे पास आई है, मालिनी जी को प्यार भरा नमस्कार। ये जो है इन्होंने भी अपना नाम शामिल करने को कहा है, शास्त्री नगर बीच शहर से। आशा सपकाल, किसल सपकाल, सोनिया सपकाल, साईंराज सपकाल, विशाल सपकाल, तो सबका नाम हमने शामिल कर लिया है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी लौट कर आते हैं अगले सॉन्ग के साथ।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.join.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: और अगली गाने की ओर चलिए, अब बढ़ते हैं। ओम शांति ओम फिल्म का अगला गाना है, हम सुनवाने आपको जा रहे हैं। और विशाल दादल्लानी और शेखर की धुन पर गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और सोनू निगम श्रेया घोषाल की मिली जुली आवाजें हैं। और इस गीत के लिए हमारे पास जो मेल आई है वो है, लिखते मुस्कुराती मालिनी महोदया जी सदर, नमस्कार। नमस्कार जी, ये है ग्राम मदारीपुर कानपुर देहात से है अनिल कटियार, डिम्पी कटियार, गौरव, सौरभ और खुशी कटियार। एक और हमारे पास मेल आई है वडिंग खेड़ा पंजाब से है मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा की। प्यार भरा आदाब मालिनी बुआ जी को, भाई ये भतीजे जी हर बार मुझे मेल में मिल जाते हैं, भाई थैंक यू, नमस्कार आपको भी। आप कैसे हो, प्लीज अपने शानदार प्रोग्राम में बच्चे को भी शामिल करने की कृपा करें। तो चलिए आपका नाम हमने शामिल कर लिया है। सदाबहार नगमा आप सुनना चाहते हैं, कोई भी, तो बहुत ही अच्छा सा गाना सुनवा रहे हैं आपको सनावत से, बेबी तस्कीन, अर्शित, मोहम्मद रजा और आरिस शेख। ये है

दोस्तों यहाँ पर मुझे भी लग रहा है, मैं अगर कहूँ कि ये वक्त रुक जाए तो वक्त कभी नहीं रुकेगा जनाब, वक्त भागता जा रहा है। और मैं सोच रही हूँ आप लोगों की और भी मेल शामिल कर लूँ इससे पहले कि वक्त बीत जाए। तो चलिए जल्दी से बताते हैं, अभी हमारे पास मेल आई है। प्रोग्राम प्रसारक जी आदाब, हमारा भी नाम शामिल कर लिए, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से है। अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी और पायल जोशी, तहे दिल से इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और देखिए हमारे पास एक और मेल आई है, कुछ लोग लगातार मेल करते रहते हैं। देखिए इनकी मेल ये है, छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सरफ सदफ आरजू जूही, इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापासेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से हैं, बिटिया आमना नसरी, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले की फैमिली। और एक और हमारे पास मेल दिख रही है, ये मेल आई है मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शमशुल कमर राही और आफ्ताब अंसारी की। ये है सहावर रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से ये मेल है हमारे पास। अब जो है हम एक बहुत खूबसूरत सी मेल हमें दिख रही है, नेक्स्ट सॉन्ग के लिए सिंग इज किंग फिल्म का गाना सुनना चाह है, राहत फतेह अली खान की आवाज़ है, श्रेया घोषाल ने साथ दिया है और प्रीतम की धुन पर गीत के बोल लिखे हैं मयूरपुरी ने। और इस गीत के लिए हमारे पास देखिए मेल दिख रही है पिपरिया से, कमल कांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, बहुत खूबसूरत से इन्होंने पिंक और मतलब ग्रीन कलर से बहुत सुंदर सी डिज़ाइन बना करके भेजी है, बहुत खूबसूरत मेल था। रिस्पेक्टेड अर्जे मालनी दी, आप बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुना रही, देखिए ये सब आप ही की पसंद के गाने हैं जनाब। ये हैं मलियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जी वी एम जैन, तो इन्होंने भी गाने में अपना नाम शामिल करने को कहा है। और एक और हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर आ चुके हैं, इस वक्त स्क्रीन पर हैं, जनकपुरी सहारनपुर से हैं ये, गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड होस्ट, थैंक यू सो मच आपको भी भाई, गुड इवनिंग। ये हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। तो चलिए गाना फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ प्ले कर दूँ, बहुत ही प्यारा सा गाना है, आप सब मिलकर एंजॉय करिए।

0: दोस्तों, इस वक्त मेरी नज़र घड़ी पर टिक चुकी है और घड़ी में जो वक्त हुआ है ना, वो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद अभी हाजिर होते हैं। आप सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्टबीट।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और एक और हमारी स्क्रीन पर मेल आ चुकी है गाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा है नेक्स्ट सॉन्ग जो हम सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी। कुमार सानू की आवाज़ है, आर डी बर्मन की धुन पर गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर साहब ने। इस गीत के लिए हमारे पास जो मेल है ये है गुजरात गांधी नगर से है जी के परमार की मेल है। और एक मेल आई है, ये है नमस्कार होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, इन्होंने भी सुनना चाहा है ये गाना। और एक हमारे पास मेला आदरणीय प्रसारक महोदय जी, आपको मेरा नमस्कार, हमें भी अपनी पसंद के किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। ये हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की मेला।

एक और मेल आई है, गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, इन्होंने भी कोई भी गाने में नाम शामिल करने को कहा है, तो इनका भी नाम देखिए शामिल हो चुका है। एक और हमारे पास स्क्रीन पे मेल देखिए, नमस्कार प्रसारक जी, आकाशवाणी कानपुर से, जी हाँ आकाशवाणी कानपुर का एफएम रेनबो चैनल है, अमरावती महाराष्ट्र से मेल हमारे पास आई है। देखिए आपका नाम शामिल हो गया है, दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और पूरा रामेकर परिवार। तो चलिए गाना हमने प्ले कर दिया है।

और हम वक्त को देख रहे हैं, बस एक गाने का वक्त और बचा है और आपकी मेल्स का सिलसिला भी थम नहीं रहा है, लगातार मेल्स आती जा रही हैं। और भाई देखिए, जिनकी मेल आज नहीं शामिल हुई है वो इंतज़ार करें, क्योंकि कहते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है, आपकी मेल फिर कभी शामिल होगी। फिलहाल तो हम पढ़ते हैं कि इसी गाने के लिए हमारे पास जो मेल आई, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार। नमस्कार जी, हमारा भी नाम शामिल कर लीजिए, तहे दिल से शुक्रिया जी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये हमारे पास मेल आई है। ये हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भारत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगा वाला चौक, ये है गोरिया जलंधर से ये मेल हमारे पास आई है। इन्होंने भी अपना नाम शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। एक और हमारे पास मेल है, खूबसूरत कार्यक्रम पेश करता मैडम मालिनी जी नमस्ते। नमस्ते जी, आज के मन भावन मनमोहक कार्यक्रम में हमारे नाम को भी शामिल कर ले, धन्यवाद, दिल से दिया है इन्होंने। बिल्कुल जनाब, आपका नाम देखिए शामिल हो चुका है। राम चबूतरा कालपी से ये मेल हमारे पास आई है। मोहम्मद इब्तिशाम मंसूरी, मोहम्मद अनीश मंसूरी, अमन मंसूरी, अयान मंसूरी, आफरीन अलिजबा और जाकिर बुंदेलखंडी, तो आपका नाम हमने शामिल कर लिया है। और अब जो है एक नाम और दिख रहा है, लेकिन वो नेक्स्ट सॉन्ग के लिए है। कश्मीर की कली फिल्म का आखिरी गाना फिर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास मेल आई, पहले बता दें, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले की आवाज़ें, ओपी नैयर की धुन पर गीत के बोल लिखे हैं एसएच बिहारी ने। इसके लिए मेल आई है न्यू दिल्ली से हमारे पास कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु की मेल हमारे पास आई है। और एक और मेल दिख रही है, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरुशब्द जो हैं, गुरुशब्द सिंह राहुल, इनकी मेल है। और एक और दिख रही है, ये हमारा भी नाम शामिल कर लीजिए, ये हैं तखतपुर छत्तीसगढ़ से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। फिलहाल तो चलिए गाना मैं प्ले कर देती हूँ।

इस गीत के लिए हमारे पास एक मेल और आ गई, जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। और इसी के साथ आपकी पसंद प्रोग्राम से आरजे मालिनी को इजाजत दीजिए, फिर कभी मिलूंगी। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्टबीट।

नमस्कार। शाम के 5 बज रहे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। यह लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। उन्होंने कहा कि सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के उच्च शिक्षा और नए अवसर प्रदान करके उनके जीवन को बदल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में गीदा के सेक्टर 13 में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने प्रदेश के दूसरे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर गीदा के विभिन्न सेक्टर्स के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गीदा में सेवायोजित कामगारों के लिए EWASLIG आवासीय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देशभर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आगरा के बिहरारू को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। हमीरपुर में न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक सुगम, त्वरित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत कलेक्टर परिसर स्थित कलेक्ट्रेट भवन के प्रथम तल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। इस सुविधा के माध्यम से जनपद में निवासरत अथवा कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य साक्षीगण विभिन्न जनपदों की न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने साक्ष्य एवं गवाही दर्ज करा सकेंगे। इससे न्यायालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता में कमी आएगी और समय संसाधनों की बचत होगी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी की ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को आधिकारिक रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। 253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली इस परियोजना के अंतर्गत 5.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी में मुख्य रूप से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
0: सात जन्म है सात समंदर, सात हमारा हरदम है, जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर

0: रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जी हाँ भैया, 5:05 हो गया। हम जान रहे हैं आप किस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम का आप इंतजार कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम का नाम है FM टॉप 10। और हम इसमें सुनाते हैं टॉप 10 गाने किसी गायक के, किसी ईयर के, या साप्ताहिक गीतों की टॉप 10 लिस्ट। तो आज जो हम गाने लेके आए हैं टॉप 10, वो आपको ही बताना है कि किसके टॉप 10 गाने हम लेके आए हैं। तो पहले दो गाने सुनिए कि आज के टॉप 10 गानों में से इनके जो गाने हैं वो कितने नंबर पे हैं, और ये कौन गायक है, और हम आज किनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस गाने को सुनिए और थोड़ा सा इंतजार करिए, सोचिए कि ये गाना कौन सा है, क्योंकि बहुत जरूरी है आज के समय में लिफ्ट करा देना। तो लिफ्ट कराते कराते ये गाना सुनिए, गायक का नाम सोचिए और किस बारे में आज बात हो रही है ये भी जरा सा सोचिए।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

और इसी तरह अदनान सामी ने अपनी आवाज का लोगों को दीवाना बना दिया। आपको बताते चले कि आज हम बात करने वाले हैं अदनान सामी के टॉप 10 गीतों के बारे में। जी हाँ, 5:18 हो गया और आप सुन रहे हैं एफएम टॉप 10 सॉन्ग। और अभी अभी आपने दो गाने सुने अदनान सामी के। अदनान सामी के बारे में बता दें कि भारतीय संगीत जगत के एक बेहद लोकप्रिय गायक हैं, ये आप सभी जानते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इनका जन्म जो है 15 अगस्त 1973 लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और आपको ये भी बताते चले कि इनका रिकॉर्ड है कि ये सबसे तेज कीबोर्ड वादक भी रहे हैं, मतलब वो जो पियानो टाइप का होता है ना, वो सबसे तेज, आज तक के सबसे तेज पियानो वादक रहे हैं। उनकी उंगलियां बड़ी तेज चलती हैं। और आपको ये भी बता दें कि हिंदी के अलावा कई भाषा में इन्होंने गाने

इन्होंने गाए हैं और बॉलीवुड की कई फिल्मों में इन्होंने अपनी आवाज दी है जो आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। अदनान सामी, जी हां, 2000-2007 तक इनका एक जो दौर था, आज भी ये कई गानों में म्यूजिक दे चुके हैं, कई गानों में ये अपनी आवाज दे चुके हैं और कहीं कहीं ये किसी किसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी इन्होंने प्ले किए हैं।

पांच बजकर 24 मिनट हो गया है और आज हम एफएम टॉप 10 में बजा रहे हैं अदनान सामी के टॉप 10 गीत जो 2000 और 2007 के बीच एकदम धमाकेदार छाए हुए थे। उन गानों की लिस्ट लेकर हम आपके सामने बिल्कुल हाजिर हैं। तो आपको बताते चले कि अब इनके बारे में एक और खास बात यह भी है कि अमेजिंग वेट लॉस इन्होंने किया था, क्योंकि जब इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था तो इनका वेट जो है बहुत ही ज्यादा था, मतलब 120 किलो इनके पास इनके शरीर का वजन था और उन्होंने बड़ी मेहनत की, कड़ी डाइट इन्होंने की, बहुत मेहनत किया, उसके बाद इन्होंने अपना वेट बहुत ज्यादा कम कर लिया और बिल्कुल फिट एंड फाइन। मतलब अगर जिन्होंने 90s के लोग इन्होंने इनको देखा होगा और बाद में अचानक से देखा होगा तो बिल्कुल लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये कौन है, मतलब ये सच में वाकई में अदनान है या कोई और है। फिलहाल आपको एक और विशेष सूचना देते चले कि प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इन्वाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल यानी कि NIPP की अंतिम तिथि 31 मई से 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें प्रसार भारती.gov.in।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर, हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जी हाँ, 5:40 हो गया है और आपको बताते चले कि आप सुन रहे हैं FM टॉप 10 और बेहतरीन गानों का एक सीरीज। तो भैया रामराज ने हमें ईमेल किया है, श्री गणेशाय नमो, टॉप 10 कार्यक्रम के लिए उन्होंने कहा है, बहुत अच्छा गाना बज रहा है, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भान, शंकर भैया, पप्पू पासी, बहुत सारे नाम इन्होंने लिखा है और आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, हमारी तरफ से आपको बहुत सारा धन्यवाद भी इन्होंने भेजा है। और रोशनी रावत ने ये इन्होंने पहले ही गेस कर लिया था कि भाई आज जो गाने बज रहे हैं वो किन के बज रहे हैं, तो आज के जो गाने हैं वो अदनान सामी के गाने बजाए जा रहे हैं, ऐसा रोशनी रावत ने लिखा है। राधे श्याम जो शाक के कासगंज से हैं, ये गुड इवनिंग लिखते हैं और सिंगर का नाम इन्होंने अदनान सामी बताया। जी हाँ, अदनान सामी का ही गाना आज अपने टॉप 10 में

यह उनके सारे जो टॉप 10 गाने हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। नवनीत सिंह जी ने हमें ईमेल किया है चौक कोतवाली लखनऊ से, ये हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी बहन का नाम ले लीजिए, इनकी बहन का नाम नित्या है और वो दोनों मिलके प्रोग्राम सुन रहे हैं। और अदनान सामी इन्होंने बताया, जी हाँ अदनान सामी जो एक बेहतरीन गायक हैं और एक बेहतरीन कीबोर्ड मतलब कि जो पियानो बजाते हैं वो हैं, और उनको आपने देखा होगा कई रियलिटी शो में या ऐसे शो में जिसमें वो जज की भूमिका में नजर आए, और बहुत सारे उन्होंने पुरस्कार भी जीते बॉलीवुड को लेकर और पद्मश्री पुरस्कार से भी वो नवाजे गए हैं। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन सा ट्रैक अदनान सामी की आवाज में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो FM, जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
2: What is mobile number? What is your smile number?
3: What is your style number? करो क्या dial number?
4: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
1: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: पांच बजकर 49 मिनट और ये भागते हुए सेकंड जो आप 5:50 की तरफ जा रहे हैं, और ये अदनान सामी का और एक एक गाने जो आपके लिए चुन चुन कर लेके आए हैं, उनमें से एक और खास गाना सिर्फ आपके लिए।

वैसे जो आप ये सारे गाने सुन रहे थे, इनका एक अलग दौर हुआ करता था। पहले कि देखा जाए तो आज भी इन गानों को लोग सुनते हैं, लेकिन जिस समय ये गाने ट्रेंड में थे, जिस समय इस गानों का बिल्कुल टॉप मोस्ट गाना माना जाता था, कि भाई रेडियो में भी कहा जाता था फोन करके, भाई हमें यही वाला गाना सुनाइए, हमें इनका गाना सुनना है, तो उस वक्त के ये सारे गाने कहीं ना कहीं ऐसा लगता था ना कि मतलब उस गाने में कुछ ना कुछ जादू होता था। जैसे अभी इसके पहले आपने गाना सुना भींगी भींगी रातों में, तो वाकई में अभी का टेम्परेचर जो देख के लग रहा है कि वाकई में बारिश की जरूरत तो है। अब जैसे कि नौतपे वाली बात हो रही थी कि भाई नौतपा है, नौ दिन खूब चिलचिलाती गर्मी हो गई, हुई भी कई जगहों पर हुई, उसके बाद थोड़ी बहुत राहत के लिए बादल जो है घुमड़ घुमड़ के आए, थोड़ा सा राहत हुआ, लेकिन अब जो है आज के बाद से, आज के ही दिन से बल्कि हमको लग रहा है कि तापमान बढ़ने शुरू हो गया है। तो इसके लिए स्पेशल थोड़ा सा ख्याल रखिए अपना, वहीं बाहर निकल रहे हैं तो ये मत देखिए कि भाई फैशन में हमारे कमी हो जाए, गमछा जरूर लेके चलिए, क्योंकि गमछा गर्मी से आपको बचाए रहेगा तो फैशन आपका होता रहेगा, ठीक है। या फिर कोशिश करिए कि पूरी बाजू की शर्ट कॉटन के कपड़े जरूर पहनिए। 5:54 शिवम को दीजिए अनुमति FM Top 10 से, ये बेहतरीन सा गाना आपके लिए एक बार फिर से।

नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।

नमस्कार। शाम के 6 बजे के मुख्य समाचारों के साथ मैं शिवम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ से अधिक की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने कुशीनगर में इंसेफलाइटिस और माफिया दोनों पर प्रभावी प्रहार करते हुए विकास, सुरक्षा, रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि बुलेट स्पीड से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के पुत्र कुश, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की तपोभूमि कुशीनगर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर आगरा आए हुए हैं। आज उन्होंने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनावों में अपना वोट जरूर डालें। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। ग्रेटर नोएडा के विजय सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में कल से 13 जून तक

क्रिकेट लीग सीजन 2 का आयोजन होने जा रहा है। शिखर धवन, हरभजन सिंह, क्रिस गेल सरीखे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होंगे। सभी मैचों के लिए स्टेडियम में प्रवेश निशुल्क रहेगा। लीग के मुख्य संरक्षक पुनीत सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट में 6 फ्रेंचाइजी टीमें T20 फॉर्मेट में 18 मुकाबले खेलेंगी। लीग के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुरक्षा से लेकर ग्राउंड और अन्य सुविधाओं तक सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली गई हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स निर्माण के कारण ट्रैफिक ब्लॉक को 4 जून तक बढ़ा दिया गया है। ब्लॉक के चलते लंबी दूरी की 22 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। इसके अलावा 68 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए हैं। ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: यू आर लिस्निंग टू 100.7 FM रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।
2: जी हाँ, 6:05 हो रहा है और आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल 100.7 FM रेनबो पर, जिसपे प्रोग्राम शुरू हो चुका है शाम अवध। जी हाँ, इसमें ढेर सारी बातें हम लखनऊ शहर की करते हैं। क्या रहेगा ट्रैफिक अपडेट, क्या रहेगी शहर की गतिविधियां, कौन सी खबर है लखनऊ के लिए उपयोगी, ये सारी बातें बेहतरीन गानों के साथ लिपटे हुए आप तक पहुंचाते हैं हम हर रोज। तो अब आप सुनिए शाम अवध बेहतरीन प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले एक बेहतरीन सा गाना हो जाए, उसके बाद लेके आते हैं खबरों में की ढेर सारी खबर निकाल के।

जी हाँ, आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते 6:11 हो गए हैं, और अगर आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड थोड़ा सा आहिस्ते जरूर रखिएगा, क्योंकि भाई आज लखनऊ में बड़ा मंगल है, भंडारा है रास्ते में, तो आहिस्ते आहिस्ते

सारे भंडारों का स्वाद चखते हुए जाएगा। वैसे हम आपको रास की बात बताते हैं, जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो रास्ते में बड़े ढेर सारे भंडारे मुझे मिले, तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की कि मैं भंडारे के मतलब स्टूडियो जाना था, मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना है, लेकिन लास्ट में एक जगह बढ़िया ठंडे ठंडे पानी का रसना घोल के पिलाया जा रहा था। उफ, इस चिलचिलाती धूप में मुझे रहा नहीं गया, तो मैं भाई वहां पर ठंडा रसना पी के आया हूं। तो आप भी अगर वापस जा रहे हैं और अगर भंडारा मिल रहा है तो जय बजरंगबली का नारा लगा के थोड़ी देर गाड़ी पार्क करके नियत जगह जहां स्थान बना है वहां पार्क करके, क्योंकि मैं जब वापस स्टूडियो जब आ रहा था तो मैं एक बात और नोटिस की कि बहुत से लोग भंडारा खाने के चक्कर में सड़क पे ही गाड़ी खड़ी कर दी है, अव्यवस्थित तरीके से भीड़ जमी हुई है और ट्रैफिक भी बाधित हो रहा था। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अगर आप वापस जा रहे हैं रास्ते में कहीं भंडारा मिल रहा है तो तरीके से गाड़ी कहीं किनारे लगा के ही भंडारा आप खाएं। और हाँ, एक खास बात मैंने ये देखी कि बहुत से लोगों ने अपने भंडारे के पास पोस्टर लगा रखे हैं लिख के कि कृपया दोने पत्तल गिलास कूड़ेदान में ही डालें। देखिए कितने जागरूक है लोग, कितनी अच्छी वहां पे सोच रखी गई है, साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। अब आप भी इसमें अगर सहयोग नहीं करेंगे तो ये हम कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो आप भंडारा खा रहे हैं अगर, तो ये आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि जो दोने पत्तल गिलास चम्मच कटोरी और आइसक्रीम के कोन के जो कागज के रैपर मिल रहे हैं, तो भाई साहब उसको कूड़े में ही डालना है, सड़क पे नहीं फेंकना होता है ना। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और सेंसिटिविटी को थोड़ा और बढ़ाइए। फिलहाल 6:13 पर एक बेहतरीन सा गाना हम आपको भेज रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और न्यूज दे रहे हैं आपको कि अगर आपका मीटर जो है नहीं बदला है और तो उसके लिए अगर फॉर्म भर के आप बदलवाना चाहते हैं तो बेशक बदलवाइए, उसके लिए पूरी डिटेल हम दे रहे हैं। पोस्टपेड अगर नहीं हुए हैं तो मई में ही मीटर फिलहाल बदले जा चुके हैं, लेकिन अगर नहीं है किन्हीं कारणों से तो वर्टिकल कार्यालय इंद्रलोक हाईडेल कॉलोनी अमौसी हुसैनगंज लखनऊ मध्य पुरनिया उपकेंद्र जानकीपुरम और मंत्री आवास उपकेंद्र के पास गोमतीनगर जोन के अधिशासी अभियंता कलेक्शन के पास ये फॉर्म उपलब्ध है। 3 दिन में मीटर पोस्टपेड होने का मैसेज मोबाइल पर पहुंच जाएगा। अगर आप पोस्टपेड नहीं है अगर फॉर्म भर के जमा करते हैं तो आपका मैसेज जरूर आएगा, मतलब काम बिल्कुल एकदम फटाफट हो रहा है। और एक बेहतरीन सी खबर लखनऊ में खुद का आशियाना बनाने को लेकर है। एक गाना बजाते हैं, सुनते हैं और उसके बाद लौट के आते तब बताते हैं कि भाई लखनऊ में आपका खुद का आशियाना कैसे, कब और कितने में हो जाएगा।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जी हाँ, 6:20 हो गया और जैसा कि हमने आपको बताया था कि भाई हम जब वापस आएंगे तो लखनऊ में आपका आशियाना कैसे किस तरीके से बनेगा वो डिटेल बताने के लिए, तो आपको बताते चलें कि ऐशबाग स्क्वायर पार्क व्यू फ्लैटों के लिए खुल गया है पंजीकरण। जी हाँ, आपको बताते चले कि फ्लैटों के पंजीकरण के लिए आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें ये भी कि 276 पार्क व्यू अपार्टमेंट में और 118 फ्लैट खाली है ऐशबाग स्क्वायर में, जगह खाली है, मतलब जो फ्लैट है वो खाली है। पंजीकरण के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि पंजीकरण 30 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन एलडीए की वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको यह भी बता दें कि पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ एलडीए की वेबसाइट पे ही होगा, registration.ldae.lucknow यानी कि lucknow.in के माध्यम से ही कराया जाएगा। इसके लिए फ्लैट की अनुमानित मूल्य की 5% रकम बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी, जो आरक्षित वर्ग के लिए 2.5% होगी और फ्लैटों का आवंटन

0: लॉटरी से किया जाएगा। मतलब कि अगर आप घर लखनऊ में चाह रहे हैं लेना, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट खबर, अभी तक की बेहतरीन खबर यही होने वाली है। तो आप तुरंत इसको जाके रजिस्टर करिए, खुद को पंजीकरण करिए और लखनऊ में रहने का सपना बिल्कुल साकार करिए।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूं।

0: आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अच्छा, 6:27 हो गए हैं और ये भागते हुए सेकंड जो अब 28 को होने को है। आपको एक विशेष सूचना ये भी दे दे कि प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि 31 मई से 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prasarbharati.gov.in पर। और एक खास बात यह भी है कि अगर आप ट्रैफिक में हैं तो प्लीज जरूर अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और कैब वाले भैया लोगों से ये जरूर हम रिक्वेस्ट करें कि वो जो आप सीट बेल्ट ऐसे लगा के ऐसे ऊपर से निकाल देते हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। प्रॉपर सीट बेल्ट जैसे लगाई जाती है वैसे लगाएं, क्योंकि आप लोगों को हमेशा चलना ही चलना होता है, तो आप सेफ्टी का ख्याल बहुत ही ज्यादा रखें। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो टू व्हीलर चलाते समय बिल्कुल भी मोबाइल और ईयरफोन किसी भी तरीके का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये सोचा है कि भाई वो ब्लूटूथ जो आती है छोटी सी वो कान में लगा लिया, ऐसा बढ़िया गाना चलाते हुए चल रहे हैं। लेकिन अभी मैंने देखा है कि अब जो लोग बिल्कुल भी इस बात की चिंता ही नहीं करते हैं कि हमें सड़क पे चलते समय ट्रैफिक नियम का पालन हमें ही करना होता है। बहुत से लोग जो पैदल होते हैं वो सड़क को ऐसे पार कर रहे होते हैं जैसे लग रहा है कि गार्डन में ही टहल रहे हैं अपने, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी सड़क पार करें ये ध्यान रखें और ये बिल्कुल निश्चित करें कि दोनों तरफ से गाड़ियां नहीं आ रही हैं, और अगर आ भी रही हैं तो इतने तरीके से ही होते हैं जो प्रॉपर कट होते हैं, जो डिवाइडर में जहां होते हैं, जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहीं से ही क्रॉस करें। परसों देखा मैंने कि बंगला बाजार चौराहे पे ट्रैफिक बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसी में एक महिला है जो अपने बच्चे को टोपी लगा के और छाता लगाए क्रॉस कर रही है, और छाते से उनको ये अंदाजा नहीं हो रहा है कि दाएं से गाड़ी आ रही है कि बाएं से गाड़ी आ रही है, और उनके जस्ट बगल से एक रिक्शा निकला है, अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ होता तो चोट लगना बिल्कुल था। इस बात का ख्याल रखें और आप भी ध्यान रखें कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। तो वो जो डिवाइडर में बचे छोटे से कट से आप गाड़ी निकाल लेते हैं ना, चालाकी उसमें नहीं है, चालाकी इसमें है कि आप खुद को सुरक्षित रखते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं। 6:30 एक बेहतरीन सा गाना सिर्फ आपके लिए।
1: Hi, this is Udit Narain. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

0: हेलो FM,
1: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
2: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
3: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
0: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
4: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
5: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
6: समझे जनाब अली।
5: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
7: 6:37 पर ये खबर आपके लिए है कि बेटियों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए हो गए हैं, और ये कहां

हैं ये भी जान लीजिए आईटीआई सत्र 2026-27 के लिए। आपको ये बता दें कि प्रवेश के लिए SCVT ने जारी की है ये अधिसूचना, जिसमें जो फीमेल हैं उनके लिए ₹100 मात्र का शुल्क होगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए सत्र में उन्हें आवेदन शुल्क में विशेष राहत दी गई है। आईटीआई सत्र 2026 सत्र में प्रवेश के लिए सभी वर्गों की बालिकाओं को केवल ₹100 ऑनलाइन आवेदन शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आवंटन होगा कैसे ये भी आपको बता दे चले कि अधिसूचना के अनुसार 8वीं और 10वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे तथा मेरिट के अनुसार प्रथम चरण में सीटों को ऑनलाइन आवंटन किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया 3 प्रकार के विकल्प दिए जाएंगे, मतलब जब आवेदन करेंगे आप की काउंसलिंग कब करनी है, तब आवेदन में जब काउंसलिंग होगी तो पहले विकल्प में राजकीय आईटीआई व पीपीपी मॉडल, दूसरे में केवल निजी आईटीआई और तीसरे में राजकीय तथा निजी दोनों प्रकार की आईटीआई के विकल्प शामिल होंगे। और इसकी अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर जानकारी लें। 6:38 बेहतरीन सगाना आपके लिए प्रोग्राम शाम अवध में, शिवम है आज आपके साथ।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in.
1: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

6:51 हो गया है और प्रोग्राम चल रहा है शाम में अवध। मेरा नाम शिवम है और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो। हम हैं धड़कन लखनऊ की। और आपको बताते चले कि 34 ट्रेनों में स्लीपर और एसी की अतिरिक्त बोगियां लगने वाली हैं। कौन सी में कैसे क्या होना है वो सारी जानकारी अभी तुरंत दे रहे हैं। आपको बताते चले कि उत्तर रेलवे ने 34 ट्रेनों में स्लीपर और एसी के अतिरिक्त कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें गर्मी में छुट्टियों में वेटिंग से परेशान हजारों मुसाफिरों को बहुत ही राहत मिलने वाली है। और आपको ये भी बता

चले कि किस गाड़ी में कितनी ट्रेन में कौन सी बोगियां लगने वाली हैं। तो गाड़ी नंबर है 04211 और 12 LTT सुल्तानपुर एक्सप्रेस में 3 से 11 जून तक और LTT वाराणसी स्पेशल में 4 से 12 जून तक और नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में 6 से 14 जून तक 3rd AC इकोनॉमी का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। साबरमती एक्सप्रेस में 4 से 27 जून तक, साबरमती एक्सप्रेस में 2 जून से 7 जुलाई तक और साबरमती एक्सप्रेस में 4 से 27 जून तक 3rd AC स्लीपर को एक एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। इन ट्रेनों का नंबर है 19409 और 10, 20939 और 40, 20963 और 64। साबरमती एक्सप्रेस, ये चारों ट्रेनें जो अलग अलग नंबर से हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाएंगे, उनमें एक एक 3rd AC और स्लीपर कोच अतिरिक्त एक्स्ट्रा बोगी लगाई गई है, जिससे आप सभी को जाने में कोई भी परेशानी बिल्कुल ना हो। और एक खास बात यह भी है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चलने वाली 36 ट्रेनों को अन्य प्लेटफॉर्म से चलाया जाएगा। 5 नंबर प्लेटफॉर्म से चलने वाली 21 ट्रेनें भी दूसरे प्लेटफॉर्म से चलेंगी। प्लेटफॉर्म 2 और 3 से चलने वाली 11 ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 से चलाया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि कानपुर इंटरसिटी सहित कई ट्रेनें चार बाग नहीं आएंगी। ये लखनऊ जंक्शन, उतरेटिया, मानक नगर, मल्हौर तक ही आएंगी और वहीं से वापस हो जाएंगी। यशवंतपुर लखनऊ एक्सप्रेस उतरेटिया, कानपुर लखनऊ मेमू, 64255 लखनऊ कानपुर मेमू मानक नगर तथा 64215 अयोध्या लखनऊ मेमू मल्हौर तक ही आएगी और वहीं से वापस चली जाएगी। तो इस बात का बेहद खास ख्याल रखिए कि कभी भी ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में यथास्थिति जरूर जान लें। अब तो बहुत सारे एप्लीकेशन भी आ गए हैं जानने के लिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या 139 पर डायल करके अपनी ट्रेन के बारे में जानकारी जरूर इकट्ठी कर लें। और अब 6:54 हो गया है, प्रोग्राम शामे अवध को यही वाइंड अप करेंगे, आपसे लेंगे अनुमति, लेकिन कहीं मत जाइए, मिलेंगे आपको हेलो FM में, लेकिन एक बेहतरीन सा गाना आपके लिए।

नमस्कार, अब सुनिए यूपी की टॉप 10 न्यूज। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में चिलुआ ताल में 20 करोड़ 39 लाख रुपए से पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने

0: आज बाराबंकी के राजकीय प्रेक्षण गृह में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का आधार है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के नवयुक्त निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने आज अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के आतंक रोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया। फतेहपुर के जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पलटू का पूर्वा का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्राम सभा में कराए गए कार्यों की सूची चस्पा कराएं, जिसमें ग्रामवासियों को कराए गए कार्यों की जानकारी हो सके। ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंग बली के जयकारों के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश की अनुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

0: भाई, जिस घड़ी का आपका इंतजार था वो घड़ी आपके घर में बहुत पहले है, लेकिन वो घड़ी जिसमें बज गया है 7:06 और प्रोग्राम हेलो एफएम का इंतजार था, वो लेकर मैं आ गया हूँ। जी हाँ, मेरा नाम शिवम है और आपने ट्यून इन किया 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की। और इस प्रोग्राम में होता है ढेर सारी बातें और ढेर सारे फरमाइशी गीतों का गुलदस्ता, जिसमें आप लोग करते हैं हमें फोन। तो आप भी हमें फोन करिए और बन जाइए अपने फरमाइशी गीतों के श्रोता। तो फिलहाल हमारे साथ कोई बहुत दूर से जुड़ा हुआ है अपने ढेर सारे अरमान लेकर, तो करेंगे उनसे बात, जानेंगे उनका नाम, करते हैं क्या काम और क्या है उनके हालचाल, ये सारी जानकारी उन्हीं से ले लेते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: नमस्ते, क्या नाम है भाई साहब आपका?
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या नाम है आपका?
1: हेलो
0: हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
1: राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप शिमला से बात कर रहे हैं। बहुत जी, हेलो
1: हेलो
0: जी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास हैं या किसी भी तरीके का कोई एप्लीकेशन अपने फोन में ऑन रखे हैं तो प्लीज उसे हटा दीजिए। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखिए, इन्होंने हमें फोन किया था शिमला से और अपनी फरमाइश के गीत के लिए बोला था और बड़े खुश लग रहे थे ये, तो इनकी पसंद का गाना सुनते हैं। तब तक आप अपनी पसंद हम तक जरूर पहुंचाइए, हम कर रहे हैं आपका इंतजार बड़ी ही बेसब्री से। और फोन करिए, बन जाइए, बढ़िया वाला गाना सुनाते हैं आपको।

0: लेना। अरे भाई ऐसे कैसे हम आपका साथ छूटने देंगे, 7:12 हो गया है और हम आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छूटने देंगे। हम बिल्कुल तैयारी करके आए हैं। तो प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम, और आपको एक विशेष सूचना दे दें कि अगर आप हमें फोन कर रहे हैं तो कृपया अपने फोन में किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन ना ऑन करके बात करें, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन ऑन करने के बाद अगर हमें फोन करते हैं तो फोन कट जाएगा। नेटवर्क एरिया में रहें और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि होता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर ऐसे में आपका फोन कट जाता है तो बड़ी बहुत मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि भाई आपसे बात करते करते बीच में अचानक से फोन कट जाना। तो प्लीज इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत से श्रोता हमारे ऐसे भी हैं कि रेडियो ऑन कर लेंगे और बगले में बैठ जाएंगे और हमारा फोन की आवाज और हमारे रेडियो की आवाज दोनों हमें सुनाई दे रही होती है। तो भैया थोड़ा सा तरस खा लीजिए, क्योंकि हमें भी आपसे बात करनी होती है, है ना। तो इसी तरह हमारे एक बहुत ही बेहतरीन समझदार सुलझे हुए श्रोता हमें फोन किए हुए हैं, तो उनसे नाम जानते हैं और उनसे बातें करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो सर नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: जी सर नमस्कार, हम ग्रामोपोर्ट
0: जी। आप अपना नाम पता एक बार फिर से बोल दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है, आप पलिया से हमें फोन किए। ये बताइए रेडियो कब से सुन रहे हैं?
1: 2020
0: से सुन रहे हैं। तो अभी आपका फेवरेट प्रोग्राम रेडियो पे कौन सा है? फेवरेट प्रोग्राम रेडियो पे, अगर आप रेडियो सुनते हैं तो सबसे बेहतरीन प्रोग्राम जो अभी तक आपको लगा, जो लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा है।
1: लखनऊ रेमबो का प्रोग्राम सभी अच्छे लगते हैं।
0: लखनऊ रेमबो के सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। मौसम के बारे में बताइए कि मौसम कैसा है आपके यहाँ? वैसे तो हर जगह धूप ही है, लेकिन कहीं कहीं आज ऐसा है कि थोड़ी बहुत धूप बदली और थोड़ी आंधी की भी संभावनाएं हैं, तो कैसी है?
1: क्या सर आपकी आवाज सही है?
0: हेलो मुझे सुन पा रहे हैं आप?
1: जी सर।
0: कह रहे हैं मौसम कैसा है आपके यहाँ?
1: आप बोलिए सर।
0: जी कह रहे हैं, क्या करते हैं आप? रमेश जी ये बताइए आप।
1: जी मैं किराना स्टोर चलाता हूँ।
0: किराना स्टोर चलाते हैं, तो रेडियो वहीं सुनते हैं?
1: जी।
0: तो कभी जी
1: दुकान से
0: अच्छा अच्छा दुकान से वापस आ चुके हैं, तो ये बताइए गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: जान तेरे नाम का।
0: जान तेरे नाम का गाना सुनेंगे आप? कौन से?
1: कल कॉलेज
0: बंद हो जाएगा। वैसे कॉलेज तो खुला हुआ है बहुत से लोगों का, तो ये बताइए किसको डेडिकेट करना चाह रहे हैं गाना? अच्छा, रमेश जी ब्लाइंड है और इन्होंने देहरादून से पढ़ाई की है, और ये अपने सारे देहरादून के दोस्तों को ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं, और हमें नहीं करेंगे? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ऐसे ही हमें फोन करते रहिए, ईमेल भी कर सकते हैं आप, और यूं ही बने रहिए हमारे साथ, यानी 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
1: इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर

0: नगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं, उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं।
1: मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के चिलुआताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह

0: फसल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं।
1: मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के चिलुआताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनावों में अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। श्री कुमार 2 दिवसीय दौरे पर कल आगरा पहुंचे थे।
3: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
1: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के मास्टर प्लान और लेआउट का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री गोयल ने कल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 25 से 29 सितंबर तक होने वाला ये शो और अधिक भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आगरा के बिरहरू को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम

0: पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार इस उपलब्धि के लिए कल दिल्ली में सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया है।
1: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनूं और गांव की दुर्दशा पहले बहुत ज्यादा खराब थी, लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की, इंटरलॉक, सीसी सब कराई गई, बाकी पंचायत घर, सचिवालय, आरआरसी सेंटर, लैब, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत से कार्य करे गए। सरकार को बहुत धन्यवाद।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नाम बताइए और आराम से रिलैक्स होकर बताइए। आपका फोन लग गया है, कहीं भागने वाला नहीं
1: है। सर मेरा नाम सोनी शर्मा
0: जी,
1: राम प्रज्ञापुर
0: जी। सोनी सोनी

0: शर्मा जी लखीमपुर से बात कर रही हैं, ठीक है?
1: जो सुने सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
0: जी आपको भी सबकी तरफ से हम नमस्कार कर रहे हैं। कैसी हैं आप ये बताइए। अच्छा तो ये बताइए कि आज गाना कौन सा सुनेंगी? और डेडिकेट किसको करना चाहेंगी?
1: जी सर सभी के लिए, कितने भी लोग सुने सभी के लिए, सब सब हमारे लिए खास।
0: और ये बताइए आप अभी बता रहे थे कि आपका फोन दिसंबर में लगा, तो इसके बीच में आपने ट्राई किया?
1: जी सर नहीं।
0: अच्छा
1: ज्यादा नहीं फोन लगाते सर, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, हम जीते रहते हैं। जी सर
0: चलिए बहुत अच्छी बात है ये कि आप जागरूक हैं, कम से कम एक बार फोन लगाने के बाद आप कुछ दिन वेट कर लेती हैं। ऐसा ही मुझे लगता है जितने भी लोग हैं सुन रहे हैं उनको भी ये करना चाहिए।
1: सुनने के बाद 15 दिन के बाद तो लगाना, कुछ लोग लगाते हैं डेली तरह, हम सुनते हैं रोज ही लगाते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि अब इसके अलावा आप घर में जो है रेडियो कौन कौन सुनता है?
1: जी सर हम ही बजाया करते हैं, सुनते रहते हैं।
0: और फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है आपका? फेवरेट प्रोग्राम आपका?
1: प्रोग्राम ये भी सुनते हैं, और जो 11 बजे है वो भी सुनते हैं, और सर फिर इतवार को आता है सर फिटनेस सर।
0: ओके
1: कि महिलाओं से संबंधित जो डॉक्टर है उसको बुलाया
0: जरूर। अगर आप सुनती होंगे तो अक्सर हमारे यहाँ महिलाओं से जुड़े संबंधित जितने भी डॉक्टर है वो जरूर आते रहते हैं। आप सुनते रहिए और अगली बार भी जब ऐसा होगा तो जरूर आएंगे। तो अब आपका गाना आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: सुधांशु बोल रहा हूँ, ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा जिला लखनऊ से। सर
1: सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में, और आप हमें हमेशा ईमेल के माध्यम से अपनी कविताएं प्रेषित करते रहते हैं, और आज आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करते क्या है आप हमें हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: सर मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से पढ़ाई करता हूं सर, ग्रेजुएशन अब फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर में आ गया हूं सर।
1: जी, और इसके अलावा आपके क्या शौक हैं और किस तरीके की आप मतलब हॉबीज रखते हैं?
0: सर रेडियो सुनना बस।
1: रेडियो कौन सा फेवरेट है प्रोग्राम आपका?
0: सर फेवरेट है गुड मॉर्निंग लखनऊ, बाकी सभी।
1: तो अब आप गाने की फरमाइश बताइए कि गाना आज कौन सा सुन रहे हैं आप?
0: सर रंग भरे मौसम से रंग चुरा के।
1: रंग भरे मौसम में, फिलहाल तो ये रंगों वाला गाना नहीं है, सबके रंग जो है उड़े पड़े हैं गर्मी से, क्या कहते हैं, है ना?
0: यस सर।
1: गर्मियों में कैसा ख्याल रख रहे हैं आप?
0: सर पानी पीते हैं खूब, और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी खूब पानी पिए, मैं भी पीता हूँ सर खूब।
1: ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अगर मान लीजिए कि पानी अगर नहीं मिल रहा है तो बेल शरबत लस्सी और मट्ठे से काम चल जाएगा?
0: हाँ सर, तरबूज खाएं, खरबूजा खाएं, सीधा खाएं,
1: है ना? अच्छा, तरबूज और खरबूज खाते हैं से पहले हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं ये बताते हैं कि अगर उसे खरीद के ले आइए तो आधे घंटे तक पानी में डुबो कर रखिए।
0: यस सर।
1: है ना?
0: यस सर।
1: उसके बाद खाइए तो ज्यादा अच्छा है।
0: यस सर।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुधांशु जी, और आप हमें ऐसे ही फोन करते रहिए, ईमेल भी कर सकते हैं, और आपका गाना आपके रेडियो सेट पर बिल्कुल ये रहा।

0: 7:37 और अब बारी है एक और कॉलर से बात करने की। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: वेरी गुड इवनिंग जी, क्या नाम है आपका?

0: 7:43 हो गए हैं और हमारे साथ एक और श्रोता लाइन पे हैं, उनसे जानते हैं उनका नाम। हेलो हेलो जी, थोड़ा तेज बोलिए प्लीज। क्या नाम है आपका?
1: इंद्रपाल वर्मा।
0: इंद्रपाल वर्मा जी कहाँ से बात कर रहे हैं? लखीमपुर खीरी से आप बात कर रहे हैं और इंद्रपाल नाम है आपका। कैसे हैं आप ये बताइए। क्या करते हैं इंद्रपाल जी?
1: खेती का काम करते हैं।
0: खेती किसानी का काम कर रहे हैं, तो अभी खेत में फिलहाल क्या लगाया? क्या गेहूं तो कट गया होगा, धान की तैयारी हो रही होगी?
1: धान की रोपाई हो ही लगी आपकी। रोपाई
0: धान की बेहन जो है तैयार करने के लिए बिल्कुल खेत तैयार किए जा रहे होंगे। तो ये बताइए कि बारिश का तो अभी इस साल लोग कह रहे हैं कि अनुमान कम है, तो उसको लेके क्या तैयारियां आपने की हैं अभी से?
1: सर अब खेती छोड़ चुके हैं धान के लिए, तो अब किसी तरीके से पैदा तो किया जाएगा।
0: ये तो बात सही है। तो खेत आप नहर से पानी चलाते हैं या ट्यूबवेल से?
1: ट्यूबवेल है।
0: ट्यूबवेल से पानी चला रहे हैं, चलिए बढ़िया है। तो ये बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
1: सर अपनी पसंद का कोई भक्ति गीत।
0: भक्ति गीत तो इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आपको बढ़िया सा गाना जरूर सुनवा देंगे। और इस बात के लिए बहुत शुक्रिया कि आप हमें फोन किए और ऐसे हमें फोन करते रहे जी।
1: पहली बार कॉल लगा है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप ईमेल भी कर सकते हैं चाहे तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको फोन करने के लिए, और आपका गाना आपके रेडियो सेट पर बिल्कुल तैयार है सुनने के लिए।

0: 7:49 हो गए हैं और ये भागते हुए सेकंड 50 की तरफ आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अगला प्रोग्राम जो प्रेजेंट करने वाली हैं वो ज्योति जी है, बिल्कुल अपनी फुल तैयारी, फुल गाने और शानदार स्क्रिप्टिंग लेके एकदम तैयार।
1: आपको माहौल तो आपने सेट ही कर दिया है ये वाली खूबसूरत सी गजल चला करके जो आपने अभी अभी प्ले की थी, तो पूरा माहौल सेट हो गया है।
0: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए तो मैंने कि ये कहा कि भाई ज्योति जी आने वाली हैं और आबशार करेंगी, उसके पहले जो होता है ना कि वो रेड कार्पेट वाला माहौल, बिल्कुल एकदम तैयार ही तैयार है। और हमारे श्रोता जो माहौल बना ही देते हैं,
1: बिल्कुल उन्हीं के लिए तो हम इतनी तैयारी करके आते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए ये जो चहकती हुई आवाज है ये ज्योति जी की है और प्रोग्राम जरूर सुनिएगा, मैं भी सुनूंगा वापस। अच्छा, अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक श्रोता जो अपनी ढेर सारी बातों के साथ बड़ी ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें हमसे कर रहे हैं और उनसे खुद ही जानते हैं उनका नाम। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है आपका?
2: जी देवकली, आमतपुर बाजार बाराबंकी से बाबू अंसारी जी बात कर रहे हैं सर।
0: बाबू अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये बाबू अंसारी जी हैं, हमारे रेगुलर श्रोता हैं और हमें ये ईमेल के माध्यम से अपने विचार, अपने जो सूचनाएं हैं वो हम तक साझा करते रहते हैं। बाबू अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो एफएम में। क्या करते हैं बाबू अंसारी जी?
2: जी मैं सर इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, अहमदपुर बाजार में दुकान है।
0: अहमदपुर में आपकी दुकान है, किस चीज की दुकान है आपकी, क्या मतलब क्या करते हैं उसमें?
2: इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उसमें जो रिपेयर करते हैं सीलिंग फैन वगैरह, कूलर और स्टेबलाइजर वगैरह, इन्वर्टर वगैरह।
0: तो इस वक्त तो बिल्कुल पंखे और स्टेबलाइजर की भरमार होगी आपके यहाँ बनाने के लिए।
2: जी सर।
0: तो कभी ऐसा हुआ है कि रेडियो बनाने के लिए कोई लेके आया हो?
2: जी
0: कभी ऐसा हुआ है कि रेडियो बनाने के लिए कोई लेके आया हो आपके पास और कहा हो भाई रेडियो बना दीजिए हमारा?
2: जी सर रेडियो का काम नहीं करते, बाजे का काम कोई है ही नहीं, सिर्फ जो है इन्वर्टर वगैरह स्टेबलाइजर वगैरह बनाती
0: है
2: सर।
0: अच्छा अच्छा, इसके अलावा क्या करते हैं, क्या शौक है आपके, किस तरीके का काम?
2: जी सर एफएम सुनने का शौक है और जो है गाने वगैरह सुनने का शौक है।
0: क्या बात है, तो गाने से याद आया कि गाना कौन सा सुनेंगे आप ये बताइए।
2: जी सर फिल्म का नाम है आपकी खातिर, टाइटल सॉन्ग सुनना है सर, हिमेश जी की आवाज में है सर, डेडिकेट करना चाहते हैं कुछ लोगों को।
0: बिल्कुल, जल्दी से नाम ले लीजिए।
2: सबसे पहले सर आपको
0: बहुत शुक्रिया,
2: और ज्योति मैम को, और कुलदीप गुप्ता जी, उधोली बाराबंकी से सुरभि सिंह है, सीतापुर से नवनीत मौर्या जी, श्री प्रकाश तिवारी जी, हरिकेश जी और मोहम्मद फैज अंसारी हैं, साहिबान अंसारी जी, तमापरी अंसारी जी।
0: चलिए तो इन सबकी तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया डेडिकेट कर लिए और फोन करने के लिए। तो आपका गाना आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: जी हाँ भैया, आपके खातिर तो हम लोग हमेशा हमेशा लगे ही रहते हैं। और 7:54 हो गया है, मतलब कि प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। लेकिन वाइंड अप करने से पहले ढेर सारी बातें अभी जो एक कॉलर है उनसे कर ली जाए, तो उसे नाम जान लेते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते भैया।
0: नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: जी मोहम्मद तालिब अंसारी बोल रहे हैं, राजा कटरा 12।
0: जी मोहम्मद तालिब जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें हमेशा ईमेल भी करते रहते हैं, बहुत सारी बातें लिख के भेजते रहते हैं, तो कैसे हैं आप ये बताइए और क्या करते हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी सर जी, हम बढ़िया हैं, ठीक है सर जी। और हमारी तो फर्टिलाइजर की शॉप है, और हाँ आपने जो कहा कि ईमेल भेजते रहते हैं तो हम ईमेल में शामिल होते रहते हैं, लेकिन कॉल लगाना बहुत मुश्किल है सर जी, कॉल नहीं लग पाता है सर
0: जी, क्योंकि बहुत से लोग चाहने वाले जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी, वो लोग भी फोन मिलाते रहते हैं, तो इसी में भीड़ हो जाती है ढेर सारी, है ना
1: जी।
0: चलिए तो बताइए कौन सा गाना जल्दी सुना दे, क्योंकि 7:55 हो गया है।
1: जी दिल मूवी का है, हमने घर छोड़ा, ये वाला गीत सर जी सुने।
0: तो घर छोड़ा है, तब किसके लिए घर छोड़ रहे हैं भाई साहब, ये भी बता दीजिए।
1: सर जी ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता था जी, बहुत दिनों से बजा नहीं है।
0: अच्छा चलिए बढ़िया है, ये बहुत ही शानदार गाना है, हम आपको आपके रेडियो सेट पर ये गाना पहुंचा रहे हैं। किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे, नाम लेना चाहेंगे?
1: जी सर जी, आपको और मोहम्मद आसिफ भाई हैं, मोहम्मद साबिर भाई हैं और अकबर भाई हैं सर जी, बस।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये गाना
1: थैंक यू सर जी
0: आप तक।

7:51 हो गया है, प्रोग्राम को यही वाइंड अप करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ढेर सारे ईमेल भी आए थे, उन लोगों का ईमेल शामिल कर ले। मोहम्मद सद्दाम, अजय सिंह कुमार, नवनीत सिंह, अजय सिंह कुमार, गुलबसा सिद्दीकी, सुधांशु, रोशनी चौरसिया, मोहम्मद आसिफ, हमारे मोनू भैया, रामराज, रोशनी रावत ने हमें ईमेल किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस प्रोग्राम से मिलते हैं, मतलब आपसे लेते हैं विदाई। फिलहाल ज्योति जी लेकर आ रही हैं आबशार, जरूर सुनिएगा।

0: नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, इसे पर्यटन के एक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने आज 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण अभियान के अंतर्गत 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी गतिविधियों का प्रभावी एवं जन सहभागिता आधारित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री राजभर ने कहा कि अभियान के माध्यम से श्रमिकों, असंगठित कर्मकारों एवं युवाओं तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, जागरूकता और योग को बढ़ावा दिया जाए। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, आंधी तूफान के बाद उत्पन्न हुई विद्युत बाधाओं के निस्तारण और उपभोक्ता शिकायतों के समाधान की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा कहीं भी विद्युत बाधा उत्पन्न होने पर उसका त्वरित समाधान किया जाए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे। जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए एफएम रेनबो से।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
2: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
1: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
3: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
2: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
1: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
4: शाम का धुंधलका अब धीरे धीरे गहरा हो रहा है। दीवार पर लगी हुई सुइयों ने शाम के 8:04:37 दिखा दिए हैं और अब वक्त हो गया है उस महफिल का जहां लव्स और सुर मिलकर आपकी जज्बात को आवाज देते हैं। आदाब तस्लीम नमस्कार, मैं हूं आपकी हमसफर, आपकी दोस्त ज्योति, और इस वक्त हम मिले हैं महफिले गजल आबशार में। तो चलिए याद करने की कोशिश करते हैं उस दौर को जब मोहब्बत, गजलें और जज्बात कुछ और ही हुआ करते थे।

कुछ वक्त ऐसा होता है, कोई दौर ऐसे होते हैं जिनसे चाह करके भी आगे बढ़ने का दिल ही नहीं करता। लेकिन क्या करें, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम ही तो है। अब भले ही दिल चीख चीख कर कह रहा हो कि सारी दुनिया के गम हमारे हैं, सारी दुनिया के गम हमारे हैं, और सितम ये कि हम तुम्हारे हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
2: ज्योति के साथ

0: सहभागी बने।
1: एक जमाने से कहानी है
2: हमारी जनगणना हमारा विकास।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

8:22 और ठीक 46 सेकेंड्स। आप हैं ज्योति के साथ आबशार में, सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: らしくは。
1: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
3: आठ बजकर 37 मिनट और ठीक 6 सेकंड्स। आप भीग रहे हैं आबशार में आज ज्योति के साथ। दोस्तों, कहा जाता है कि जब कोई दिल के करीब आ जाता है तो उससे जुड़ी हुई हर चीज अपनी लगने लगती है। उसका नाम, उसकी बातें, उसका शहर, उसकी गलियां, उससे जुड़ी हुई हर वो छोटी मोटी चीज जिस पर शायद किसी और का ध्यान भी नहीं जाता, वो आपको अपनी सी लगने लगती है। और फिर जुदाई के बाद वही शहर जो उसका शहर हुआ करता था, नक्शे पर बनी हुई एक जगह नहीं रह जाता बल्कि यादों का एक इलाका बन जाता है, जहां कभी मोहब्बत सांस लिया करती थी। ऐसे ही किसी एहसास के लिए किसी शायर ने कहा है, उदास दिल है मगर मुस्कुराना पड़ता है। तुम्हारे शहर में आकर ये हुनर भी

कहते हैं शांति में, सुकून में और सन्नाटे में बड़ा फर्क होता है। तो आपकी जिंदगी का सुकून, इसकी शांति हमेशा बनी रहे, ये कभी भी सन्नाटे में तब्दील ना हो। इस दुआ के साथ ज्योति चाहेगी इजाजत आज के आबशार से। अब से थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या के लिए। ठीक 9 बजे फिर मुलाकात होगी, मिलूंगी आपसे रेनबो कैफे में। सुनते रहिए FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्चन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाये।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: attacks. And in women's cricket, the third and final T20 international of the series between India and hosts England will be played at Taunton tonight. The match will begin at 11 p.m. Indian time. The series is levelled at 1-1. Unified Payments Interface, UPI, has achieved 23.2 billion transaction counts in the last month. In a social media post, the Department of Financial Services thanked these citizens for embracing digital payments. UPI has emerged as world's largest real-time payments platform, anchoring country's digital economy. The India Meteorological Department, or IMD, has issued an orange alert predicting thunderstorm conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh tomorrow. The weather agency has predicted heavy to very heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Karnataka, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Saturday. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government forms panel to probe into procurement of services for on-screen marking system by CBSE, appoints Lokhande Prashant Sitaram as CBSE chairperson. India rejects third-party involvement in resolving boundary matters with Nepal. India successfully flight tests indigenous Rudram 2 air-to-surface missile. Prasar Bharati's Waves OTT crosses 1 crore users within 2 years of launch. 21 people killed in Russian strikes across Ukraine. And in women's cricket, India to take on hosts England in third and final T20 international at Taunton tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: कुछ ऐसे गिरता है जैसे कि गिद्धों का झुंड, तो आपको अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो बोला जाता है गिद्ध भोज। जो बूफे सिस्टम होता है ना, इसको गिद्ध भोज बोला जाता है। और सच कहूं तो हमारे उन दोस्तों ने जिन्होंने एंजॉय किया हुआ है पंगत में बैठकर खाना, उनको बिल्कुल वो मेरे साथ अग्री करेंगे कि जब मनुहार कर करके खिलाया जाता है तो उसमें जो मजा है वो बूफे सिस्टम में तो नहीं है। इंद्रपाल मिश्रा जी ने अमृता दतुनापुर से, दिवाकर अवस्थी, शिवप्रकाश, हरिप्रकाश, आशा अवनीश विनीश के साथ में हमें ईमेल किया है और बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें लिखी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। विजयपाल यादव जी ने लिखा है, रेडियो ऑन किया आपकी आवाज़ नहीं, खुश हो गया, आप शहर अच्छा लगा, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, पॉप टाइम भी अच्छा जा रहा है। ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से बबलू यादव और विजयपाल यादव जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इतनी ही देर में मेरे सामने ढेर सारे और भी ईमेल आ गए। ये सारे ईमेल भी पढ़े जाएंगे, बरोबर पढ़े जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस, ओके? फिलहाल आप तक आ रहे हैं रेमो फर्नांडिस कहते हुए, ओ मेरी मुन्नी। तो ऑल द मुन्नीज एंड मुन्नाज आउट देयर, खड़े हो जाइए, थोड़ा सा थिरक भी लीजिए, टेंशन को किनारे रख दीजिए, क्योंकि खुश होने के लिए कोई रीजन चाहिए क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुस्कुराइए कि हम एक साथ हैं।

वैसे मुन्नी का मतलब पहले लिया जाता था छोटी बच्ची से, फिर एक वक्त ऐसा आया जबकि हर घर में एक न एक मुन्नी या फिर मुन्ना जरूर होते थे। वक्त बदलने के संग संग ये नाम भी बदल गए और अब छोटे बच्चों को भैया, गुड़िया, बबलू, पिंटू कुछ भी कहा जाने लगा। लेकिन कहते ना कि वक्त के साथ साथ नाम भी बदल जाते, नामों के फैशन भी बदल जाते। बीच में एक ऐसा वक्त आया था जबकि आदित्य नाम हर घर में हुआ करता था और फिर करण। कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि टाइम के संग बदलते ही जाते हैं। कभी कभी तो आप नाम सुनकर के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इस इंसान की उम्र तकरीबन इतनी होगी। आपने भी इस चीज को कभी गेस किया है? लेकिन फिलहाल मैं आपको ये गेस करने को कह रही हूँ कि गर्मी की छुट्टी का सबसे बड़ा विलेन कौन सा होता है। सोचिए सोचिए, जब ये सुकून की बिल्कुल बौछार हो रही होती है और इसीलिए गर्मियां खलती भी नहीं कि चलो भाई गर्मी है तो क्या, छुट्टी तो है, मन मर्जी से सो कर उठ सकते हैं, मन मर्जी का खा सकते हैं, जब तक चाहो तब तक टीवी में कुड़ुक कुड़ुक कुड़ुक कुड़ुक चैनल चेंज कर सकते हैं। ऐसे में एक विलेन है जो कि बार बार सताता है, एंड दैट टू फॉर अ रीजन। सोचिए सोचिए और मुझे बताने की कोशिश करिए। फिलहाल तो करण औजला आ रहे हैं आपके पास लेकर फॉर अ रीजन।

ज्योति मैम, ये सारे गीत हमने पहले सुने हैं म्यूजिक टाइम प्रोग्राम में, जो कि सुबह 9 बजे से हुआ करता था, तब से अब प्ले हुए हैं। उसी प्रोग्राम की याद आ गई 2017 की। ये बात बोल रहे हैं तालिब अंसारी जी। जी होता यही है ना कि नाम बदल जाते हैं लेकिन लोग वही रहते हैं, बातें वही रहती हैं, प्रोग्राम्स भी थोड़े थोड़े नए नए कलेवर में आप तक पहुंचते हैं। वैसे ये वाला गाना आपने नहीं सुना हो सकता है 2017 में, क्योंकि ये करण औजला का सुपर डुपर हिट सॉन्ग है जो कि रिलीज ही 2025 में हुआ था। बट यस, आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी पुरानी चीजों को, पुरानी यादों को रीलिव करना। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं है, खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इंसान की किरदार की दो ही मंजिलें हैं, या दिल में उतर जाते हैं या दिल से उतर जाते हैं। भाई वाह, मतलब एक प्रेपोजिशन चेंज होने से कितना कुछ बदल जाता है। में और से, ये दो शब्द अगर इंटरचेंज हो गए तो सब कुछ उलट पुलट। भाई वाह, एकदम दिल जीत लिया आपने। आनंद तिवारी ने ये ईमेल किया था दारुकुया मल्लावा हरदोई से, और लिख रहे प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो मैंने आपसे पूछा था कि गर्मी की छुट्टी का सबसे बड़ा वाला विलेन कौन सा होता है, उसका जवाब नहीं दिया आपने। तारीफें आप भेज रहे हैं और आपकी तारीफों के भी ईमेल पढ़े जाएंगे, 100% पढ़े जाएंगे, लेकिन हमारे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। हाँ, तो चलिए मैं ही दे देती हूँ। गर्मी की छुट्टी, हॉलीडेज की छुट्टी के बीच जो सबसे बड़ा विलेन होता है ना भाई साहब, वो होता है हॉलीडे होमवर्क। छुट्टियां होती है, बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन जहां जून की शुरुआत होती है वहीं धीरे धीरे धीरे धीरे मम्मी पापा को याद आने लगता है कि अरे भाई, हॉलीडे होमवर्क भी तो था, किया तुमने? और बस उसके बाद तो पूछो ही मत। जब कभी ये कहा जाता है कि काम था क्या तुम्हारा, और जब ये रियलाइज किया जाता है कि ये काम काम नहीं है, ये तो एक्चुअली इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे अकेले पूरा किया ही नहीं जा सकता, तब चेहरों के रंग उड़ते हैं। छुट्टियों का सारा मजा हो जाता है बिल्कुल किरकिरा। तो शुरू होती पूरी फैमिली की जॉइंट वेंचर, कोई चार्ट पेपर ला रहा है, कोई गूगल पर सर्च कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट फाइल बना रहा है, और बच्चा बस चुपचाप बैठ कर डांट खा रहा है। होमवर्क की कोई चिंता ही नहीं तुम्हें, पता नहीं ये स्कूल वाले भी होमवर्क बच्चे को देते हैं या मम्मी पापा को। हाँ, और इन सारी चीजों के साथ बेचारा बच्चा ये सोचता है कि अब कुछ भी है, कैसे भी है, मम्मी की डांट पड़ी तो क्या हुआ, पापा की डांट पड़ी तो क्या हुआ, कम से कम टीचर की डांट से तो बचे। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये हॉलीडे होमवर्क दिया जाना चाहिए या फिर नहीं, ये भी मुझे बताने की कोशिश करिए ईमेल्स के जरिए। 9:27 और ठीक 40 सेकंड्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त ज्योति, और हम जुड़े हैं FM रेनबो पर इन द प्रोग्राम रेनबो कैफे।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

गुड इवनिंग ज्योति मैम, कैसी हैं? आपका ओके प्रोग्राम पसंद आ रहा है. थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आज आप आई तो मेरा फोन हेलो एफएम में भी लग गया. हाँ, मैं सुन रही थी, मैं ये स्टूडियोज में ही थी. रेडियो

कहे के नाम शामिल कर लीजिए, कुलदीप गुप्ता, महेंद्र देवपन, फैज अंसारी। तो जी मैं यही कह सकती हूँ कि आप लकी हो गए, आज हम सबके लिए आपका फोन भी मिल गया, आपका ईमेल भी शामिल हो गया। मोनू से जबरदस्त जुमाने वाले गाने बजाए जा रहे हैं आपके द्वारा, थैंक यू जी। अच्छा, गर्मी की छुट्टी का सबसे बड़ा विलन इनका ये कहना है कि घर के काम की कभी छुट्टी नहीं होती। दैट्स ट्रू, टोटली अग्रीड, घर के काम की कभी छुट्टी नहीं होती। शायद इसीलिए जो बेचारी मम्मियां होती ना घबरा जाती है छुट्टी के नाम सुनते ही, क्योंकि फिर बच्चे इतनी मस्ती करते हैं कि बस पूछिए ही मत। इंद्रपाल मिश्रा जी का भी ईमेल है, नो टबेको डे था संडे को, और इन्होंने लिखा है नशा नाश का मूल है, कोरोना इसकी चाह कर देता है एक दिन घर परिवार तबाह। अमिता भोली सीतापुर से, इंद्रपाल मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। गुलाब शाह, हेलो गुड इवनिंग ज्योति मैम, मैं गुलाब शाह सिद्दीकी संडीला से, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इस वक्त खाना खा रही हूँ, आप भी आ जाओ खिलाएंगे आपको। भाई मैं आ गई तो यहाँ गाने डिंचक डिंचक डिंचक कौन चलाएगा और आपको एंटरटेन कौन करेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आज आप अकेले खा लीजिए, किसी और दिन मैं जरूर आऊंगी। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, वाह क्या नाम है, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, इन सब ने मिलकर के ईमेल किया है, खनौधी शहडोल मध्य प्रदेश से। मजा आ गया, तबीयत खुश हो गई गाने सुनकर जी, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है आप सबसे बातें करते हुए, आप सबके लिए सॉन्ग्स प्ले करते हुए भी। आगे इन्होंने लिखा है, कभी किसी को दर्द देकर खुशियां नहीं मिलती, दिल दुखाने वालों को दुआएं नहीं मिलती, मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का, जिंदगी में हालात बदलते देर नहीं लगती। टोटली मतलब अग्री करती हूँ आपकी बात से। तो बस इतना ही है कि जो जितना खेला है ना बाबू, वो सिर्फ वक्त का है और वक्त अपने हाथ में नहीं होता, इसलिए कभी भी किसी बात का घमंड करना तो चाहिए नहीं। किसे कब क्या मालूम जीवन में क्या हो जाए, तो जो है उसके लिए शुक्र अदा करो और जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो। और ऐसे में हम क्या करें, हम गुनगुनाएं दिल क्या करे।

0: क्या करे। अरे करना है क्या है जी, रेनबो कैफे सुनिए, इसके जरिए आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से दिल की बातों का इजहार किया जाए। 9:41 ठीक 35 सेकंड आपके साथ है आपकी अपनी दोस्त ज्योति इन द प्रोग्राम रेनबो कैफे, और हम और आप कर रहे हैं चल एक साथ जून की इस तपती हुई रात। अरविंद कुमार दुबे ने लिखा है छठहा डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से, गर्मी की छुट्टी में होमवर्क दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके बिना तो जुलाई में अल्फाबेट और कॉन्सनेंट वाल तक हम भूल जाते। अग्रीड। अरविंद गौतम गोविंद प्रतिमा प्रतिष्ठा तन्वी दीपा श्याम कुमारी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। अरविंद कुमार जी का एक और ईमेल हमारे पास सेम टू सेम, इन्होंने आगे लिखा है वॉल्यूम बढ़ा लिया है, मूड डांस मस्ती वाला है, हम सभी 12 बजे तक आपका साथ देने वाले हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महेंद्र देवपन लिख रहे हैं राजस्थान के रूड़गांव से, आपका ये प्यारा प्रोग्राम सुन रहा हूँ, थैंक यू। छुट्टियों वाली बात पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को हॉलीडे होमवर्क का बोझ नहीं दिया जाना चाहिए, उम्र खेल कूदने खेलने कूदने और नई नई चीजें सीखने की होती है, ना कि किताबों में सिर गड़ाए रखने की। सच कहूँ तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में छुट्टियों की उतनी ही कमी खलती है। हमारी उम्र में छुट्टी लेने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन जिम्मेदारी ऐसे सर पर हथौड़ा लेकर बैठी है कि फुर्सत का नाम ही नहीं मिलता। कितना दर्द भरा ईमेल है आपका, कितना दर्द भरा, मतलब बहुत सारे लोगों का आपने दर्द एकदम फ्रेश कर दिया, सच्ची बोल रही हूँ। और एक एमके राज, इन्होंने एक पंजाबी में भी भेजा है, जी सॉरी जी मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती, आई एम सॉरी। लेकिन ये वाली जो बात थी ना कि छुट्टी चाह करके भी ले नहीं पाते, मैं टोटली समझ सकती हूँ, आपके दर्द को फील कर सकती हूँ। नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिश हजार बार करता है। कई दिनों के बाद मेल कर रही हूँ, 31 तारीख का आपका कार्यक्रम अच्छा लगा था जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आगे भी मैंने पढ़ लिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतने ध्यान से इतनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ में इतनी माइन्यूटली ऑब्जर्व करती हैं हमारे सारे प्रोग्राम्स को और हमको फीडबैक देती हैं जी, थैंक यू थैंक यू। आगे लिख रही हैं कि मेरे दोस्तों को प्लीज मेरा नमस्कार बोल दीजिए, तो ये तो बिल्कुल करना होगा। सारा पीयू मनु रोशनी बबिता स्नेहा सोनी वंदना कौशल पूर्णिमा जी सभी लोग आपको सुन रही हैं जी, थैंक यू वेरी मच। एंड ये किसका ईमेल, रोशनी रावत का भी ईमेल आ गया है, लिख रही हैं ओके जी थैंक यू। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ आप लोग तारीफ भेजते मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और ये खुशी आप तक मेरी आवाज में छलक के जरूर पहुंचती होगी, लेकिन मुझे ना अपनी तारीफ खुद पढ़ना पता नहीं मुझे थोड़ी शर्म सी आती है, तो आई होप आप समझेंगी अगर पूरा ईमेल नहीं पढ़ पा रही हूँ। रोशनी रावत ग्राम पोस्ट बमहना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से चंडीगढ़ से इस वक्त प्रोग्राम सुन रही हैं। बबिता राव जी नीलू शर्मा दीदी गुलाब शाह दीदी जी के साथ हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं ब्रजेश सिंह दीपू। कार्यक्रम अच्छा लग रहा है कैसरगंज बहराइच से, थैंक यू। निर्मल गुप्ता लिख रहे हैं जिंदगी चाय की तरह है, कभी फीकी कभी कड़क, लेकिन दोस्तों की महफिल और एफएम की धुन मिल जाए तो हर घूट मजेदार बन जाती है। आपका शो सुनकर उदास दिन छुट्टी पर चला गया, थैंक यू, मुझे लगता है बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि मुझे आज के दिन मिला है। आगे भी आपने बहुत खूबसूरत बातें लिखी है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला ना कि मैं पढ़ती हूँ अपने दिल में रखती हूँ नोट कर लेती हूँ।
1: पहला नशा पहला खुमार।
2: This is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट, दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट को।
0: सऊदी अरब में है, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। ये लिख रहे हैं अजीज अहमद तिहाड़ सीतापुर से, तो जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना खूबसूरत ईमेल हमें भेजा। जावेद अख्तर साहब जी थैंक यू, मुबारकपुर आजमगढ़ से शमशुल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा शाहीन का नाम लेने को इन्होंने कहा है। शिवराज जी आपका ईमेल तो मैंने पढ़ लिया था, आपको याद होगा। तालिब अंसारी जी आपका भी ईमेल पढ़ लिया गया था। तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और आपको वो गाना सुनाते हैं जिसे सुनने का मेरा बड़ी देर से मन है। तो गुरु रंधावा के साथ थोड़ा सा थिरकने को हो जाइए तैयार।

हाँ जी, तो 9:49 हो गए हैं और साथ में हो गए हैं 43 सेकेंड्स। अपनी अपनी घड़ियां मिला लीजिए। एंड यस, मैं जानती हूँ कि आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब ज्योति की किटी में कौन सी मजेदार बात है। तो भाई, एक चीज तो ऐसी है जिसके बिना मुझे लगता है कि आज की गर्मी की छुट्टियों की ये जो बात है अधूरी रह जाएगी। गर्मी की छुट्टी की सबसे मेजर याद पता है क्या है? मैं अपनी छुट्टियों की बात करूं अगर, वो जो जून की कड़क दोपहर, जबकि मम्मी बेचारी सोचती हैं कि थोड़ा सा सोने को मिल जाए, अपने कमरे में कूलर या फिर एसी ऑन करके सो जाती हैं और सख्त हिदायत होती है, कोई घर के बाहर पैर नहीं रखेगा, छत पर कोई नहीं जाएगा, भयंकर लू चल रही है। लेकिन भाई साहब, बच्चे जब तक वो काम ना करे जिसके लिए उन्हें मना ना किया जाए, तब तक वो इंडियन बच्चे कैसे हो सकते हैं? मतलब एटलीस्ट हम तो बिल्कुल वो वाले बच्चे थे ही नहीं कि जो कहा गया बिल्कुल वही कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर करना ही है। जहां मम्मी की आंख लगी, हम चुपचाप उठे, एकदम मतलब बिल्ली भी शर्मा जाए, इतना धीरे धीरे बिना आहट किए हुए। लोहे का दरवाजा खोलना, वो दरवाजा जो हमेशा खोलने में बड़ी आफत आती थी, लेकिन जब मम्मी से छिप कर कहीं जाना हो तो आराम से खुल जाता था। और फिर सीधे छत पर या फिर गली में बच्चों के संग ढेर सारी, मतलब कुछ भी खेल, उल्टा पुल्टा, गुड़िया की शादी हो रही है, क्रिकेट खेला जा रहा है, लूडो खेला जा रहा है, कुछ भी। और कुछ नहीं तो बस चकर मकर बातें चल रही है। कहीं अगर मम्मी की आंख खुल गई तो बस समझ लीजिए कि उसी दिन अपना तो हैप्पी वाला बर्थडे। और अगर मम्मी की आंख नहीं खुली तो वो बड़ी मासूमियत से वो कहना कि मम्मी सारे दिन बोर हो गए, टीवी देख ले। ये खूबसूरत यादें, मुझे लगता है अभी भी बच्चे इससे कुछ तो मिलता जुलता करते ही होंगे। हालांकि यस, वक्त बदल रहा है, बचपन भी बदल रहा है, चीजें भी बदल रही हैं। अब तो बहुत सारे बच्चे नानी हाउस भी नहीं जा पाते, फॉरेन टूर्स पर, फॉरेन ट्रिप्स की का जमाना जो हो गया है ना। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो छुट्टियां हैं उनकी खूबसूरती जैसे हमने एंजॉय किया, अगर वैसे बनी रहे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। रॉयल अमित यादव ने लिखा है, गंगनगंज रोड भनमऊ से नकटौवा बाराबंकी से, एक वक्त के बाद बीते हुए वक्त की बातें बहुत याद आती हैं। बहुत सही बात आपने कही है, एक वक्त के बाद बीता हुआ वक्त बड़ा याद आता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अभी ये जो वक्त है ना, शायद इसी वक्त की हमने बड़ी दुआएं मांगी थी। तो जो वक्त हमारे पास है, चलिए उसी को चेरिश करें, एंजॉय करें। मेरा नाम राम नरेश है, बाबूरिहा पोस्ट बरौली मालिक जिला बाराबंकी से हम FM केयर प्रोग्राम सुनते हैं। तो सदस्यों का नाम लेना चाहूंगा, अनिल कुमार, छोटे बेटे का नाम सुशील कुमार, भतीजे का नाम शिवराज। आपका कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, शिवराज ने बोला, थैंक यू। ओके, राम नरेश जी का भी ईमेल है और इनका ईमेल पहले पढ़ लिया गया है। एमन, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। एमन नवाब संजीला से, थैंक यू। तालिब अंसारी जी का ईमेल, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड राजकमल यादव बाराबंकी से लिख रहे, मेरा बेटा सावन कुमार यादव डांस कर रहा है और मेरी वाइफ संगीता यादव आपको नमस्ते बोल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बॉम्बे वाइकिंग के साथ थोड़ा सा हम भी थिरक लेते हैं।

अब कहना क्या है जी, बस कहने को इतना ही बचा है कि चलिए इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें। आपके साथ इतनी मीठी मीठी मजेदार बातें करते हुए किस वक्त वक्त खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अब देखिए ना, अब ये टाइम आ गया है कि इस प्रोग्राम को वाइंड अप करूं। एक छोटा सा न्यूज ब्रेक होगा और न्यूज ब्रेक के उस पर हम सुनेंगे रजनीगंधा। सो स्टे ट्यून्ड। बस इतना ही कह सकती हूँ कि छुट्टियों का मजा लेते रहिए। अगर नानी हाउस नहीं गए हैं तो अब जाने का प्लान जरूर बनाइए और जुड़ी रहिए FM रेनबो से। कीप स्माइलिंग, टेक केयर।

0: प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
1: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
0: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
2: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जो जगाऊं अगर तुम कहो।
1: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
0: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है
1: airkansomedia@gmail.com।
0: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से।
3: शिक्षा विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत थे। प्रदेश सरकार ने ब्रिक्स देशों के अतिथियों के भव्य स्वागत की तैयारी की है। काशी में ब्रिक्स देशों के मेहमानों को उत्तर प्रदेश की लोक कलाओं की झलक देखने को मिलेगी। मेहमानों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। 4 और 5 जून को वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग के 624 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया गया। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की विषयवार एवं श्रेणीवार सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। बीते 9 और 10 मई को आयोजित लिखित परीक्षा में 18 विषयों के कुल 1,92,934 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल 2,253 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से सफल शॉर्टलिस्ट घोषित किया गया है। प्रयागराज जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ मलाका अंतर्गत एक घर में 3 लोगों के शव मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 11 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
2: Das bajkar 3 minute.

और ठीक 44 सेकेंड्स। खिड़की के बाहर घनेरा अंधेरा और जून की इस उमस भरी रात में दिन भर की तपन के बाद अब जाकर पत्तों में थोड़ी सी हलचल हुई है। एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका खिड़की से अंदर आता है और उसी के साथ कमरे के किसी कोने से रजनीगंधा की महक चुपके से आकर आपको सहला जाती है। कुछ ऐसा ही महकता हुआ, मदहोश करता हुआ सफर रहने वाला है हमारा और आपका अगले 2 घंटे तक। इस सफर में मैं हूं आपकी हम सफर, आपकी अपनी दोस्त ज्योति। और आज बस कुछ बातें होंगी, कुछ यादें होंगी और कुछ ऐसे सुर होंगे जो सीधे रूह को छूते हैं। कुछ ऐसे मानो तपती दोपहर में पवन का झोंका आपको सुकून दे जाए।

10:10 और ठीक 9 सेकेंड्स। आप खो रहे हैं रजनीगंधा के फूलों से महकते मधमाते सदाबहार नगमों के जादू में आज ज्योति मिश्रा के साथ FM रेनबो पर।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आज की तारीख यानी कि 2 जून, वो तारीख है जिसने हमसे फिल्मी दुनिया के 2 बहुत बड़े सितारों को छीन लिया था। 2 जून को ही हम सबके चहेते और भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब 1988 में हमें छोड़कर चले गए थे। 1987 की बात है जबकि उनके सबसे अजीज दोस्त क्रांतिकारी लेखक निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। ये दोनों ही नाम ऐसे हैं जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। राज कपूर साहब ने अपनी फिल्म्स के जरिए भारतीय सिनेमा को रूस, चीन और पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पहचान दिलाई। ये वो वक्त था जबकि इस बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल लगता था। उनकी फिल्में थोड़ी ना होती थी, वो तो होती थी आर्ट पीसेस। और मेरी इस बात से हर वो शख्स इत्तेफाक रखेगा जिसने उनकी फिल्में देखी हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हीं की फिल्म के इस गाने की 2 पंक्तियां, हम न रहेंगे तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां। जी आज वो हमारे साथ नहीं है लेकिन उनकी निशानियां, उनकी फिल्में, उनका संगीत हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। तो चलिए सुनते हैं 1955 की फिल्म श्री 420 का ये खूबसूरत नगमा। शंकर जयकिशन का संगीत और मन्ना डे, लता जी की जादुई आवाज़।

हम न रहेंगे तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। कहते हैं ना कि हम एक ना एक दिन तो इस दुनिया को छोड़कर जाने ही वाले हैं, लेकिन हम इस दुनिया को क्या देकर जाते हैं ये ही तो है जो कि सबसे ज्यादा मैटर करता है। अभी आपने सुना था हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत प्रेम गीतों में से एक प्रेम गीत। वैसे आपको शायद ही पता हो कि इस गाने में राज कपूर और नरगिस के पीछे बारिश में चलते हुए जो तीन बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, वो कौन थे? वो बच्चे थे रितु नंदा, रणधीर कपूर और ऋषि कपूर। वक्त का पहिया आगे बढ़ा, बच्चे बड़े हो गए और उन्हीं ऋषि कपूर को राज कपूर ने बॉबी से बतौर हीरो दुनिया के सामने पेश किया। एक पिता का विश्वास, एक आर्टिस्ट का यकीन और एक बच्चे का टैलेंट, बस कहना ही क्या। ऋषि कपूर ने कितने वक्त तक लीड किया इंडियन सिनेमा को, क्या ये कहने की बात है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 1973 की फिल्म बॉबी, जो कि थी लॉन्च पैड ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया के, उसका ये खूबसूरत गाना सुनते हैं। राज कपूर का जादू इस फिल्म के हर फ्रेम में, हर गाने में उतना ही जीवंत था जितना उनकी किसी और फिल्म में।

तो राज कपूर साहब के अभिनय, उनके बेहतरीन निर्देशन, उनकी फिल्मों का जादू अधूरा सा रहता अगर उसके पीछे उनके दोस्त ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की कलम का जादू ना होता। राज कपूर साहब की आवारा श्री 420 और अभी अभी जिस फिल्म का गाना मैंने सुनाया यानी बॉबी, इन सभी कालजयी फिल्मों की अमर कहानियां और स्क्रीन प्ले अब्बास साहब ने ही लिखे थे। राज साहब बहुत गर्व से कहा करते थे कि मैं तो सिर्फ एक जिस्म हूँ, मेरी फिल्मों की असली रूह, असली आत्मा अब्बास की कलम है। अब्बास साहब सिर्फ एक लेखक ही नहीं थे बल्कि एक बेहद क्रांतिकारी पत्रकार और यथार्थवादी फिल्म निर्देशक भी थे। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर 1970 में सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा और दार्शनिक स्क्रीन प्ले तैयार किया था फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए। ये फिल्म जिंदगी के उस गहरे फलसफे को बयां करती है कि शो मस्ट गो ऑन, चाहे दिल पर कितनी भी चोट लगी हो, चाहे जिंदगी में कितनी भी तकलीफें हों। 1987 में आज ही के दिन यानी 2 जून को अब्बास साहब हमें अलविदा कह गए। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनकी जादुई लेखनी को नमन करते हैं और सुनाते हैं ये खूबसूरत गीत मेरा नाम जोकर से।

0: कल खेल में हम हो ना हो। कुछ लोग ना होकर भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। राज कपूर साहब और ख्वाजा अहमद अब्बास की जोड़ी ने हमें कुछ ऐसे बेहतरीन नगीने दिए कि हम चाहकर भी कभी उन्हें भुला नहीं सकते। और देखिए ना, इन दोनों की दोस्ती का आलम ये कि जहां राज कपूर साहब हमें छोड़ करके गए 2 जून 1988 को, उससे ठीक एक साल पहले 1987 में 1 जून को ख्वाजा अहमद अब्बास साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज भले ही ये दोनों बड़े नाम हमारे साथ नहीं हैं, फिर भी इनकी फिल्में, इनका म्यूजिक, इनका आर्ट हमेशा हमारे साथ रहने वाला है।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
0: दस बजकर 36 मिनट और ठीक 33 सेकेंड्स। आप हैं ज्योति के साथ और प्रोग्राम रजनीगंधा में सुन रहे हैं कुछ ऐसे गाने जो कभी हो ही नहीं सकते पुराने। स्टे ट्यून्ड।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा।

अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। 100.7 FM रेनबो पर हम घूम रहे हैं यादों की गलियों में, सुनते हुए कुछ दिलचस्प अफसाने और साथ ही ऐसे सदाबहार गाने जो कभी हो नहीं सकते पुराने, प्रोग्राम रजनीगंधा में। और आज इस प्रोग्राम में आपकी हम सफर है, आपकी अपनी दोस्त ज्योति मिश्रा।

0: यहीं पर।
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल

टाइम हुआ है 10:55 और ठीक 37 सेकेंड्स, और ये वक्त है रजनीगंधा के फर्स्ट पार्ट को वाइंड अप करने का। इस गाने के बाद एक छोटा सा न्यूज ब्रेक और फिर सजेगी रजनीगंधा की ये महफिल। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।

हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है।